योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल न पिए। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपकी स्किन के मुहासे हो, एक्नेक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो। लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें, पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए
अंदर से बाहर की ओर खींचे। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2, 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठ करके अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठ करके सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को, यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो की उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की, यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि
शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें सौंच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि हमारी पूरी शरीर को डिटॉक्स करता है। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वस्थ
किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा ले तो आसानी से पच जाता है। इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद को मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है, या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।

तो खाली पेट पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है खाली पेट पानी पीना, यानी कि गुनगुना करके पीना, सिर्फ पानी पीना या पानी के साथ कुछ ऐसी औषधियों को लेना, पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उसे पीने से, उसको लेने से महत्व क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट पानी पीना एक छोटी सी आदत, लेकिन आपके लिए काफी फायदे, यानी बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है शरीर को डिटॉक्स करना। जी हाँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यह मदद करता है। किडनी और लीवर ठीक से काम करें, जिसके कारण से शरीर को ये डिटॉक्स करता है, बशर्ते पानी हल्का सा गुनगुना हो या फिर थोड़ा सा ताजा पानी। बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारी आंतरिक क्रियाएं, हम खुद, हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव होता है, जो कि नए कामों को करने के लिए। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के ऑर्गन्स होते हैं, वे भी आराम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है शरीर को डिटॉक्स करने की। तो डिटॉक्स अगर गुनगुने पानी से हो तो बेहद लाभ मिलता है। दूसरा है कब्ज की समस्या में राहत। सुबह उठते ही पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं, मल त्याग आसानी से होता है, गैस और एसिडिटी भी कम होती है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, आंतें एक्टिव तो होती हैं, लेकिन आंतों में मल फंसा हुआ होता है, जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण से आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुने पानी के साथ अगर आपने एक कली या फिर दो कली आपकी एज के हिसाब से लहसुन को ले लिया और उसको थोड़ा सा चबा करके दांतों से और वो गुनगुना पानी पी लिया। आप आधे गिलास से शुरू करिए, मतलब आप आधा गिलास पानी ले सकती हैं, उसके बाद में आपने एक पूरा गिलास ले लेना है। इसी तरीके से जब हम उसको पानी को पियेंगे और लहसुन की एक या दो कली को हम कूच के खाएंगे और पानी

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अन इंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: आज से हमारा रिश्ता खत्म और चलो एक दूसरे के सारे गिफ्ट वापस करते हैं।
1: तो ठीक है, शुरुआत रिचार्ज से करते हैं।
0: अरे जानू, अब क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45। अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6।

गुड मॉर्निंग गोंडा, तो कैसे हैं आप सभी भाई। घड़ी में वक्त हो चला है 9:08, आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन पर। आपकी अपनी आरजी नती मौजूद हैं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में लेकर के आपके मॉर्निंग का स्पेशल वाला शो गुड मॉर्निंग गोंडा। और भाई खोलो आंखें, खोल दो अपने दिल के दरवाजे, क्योंकि धूप ने शहर के चप्पे चप्पे पर कर लिया है कब्जा और पुकारा है आपको। तो लौट आइए आपके अपने वाले रेडियो पर, क्योंकि आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा अपनी आशुवंती के साथ। एंड ऑफ कोर्स आप पिछले जितने भी टाइम से आप टेंशन में थे, तो उस टेंशन को करते हैं तेरा बाय बाय, सारी फिक्रों को करते हैं बाय बाय, क्योंकि भाई अब हम सुनने जा रहे हैं 2 घंटे नॉन स्टॉप हिट वाले म्यूजिक, बहुत सारी बातें, लोकल अपडेट्स और कुछ ऐसी चीजें जो आपको होनी चाहिए पता आपके मॉर्निंग वाला स्पेशल शो में। फिलहाल आप लगाइए अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स के अंदर और हमें ज़रूर बताइएगा कि चाय की चुस्कियों के साथ आज गुड मॉर्निंग हो रही है या मम्मी के तानों के साथ आपकी मॉर्निंग की शुरुआत हुई है, बताइएगा ज़रूर। और एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गाने को, दोस्ताना फिल्म से। आप सुन रहे हैं जाने क्यों, हम मिलते हैं इस गाने के इस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पर हमारे शहर की वाइब गुलाबी नहीं ऑरेंज हो रखी है क्योंकि धूप बड़ी कड़क निकली है बाहर। और अगर आप घर से बाहर निकलने वाले हैं तो अभी के लिए खुशखबरी आपके पास कि हाल फिलहाल में कहीं भी कोई भी ट्रैफिक नहीं लगा हुआ है, नॉट इंक्लूडिंग टू दुखरा नाथ और बड़गांव पुलिस चौकी, जहां अक्सर 11 बजते ही ट्रैफिक का भरमाड़ आ जाता है और इतनी सारी ट्रैफिक होती है कि आपको निकलने की जगह नहीं मिलती। पिछले कुछ दिनों से जिला अस्पताल से दुखरा नाथ तक जो भीड़ लगी हुई है आज वो थोड़ी सी कम है, ट्रैफिक अभी थोड़ा शांत है। तो अगर आप अभी निकलने वाले हैं तो भैया मुबारकबाद अगर आपको, और अगर थोड़ी देर बाद निकलने वाले हैं तो शायद हो सकता है आपके लिए टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाए क्योंकि कल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था इन रास्तों पर और अभी के लिए फिलहाल नहीं है। जो हम बड़े खुश हैं क्योंकि हमें जब सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं मिलता है हमारा दिल बल्ले बल्ले हो जाता है, और जब हम बल्ले बल्ले करते हुए आते हैं तो हम सोचते हैं क्यों ना आपको भी बता दें कि आप सुन रहे हैं मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग और अपनी आरजी के साथ, और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और भैया आज मॉर्निंग शो में बातें होंगी वो जो आपके मूड को कर देंगी ठीक, क्योंकि बेवजह की टेंशन, इतनी सारी टेंशन लेकर आप घूमा करते हैं ना जाने क्या क्या सोचा करते हैं, क्योंकि हम भी उनमें से ही एक है जो बेवजह की टेंशन लेके घूमा करते हैं ना जाने क्या क्या सोचा करते हैं, और क्या क्या सोचते सोचते हम ये भी भूल जाते हैं कि हमने सोचना शुरू कहाँ से किया था बॉस। और ऐसा मेरे साथ तो अक्सर होता है, फिलहाल आपके साथ भी होता होगा। और मॉर्निंग की शुरुआत जो होती है ना वो हमेशा एक बेहतरीन चीज़ से होती है, और वो बेहतरीन चीज़ होते हैं सुपर डुपर हिट वाले गाने। तो दिलों को थामिए, रेडियो की वॉल्यूम थोड़ा हाई कीजिए और मुझे बताइए कि अगर भूतनाथ आपकी लाइफ में होता, यानी कि कोई ऐसा इंसान होता जो डोरेमोन की तरह होता या भूतनाथ के अमिताभ बच्चन की तरह होता तो आपका रिएक्शन क्या होने वाला था। भाई अब हम बचपन से सोचते आए हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा कोई तो डोरेमोन हो जो हमारे सारे विशेष कंप्लीट कर दे, जो हमारे लिए सारी मुश्किल आसान कर दे, जो हमारा सारा काम कर दे। और जैसे जैसे बड़े होते तो हम कहते हैं भैया भूतनाथ भी बढ़िया इंसान थे, मतलब बढ़िया भूत थे, घर की सफाई कर दिया करते थे। फिलहाल आप बताएंगे मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर कि आपका अगर ऐसा कुछ होता तो आपको कैसा लगता, और साथ ही साथ कि आज की मॉर्निंग यानी कि आज की शुरुआत आपकी दिन की अगर किसी गाने के ज़रिए होती तो वो गाना कौन सा होने वाला, सैड सॉन्ग होने वाला होगा या फिर एक एनर्जेटिक रोमांटिक हाई बीट पार्टी सॉन्ग से या फिर मेरी ही तरह कुछ भी चुलबुले से गाने आप सुना करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग की शुरुआत हमेशा कोई एनर्जेटिक कर रहा है तो किसी की मॉर्निंग की शुरुआत बड़ी सैड हो रही है, और जो सैड गाना सुन के अपनी मॉर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं भाई क्यों इतना सैड हो रहे हैं आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने दिन की शुरुआत को डेडिकेट करते हुए एक गाना जरूर से भेजिएगा। मैं आपका गाना आज प्ले करने जा रही हूं आपके अपने वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, तो अपनी फेवरेट शो के बीच में अपना फेवरेट पसंदीदा गाना जिससे आपके मॉर्निंग की शुरुआत होनी चाहिए देना मत भूलिएगा। फिलहाल आइए सुनते हैं ये वाला गाना जो भूतनाथ से हम लेकर आए हैं, मेरे बरी चलो जरा करे थोड़ा सा मजा, क्योंकि आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। स्टे ट्यून्ड।

0: Teta, baby.
1: जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं,
2: तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम।
1: अब हर मौके और हर मूड पर है ना
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और भाई, इस धड़कन पे एक बार वापस स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं आप सभी का जो हमें सुन रहे हैं एप्लीकेशन से, फ्रिक्वेंसी से, या फिर आप हमें सुन रहे होंगे रेडियो कारण से। तो भाई, आइए चलते हैं और बात कर लेते हैं मॉर्निंग को थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाने की, क्योंकि ज़िंदगी तभी चलती है जब इसमें कुछ चलता रहे, नहीं तो फिर हमारे दिमाग में चलता है ऊटपटांग चीज़ें, हमेशा ओवरथिंकिंग, बकवास सोचते रहते बैठ के। तो आप बकवास ना सोचें और रात में सोने के बाद खुद को दोष ना दें कि भैया आज तो पूरा दिन कुछ किया ही नहीं सिवाय टाइम वेस्ट के, ऐसा आपके दिमाग में ख्याल ना आए। तो आइए बात करते हैं वो चीज़ों की जिससे आपको पता चलेगा कि भैया कैसे आप अपने टाइम को वेस्ट करने से रोक सकते हैं। ये चीज़ हम हमेशा से ढूंढते आए ना, हम हमेशा सोचते हैं कि कोई तो ऐसा चीज़ होगा जो हमारे समय की बचत कर सके, जिसमें हम अपने समय को फालतू ना गवाएं और हम अपनी लाइफ को धूम तरणा से निकाल के टनटनातंग ले जाएं। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। तो भाई, बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की, कुछ ऐसी बातों की जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना चाह रहे हो, अपने समय को पहचानना चाह रहे हो और आपके हाथ से जो ये समय निकलता जा रहा है उसको थामना चाह रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो हमने कोविड के बाद नोटिस की है, वो ये की है कि तब से भैया 2020 का लॉकडाउन लगा है और लॉकडाउन के बाद दोबारा से लॉकडाउन खुला है, लॉक इन हुआ है, लॉक आउट हुआ है, तब तक हमको लगता है कि अब हमारे पास वक्त नहीं है। और लोगों की शिकायत है कि भैया 2020 के बाद वक्त बड़ा तेज़ी से भाग रहा है, रुक ही नहीं रहा है, साल आता है ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि आप कहीं और बिजी रहते हैं। अब पहले हमारे पास इतने सारे सोर्सेज नहीं हुआ करते थे, पहले हम पूरे दिन इंटरनेट पे नहीं थे, पहले हम पूरे दिन फ़ोन के अंदर नहीं घुसे हुए थे अपनी मुंडी लेकर, लेकिन अब रहते हैं और फिर हम कहते हैं दिन कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हो गया, पता नहीं चला भाई साहब, ऐसा हम कहते हैं। और मैंने ये अक्सर डायलॉग सुने हैं, इवन कई लोग इंस्टाग्राम पर आकर भी ये चीज़ कह रहे हैं कि दिन कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ है, नो आइडिया। तो भाई, सबसे पहली चीज़ आपको करना है कि टाइम वेस्टिंग ऐप्स जो है ना, उनको थोड़ा रोक दीजिए, थाम दीजिए, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, कुछ तो ऐसा कर दीजिए कि वो ख़त्म हो जाए, वो आपकी आंखों के सामने ना आए, आपके कानों को सुनाई ना पड़े, ताकि आपका दिमाग उनको प्रोसेस ना कर सके। मतलब कि आपके फ़ोन में कुछ ऐसे ऐप्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी तरफ खींच रही हैं, जस्ट लाइक मैग्नेट। जैसे मैग्नेट लोहे को खींचता है, तो लोहे का तो समझ में आता है भैया, उनकी तो प्रॉपर्टी यही है, लेकिन वो जो ऐप आपको अपनी तरफ खींचता है, वो सिर्फ आपके समय को बर्बाद करने का एक निंजा टेक्निक होती है और आप वहाँ पर चले भी जाते हैं। और जैसे आप जाते हैं और आपको लगता है कि भैया सिर्फ पाँच मिनट मूड रिफ्रेश करेंगे, 5 मिनट का 5 घंटा कब निकल जाता है, नो आइडिया। उसके बाद हम कहते हैं कि दिन बड़ा छोटा हो गया है आजकल, मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ साल बहुत जल्दी निकल रहा है, अभी तो जनवरी स्टार्ट हुई थी, जून आ गया, इसे कैसे, क्योंकि भैया आप बिजी थे अपने फ़ोन के उस छोटे से आइकन के अंदर, जिसमें आपने सोच लिया था कि पूरी दुनिया समाई हुई है और आप उसी में लगे हुए थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी टाइम वेस्टिंग ऐप हैं, उनको अपने फ़ोन से हटा दीजिए। द बिगेस्ट टाइम किलर इज़ योर फ़ोन, यानी कि आपके हाथ में छोटा सा जो डिब्बा पकड़ कर घूम रहे हैं ना आप, सबसे बड़ा टाइम को बर्बाद करने और मारने वाला यही है। दूसरा आता है कि सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जो आपके दिन के अप्रॉक्स 3 से 4 घंटे ज़रूर लेकर जाते हैं। और ये बात सिर्फ आपकी नहीं है, ये बात हर उस इंसान की है जिसके पास ये ऐप्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बिजी रहते हैं, जिनके पास फ़ोन उठाने का टाइम नहीं है, उनकी तो बात अलग है। लेकिन अगर किसी के पास मौका है, तो पहली उंगली जो जाती है वो या तो फेसबुक पे टपकती है, या तो फिर टपक जाती है जा करके सीधे सीधे सीधे हमारे इंस्टाग्राम ऐप पर। और इंस्टाग्राम का एक आइकन होता है ना, जिसको कहते हैं हम रील्स आइकन, और वहीं जाकर हम टपकते हैं और हमेशा वहीं स्क्रोलिंग, इतनी स्क्रोलिंग हो जाती है कि रातों की नींद, दिन का चैन, दोनों वो रील लेके चला जाता है। तो जिन ऐप्स की आपको ज़रूरत नहीं है, उन ऐप्स को कृपया करके अपने फ़ोन से डिलीट कर दें, क्योंकि फ़ोन आपके लिए काम करना चाहिए, आपके अगेंस्ट नहीं। ये बात समझने में बड़ा मेहनत लगती है, हमको समझ नहीं आता कि क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि फ़ोन उनके लिए काम नहीं करता, वो फ़ोन के लिए काम करते हैं। कि एक छोटा सा डिब्बा आपको कैसे कंट्रोल कर सकता है, सोचिए आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, आपका फ़ोन आपको कंट्रोल कर रहा है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? आपको कंट्रोल करना चाहिए, मालिक आप हैं, अदरवाइज फिर आप भी लास्ट में यही कहेंगे कि भैया AI ने हमारी जॉब ले ली, क्योंकि AI को पावरफुल बनाने वाला भी कहीं ना कहीं ह्यूमन है और इस फोन को बनाने वाला भी ह्यूमन है।
तो जिसने जिसको निर्माण किया है, जिसने जिसको बनाया है, कृपया करके उस पर थोड़ा तो काबू रखे, कंट्रोल रखे, उसे अपने हद में रखे, ना कि आप उसकी हद में चले जाएं। तो भैया जितने भी ऐसे ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं, जिनका करना ही नहीं है, तो सबसे पहले तो अपने फोन के स्पेस को बचाएं, दूसरा अपने टाइम को बचाएं और उसको डिलीट कर दें, उड़ा दें। डिलीट करने में बहुत दर्द होता है ना। फिलहाल दूसरी बात आती

ना जाने कितनी ही बातें हम अपने बच्चों को सिखा देते हैं, लेकिन एक चीज जो हम उन्हें नहीं सिखाते वो ये कि सही समय पर अगर कोई चीज उन्हें बुरी लग रही है, कोई चीज उन्हें हर्ट कर रही है फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, तो ना बोलना सीख लो, ना नहीं बोला जाता, क्योंकि हमको लगता है बड़ों ने जो कह दिया, दूसरों ने जो हमसे कह दिया वो सर्वोच्च है और हम अपनी चीज़ों को सामने रखेंगे, देन वी आर सेल्फिश, हम मतलबी हो जाएंगे। इस मतलबी दुनिया में थोड़ा सा मतलब निकालिए और अपने लिए ना बोलना शुरू कीजिए। नहीं बोलेंगे तो फिर लास्ट पे वही कहेंगे भैया कि हमारा तो फ़ायदा दुनियादारी उठा के चली गई। हर वक्त, हर जगह, हर किसी को हाँ बोलना सिर्फ यूजलेस होता है, यानी कि बेमतलब होता है, बेवजह होता है और किसी काम का नहीं होता। इसलिए कोशिश कीजिए अपनी वैल्यू को बनाइए, और एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं नो, यानी कि ना नहीं करूँगी, जी हाँ, उसको बोलना शुरू कीजिए, बट रूडली नहीं, थोड़ा आराम से, थोड़ा प्यार से, थोड़ा धैर्य के साथ, ताकि सामने वाले का दिल भी ना जूझे और आपको भी ना रिग्रेट हो कि आपने किसी को हर्ट किया है, प्लस आप अपने लिए भी खुश हो जाए कि नहीं मतलब ही दुनिया में इतना भी मतलब ही नहीं हूँ, थोड़ा सा ही नहीं बोला यार। तो भैया ना बोलना सीख लीजिए, ना बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, आपके दिमाग को ख़राब होने से बचाता है, जो हम ओवर थिंकिंग रात में करते हैं उससे रोकता है, और अगर हर एक बंदा किसी के गॉसिप को ना बोलना शुरू कर दे ना, तो मुझे लगता है जो हमारे लिए अफवाहें उड़ा करती हैं ये कभी उड़े ही ना, क्योंकि लोग उन पर ध्यान देते ही नहीं हैं, और जब कोई ध्यान नहीं देगा तो अफवाह उड़ेगी कैसे। सोचिए आपके पास कोई इंसान आ रहा है और आपसे कह रहा है सुनो सुनो सुनो तुम्हें उनके बारे में कुछ बताना है, यू से लाइक नो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके बारे में जाने, भाई उसके पास बात करने वाला ही कोई नहीं होगा, जब उसके पास बात करने वाला नहीं होगा तो वो किसी को जो बताने जा रहा था वो भी नहीं बताएगा। ऐसे आपकी लाइफ भी आसान, उसकी लाइफ भी आसान, और जिसके बारे में बात की जा रही है उसकी लाइफ भी आसान, तीनों की लाइफ में कोई ड्रामा ही नहीं होने वाला। वो तो कहते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, सोचो चार लोग ना बोलने लगे तो चार लोग बस ना बोल के किसी की ज़िंदगी बचा लेंगे और किसी को भी कुछ नहीं कहना पड़ेगा, ना सुसाइड रेट हमारे भारत में बढ़ेगा। सोचिए ना बोलने का कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है आपकी लाइफ में, प्लस आपके टाइम को ये बचाता है, टाइम जो हमारे दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है, सबसे कीमती पैसा है, धन है, दौलत है, अगर आप ना बोलते हैं तो आपका वक्त भी बचा लेता है, इसीलिए ना बोलना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, सीखिए, क्योंकि हर किसी को बहुत टाइम लगता है ना बोलने में, और ये चीज़ें बाहर के लोग तो सीख गए हैं, अब हमारे बच्चों की बारी है, हमारी बारी है कि ना कैसे बोला जाता है। आइए बात करते हैं अब थर्ड रूल की, जो कि है 25 मिनट फोकस रूल, और इस रूल को फॉलो करके मैंने पिछली बार भी कहा था कि भैया 25 मिनट कोई काम करो, 5 मिनट का रेस्ट लो और 4 बार इसको रिपीट करो, 25 25 25 25, 5-5 मिनट का रेस्ट और 4 बार इसको रिपीट करो, इससे आपका टाइम भी बचता है, आपका दिमाग फोकस भी करता है और आपको काम करने में मज़ा भी आता है, क्योंकि बहुत हैवी नहीं लगता दिमाग को, ऐसा नहीं लगता कि यार कुंटल भर का वजन डाल दिया गया है और आपको सबको करना ही कर रहा है। वो जो हम लोग सोच के बैठ जाते हैं कि आज आज रात तेरा भाई तभी उठेगा जब तीनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, पूरा 3 सिलेबस खत्म कर देंगे, और उसके बाद हम उठते हैं और सोचते हैं एक भी नहीं हो रहा है क्योंकि याद ही नहीं हो रहा है। ऐसा हमारे साथ होता है, स्टूडेंट्स के साथ होता है, सबके साथ होता है, इसीलिए 25 मिनट का रूल बनाइए, 45 मिनट को मारिए गोली, बहुत पुराना हो चुका है 45 मिनट। अब आते हैं 25 मिनट पे कि हम 25 मिनट काम करेंगे, 5 मिनट अपना मस्त सा कोई म्यूजिक सुनेंगे और उसके बाद या फिर अपना फेवरेट कोई सिनेरियो सोचेंगे, यानी कि सामने जो है उसको देखेंगे, और 5 मिनट बाद दोबारा से काम पे लग जाएंगे फुल ईमानदारी के साथ, कोई बेमानी नहीं की जाएगी। और इस 25 मिनट रूल के बाद अब आप अपने लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हो, अपनी चीज़ों को बचा सकते हो। साथ साथ बात कर लेते हैं स्टॉप मल्टीटास्किंग, जी हाँ, ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जिनको मन करता है एक साथ सारे काम कर लूँगा मैं, एक हाथ नहीं है मेरे को, 10 हाथ निकले हुए हैं, मैं इधर डिग्री, उधर काम, इधर पैसा, इधर ये उधर वो, एक साथ जो 50 काम करने की कोशिश कर रहे होते ना सुबह सुबह, उन्हीं की प्रॉब्लम है एक्चुअली। जब आप बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करते, एक साथ 50 काम करने की कोशिश करते, तो आपका एक भी काम सही से नहीं हो पाता है। अब आप मम्मी तो है नहीं कि भैया बच्चों को तैयार करते हुए, दूध गर्म करते हुए, चाय भी बना ले, पराठे भी लगा ले, लंच भी पैक कर दे और सबकी सफाई भी कर डाले, प्लस
गुस्सा भी कर ले। अब आप ये तो कर नहीं सकते, इसलिए जब आप प्रोफेशनली काम करने उतरते हो किसी फील्ड में, तो कोशिश करो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एक काम पर होना चाहिए। जैसे मेरा अभी फोकस है आपको अच्छी अच्छी बातें बताना, आपको अपने मॉर्निंग शो में एंजॉय कराना, सो मेरा फोकस अभी यहीं पर है। लेकिन अगर मेरा फोकस अभी यहाँ की जगह पर कहीं और भी होता कि लाओ मैसेज भी टाइप कर ले।

हम किसी से बतिया भी ले, शो भी कर ले, तो नहीं हो पाता, क्योंकि मल्टीटास्किंग हमेशा हमारे दिमाग को और हमारे वक्त को इधर उधर लगा देता है, जिसकी वजह से ना वक्त बचता है और ना सही से दिमाग बचता है, ना सही फोकस हम कर पाते हैं किसी चीज पर। और हम आपको बता दें, आपका जो ब्रेन है वो फोकस बहुत जल्दी लूज कर देता है अगर आप बहुत जल्दी स्विच करते हैं काम के बीच में। तो कोई भी काम कर रहे हो उसे कंप्लीट करो, उसे पूरा करो। और अब बात कर लेते हैं लास्ट, और वो है प्लान योर डे। अपने दिन की शुरुआत को प्लान करो कि मॉर्निंग में उठकर क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है। ये तो हम कभी प्लान नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ आपका एम है, या फिर अपनी लाइफ को सिर्फ प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, तो मॉर्निंग से उठने के बाद एक टू डू लिस्ट बनाइए, जिसमें आपके बेड को सेट करना, ब्रश करना, और एक अच्छा शावर लेना, ब्रेकफास्ट करना, वर्कआउट करना, हर एक चीज़ की एक लिस्ट बनाइए और उनको टिक करते जाइए। और आपको पता चलेगा कि आपका कितना वक्त इससे बचता है, प्लस आपको कितना रिलीफ मिलता है, कितना सुकून मिलता है कि भैया देखो हमने सब काम निपटा लिया, आई एम सो ग्रेट, आई एम ये, आई वो। फिलहाल अब आप बताइएगा इनमें से आपका पसंदीदा वाला पॉइंट कौन सा है चैट बॉक्स के अंदर, और एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गाने को। हम मिलते हैं इस गाने के उस पार चैट बॉक्स में आपके मैसेजेस, आपके पैगामात को लेने के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंदा अपनी आरजे उन्नति के साथ।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: हां जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। और वक्त हो चला है आपके चैट बॉक्स की तरफ चलने का। मैं हूं आपकी मॉर्निंग वाली रेडियो शो की आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि भाई चलेंगे अपने चैट बॉक्स में आपके मैसेजेस को देखने, आपने क्या कुछ लिख के भेज दिया है। और इसी के साथ आज जो गोंडा में स्पेशल हो रहा है वो आपको ज़रूर बताएंगे। एंड ओके, तो हमारे साथ जुड़ी हुई थी प्रीति शुक्ला जी जो हमें सुनती हैं बहराइच से। वेरी लवली मॉर्निंग, वेरी लवली मॉर्निंग आपको भी। कैसी हैं आप? आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। और इसके बाद दीपांशी तिवारी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखते हैं गुड मॉर्निंग मैम जी, गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सबकी तरफ से भी बोल देते हैं हम आपको, आपका भी वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। नागेश्वर धाकड़ हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग उन्नति मैम, मैम नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू यू, नमस्कार आपको भी। मनीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं ब्लॉकबस्टर शो, थैंक यू सो मच, और आपका स्वागत करते हैं हम गुड मॉर्निंग गोंडा में। उन्नति जी नमस्कार लिखा है, नमस्कार आपको भी। जैसे कि मैं, ओहो हो क्या बात है, आप इतने सारे ऐप्स चलाते हैं। एंड इसके बाद गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बोले गए हैं, बहुत बार बोला गया है, तो आपको भी गुड मॉर्निंग आपके फ्रेंड्स की तरफ से। उन्नति जी इतना पतले होने का राज क्या है? ओह अच्छा, तो इस यू वांट टू नो माय डाइट, फिलहाल के लिए सिंपल है, वर्कआउट, प्रोटीन, फाइबर। आप अपनी डाइट और अपने वर्कआउट पे ध्यान दीजिए, बस इतनी यही राज होता है। नागेश्वर जी लिख रहे हैं, कभी कभी ना बोलना भी फायदेमंद होता है। ऑफ कोर्स, और यही बात आई थिंक हर किसी को समझने की जरूरत है कि ना बोलना बहुत जरूरी होता है। ये मतलब ही नहीं होता, आप सेल्फिश नहीं हो जाते हैं ना बोलने से, इवन आप और ज़्यादा खुश रहते हैं, लोग आपकी बाउंड्रीज को समझते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपकी वैल्यू करते हैं। तो आपको जहां लगता है कि कोई चीज़ आपको नुकसान दे रही है, आपके वक्त को, आपकी मेंटल पीस को, आपकी फिजिकल हेल्थ को, तो वहां पर ना बोलिए। एंड इसके बाद पूछा गया है, मैम आप कहना क्या चाह रहे हो समझ नहीं आ रहा, अब ना बोलना है कि ना बोलना है? आपको सिर्फ नो बोलना है, जब आपको कोई काम पसंद ना हो और आपको लग रहा हो कि ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे रहा है, तो आपको बोलना है नोप, एन ओ नो। एंड 25 मिनट काम करो और 5 मिनट आराम करो, लेकिन लोगों को 25 मिनट का काम नहीं दिखता, वह 5 मिनट का आराम दिखता है। जी जनाब, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उनको 5 मिनट का आराम देखने दीजिए, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो 25 मिनट का काम ही बोलेगा और 5 मिनट का आराम नहीं बोलेगा। तब तक उन्हें थोड़ा भ्रम में रहने देते हैं कि हम सिर्फ आराम करते रहते हैं, इसकी वजह से कॉम्पिटिशन थोड़ा कम होगा और आप अपनी लाइफ में थोड़ा और आगे निकल पाएंगे। एंड इसके बाद काफ़ी सारे बिजली और बादल भेज दिए गए, हालांकि ज़रूरत तो है हमें, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है गोंडा में। और इसके बाद कुछ तो पंजाबी में लिखा गया है जो मुझे पढ़ना नहीं आता, माफ कीजिएगा। फिलहाल आइए चलते हैं उस गोंडा की न्यूज़ की तरफ जो मैं आपको बता दूं, और वो ये है कि गोंडा में लगने जा रहा है जन कल्याण मेला, जो सुबह 10 बजे से मनकापुर ब्लॉक परिसर में जन कल्याण मेला की आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लग रहा है 10 बजे से मेडिकल कॉलेज परिसर में, तो आप अगर जाना चाहते हैं तो भाई जा सकते हैं और अपनी जांच करवा सकते हैं, आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल कीजिए। फिलहाल आइए लेते छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं और उसके बाद बताते हैं कुछ ऐसे होनहार, कुछ ऐसे बच्चों की कहानियां जो अपनी लाइफ में अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा काम कर रहे हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना शो गुड मॉर्निंग गोंडा, और हम आपको सुनाते हैं कुलविंदर बिल्ला की आवाज में एक पंजाबी गाना, चार दिन। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: डिलीशियस
6: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
5: और क्या क्या है खास?
6: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
5: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
7: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
8: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
7: सच में? क्या खास है वहाँ?
8: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
7: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
8: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कम्प्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
7: और फोटोग्राफी वगैरह?
8: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
7: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
8: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है, और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
7: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
9: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
10: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
9: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
10: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
9: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
10: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सबका हम आपके अपने वाले मॉर्निंग के शो के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी आर्चुनती और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। और जाने से पहले हमने कहा था कि आपको एक ऐसी बच्ची से हम मिलाने जा रहे हैं इस ब्रेक के उस पार, जो शायद इस उम्र के बच्चे अभी तैरना सीख रहे होंगे, कुछ लोग हैं जो कुछ और सीख रहे होंगे, लेकिन वो समंदर में गोते लगा रही है, प्लस समंदर को सफाई करने का जिम्मा भी उठा चुकी हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं आगे अपने शो गुड मॉर्निंग घोड़ा में। भाई, हम अपनी लाइफ में बहुत कूड़ा करकट करते हैं, ये बात सुनने में जितनी ही कड़वी है ये उतनी ही सच भी है। कोई भी चीज़ खाते पीते हैं उसका तुरंत कचरा फेंक देते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि वो जगह फेंकने लायक है भी कि नहीं। अब जहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई होती है, स्पेशली कोई पार्क या फिर जहाँ पे कैमरे लगे होते हैं, वहाँ तो एक बार को हम सोचते हैं कि चलो यार सफाई कर लेनी चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए कूड़ा। बट जहाँ कैमरे नहीं हैं, जहाँ कोई आपको देख नहीं रहा है, जो आपके रास्ते हैं, आप जिस बस के अंदर बैठे हैं, आप जहाँ घूम रहे हैं, बस ट्रेन उनकी सीटों के नीचे आपको हजारों चीज़ें मिलती हैं जो खाने के बाद फेंकी गई हैं। किसी के रैपर्स मिल रहे हैं, मूंगफली के छिक्कल मिल रहे हैं, न जाने क्या क्या फेंकते हैं इंसान। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कूड़ा उठा करके सारा का सारा समंदर तक पहुंचा देते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन समंदर में इतना कूड़ा कर क्या रहा है? एक सवाल तो ये बनता है, समंदर जो इतने सारे एनिमल्स का, इतने सारे जीव जंतुओं का घर होता है, उसे इंसानों ने किस हद तक गंदा किया है, इस बात का प्रूफ हमें आए दिन मिला करता है। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई हमें अवेयर करता है कि किसी की वजह से, देखो इस जानवर ने कोई पॉलिथिन खा ली, कहीं पर उसका मुंह फंस गया। और अब तो हालात ये आ चुके हैं कि ह्यूमन बॉडी में, यानी कि आपके अपने शरीर के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स मिलने लगी हैं, मतलब कि आपके अपने खून में माइक्रोप्लास्टिक्स घूम रही हैं। हम इस हद तक प्लास्टिक का यूज़ करने लगे, इस हद तक हम चीज़ों को देख रहे हैं। और यहीं पर एक लड़की है जो कि है चेन्नई की, नाम है थारागाई आर्थारा। चेन्नई की रहने वाली 11 वर्षीय स्कूबा गोताखोर है, जिनका पालन पोषण पौंडचेरी में हुआ था और वे महासागरों को बचाने के ऊपर एक मिशन पर है। हम आपको बता दें, उन्होंने समंदर से लगभग 3000 किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक निकाला है और समुद्री संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वो दूसरे लोगों से बात करती हैं, उनसे मिलती हैं, उन्हें अवेयर करती हैं, समंदर की सफाई अभियान चला रही है। पानी में प्लास्टिक प्रदूषण को देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाती थी कि भैया काहे काहे काहे है समंदर में इतना। समंदर जो कि मछलियों का घर है, जो कि न जाने कितने खूबसूरत और कितने बेहतरीन जीव जंतुओं का घर है, जिन्हें शायद आज तक हम जानते भी नहीं, उनका वो घर है समंदर, जहाँ से हमारा ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन निकल कर आता है। हमको आज तक लगता आया है कि पेड़ों से ऑक्सीजन आता है, जो कि सच भी है, लेकिन उसके अलावा समंदर है जो हमको, यानी कि आप सभी इंसानों को ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। उसी समंदर को हम प्लास्टिक से, केमिकल से भरते जा रहे हैं। और इस चीज़ को देखकर थारागाई बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ करती थी। इसीलिए उन्होंने महज 5 साल की उम्र में अपने पिता के साथ समंदर में प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करने में मदद करना शुरू कर दिया था। उन्होंने साथ मिलकर बहुत सारा कचरा निकाला, कुछ हजारों किलोग्राम के करीब कचरा उन्होंने निकाला। फिलहाल अभी वो 11 साल की हो चुकी हैं और 11 साल की उम्र में उन्होंने लगभग 3000 किलोग्राम प्लास्टिक समंदर से निकाला है। अब सोचने वाली बात ये भी है कि समंदर 3000 किलोग्राम प्लास्टिक निकालने के बाद भी अभी समंदर के अंदर न जाने कितने किलोग्राम प्लास्टिक बाकी है। और ये प्लास्टिक कोई जानवर लेकर नहीं जाता है, ये हम लेकर जाते हैं इंसानों की बस्तियों को साफ करने के लिए, हम अपने सोसाइटी को साफ करने के लिए, अपने घर को साफ करने के लिए दूसरों के घर को गंदा कर रहे हैं। अपने घर को साफ करके कूड़ा रोड पर फेंक देते हैं या बाहर फेंक देते हैं। इसके लिए अब लॉज बन चुके हैं, नगर पालिका परिषद के लोग आपके घर तक आते हैं, कूड़ा कचरा लेकर जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समंदर के आसपास रहते हैं और पूरा कूड़ा उठा करके किसी नगर पालिका को नहीं देते हैं, वो समंदर में फेंक देते हैं। इसके अलावा
जो लोग क्रूज पे जा रहे हैं, जो कहीं और जा रहे हैं, और उन्हें लगता है कि समंदर पे तो कोई रहता ही नहीं, कोई नहीं रहता, इनके अंदर कुछ नहीं है, इनके अंदर कोई जिंदगी नहीं पनप रही है, और सारा कचरा, सारा कूड़ा, सब कुछ यूं ही फेंक दिया जाता है। और वो सारा कचरा, वो सारा कूड़ा किसी जानवर के, किसी मछली के, किसी कछुए के पेट के अंदर मौजूद होता है। फिर हमें वो फोटोज देखकर लगता है यार इंसान बहुत खराब हो रहे हैं। दूसरों को बदलने की चाहत में हम ये भूल गए हैं कि हमें खुद को बदलने की सबसे पहले जरूरत होती है। तो भाई आप भी मुझे लगता है थारा गाय से थोड़ा सा इंस्पायर्ड होंगे और अपने आसपास कूड़ा कचरा ना फेंकते हुए अपने सोसाइटी को, प्लस अपने एनवायरमेंट को, अपने समाज को, अपने घर को, अपनी रोड को, अपने शहर को, अपने क्षेत्र को, और आपके दूर किसी समंदर को साफ रखने की कोशिश करेंगे। आप जरूर बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या ओपिनियन है, और एंजॉय कीजिए दुपट्टा तेरा नौ रखता। स्टे ट्यून्ड, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गुंडा आपके अपने एफएम रेडियो 99.6 एफएम पर।

इससे पहले कि आप हिमेश रेशमिया की आवाज में कहीं खो जाएं, मुझे आपको बहुत इम्पोर्टेंट कुछ बताना है। इतना इम्पोर्टेंट कि सुनने के बाद आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, आपको जब भी ब्लड की ज़रूरत होती है, यानी कि खून की ज़रूरत होती है, तो आप डोनेशन में यानी कि ब्लड बैंक में जाकर देख लेते हैं कि आपके पास मौजूद है कि नहीं है, क्या वो ब्लड ग्रुप है कि नहीं है। बट क्या आपको पता है, जानवरों के लिए भी ब्लड बैंक है। एक्चुअली ये बातें बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, उन्हें लगता है जानवरों के लिए कोई ब्लड बैंक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके अंदर जानवरों के लिए स्पेशली यानी कि एनिमल्स ब्लड बैंक भी होता है, जहां पर जानवरों का ब्लड डोनेट भी किया जाता है और उनके लिए खून लिया भी जाता है। थोड़ा सुनने में अजीब है, लेकिन ये बात सच है। आइए बता देते हैं भाई, आपके गुड मॉर्निंग गोंडा में यानी कि आपके मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में आप सुन रहे हैं अपनी आरजुनती को रेडियो कैनल 89.6 FM। आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM की फ्रिक्वेंसी, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन। और इस धड़कन पर आप बात करेंगे एक ऐसे इन्फॉर्मेशन की जो बहुत कम लोग जानते हैं। भाई, अगर आपके पास पालतू जानवर है और पालतू जानवरों का अगर आपने सोचा कभी कोई ब्लड बैंक नहीं होता, तो हम आपको बता दें उनका ब्लड बैंक होता है। इंडिया समेत कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर जानवरों के लिए भी ब्लड बैंक है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आता है। ये वो देश हैं जहां पर जानवरों के लिए भी खून की उपलब्धता होती है। अगर आपके पेट को कभी कोई परेशानी हुई है या कोई नुकसान हुआ है, किसी एक्सीडेंट से वो गुजरा है और आप सोचते हैं कि बहुत खून बहने की वजह से इसकी डेथ हो गई है और मैं कुछ मदद नहीं कर पाया, तो अगली बार आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जानवरों के लिए भी ब्लड बैंक होता है। चौकी का बिल्कुल भी मत, इंसानों की तरह अब हमारे बेजुबान जानवरों को, बेजुबान दोस्तों के लिए भी एनिमल ब्लड बैंक खुल चुके हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, हमारे प्यारे देश भारत, सब जगह पर ये ब्लड बैंक काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि हमारे उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में बड़े सरकारी जानवरों के कॉलेजेस में, या फिर कहें तो वहां जहां जानवरों का इलाज होता है, वहां भी ये सुविधा मौजूद होती है। जी हाँ, तो भाई जिनके पास भी पेट एनिमल्स हैं और जो परेशान रहा करते हैं, उनके लिए काफी बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपके एनिमल्स के लिए यानी आपके उन दोस्तों के लिए जो आपसे कभी कुछ बोल नहीं पाते लेकिन आंखों से अपनी पूंछ के जरिए सब कुछ बता देते हैं, सारे इमोशन, सारे जज्बात दिखा देते हैं, वो उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए इंडिया भी अब एनिमल ब्लड बैंक रन कर रहा है। तो भैया, ये आपके लिए मुबारकबाद। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है जानकर कि अभी तक जो लोग इस बात का रिग्रेट करते थे कि हम जानवरों को इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि हमारे पास खून की उपलब्धता नहीं है, अब ऐसा नहीं होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचाना अब है आपका काम, जो लिसनर मुझे सुन रहे हैं रेडियो गार्डन फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन से और जिन्होंने अभी अभी इन्फॉर्मेशन मुझसे सुनी है, आप कोशिश कीजिएगा आप बाकी लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं ताकि अगली बार किसी का कोई दोस्त उसे खून की कमी की वजह से छोड़कर ना जाए और वो मदद कर सके। जानवरों का ख्याल रखिए, जानवर आपका भी ख्याल रखते हैं। आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और आप एंजॉय कीजिए हिमेश रेशमिया की आवाज में चकना चकना, और हम मिलते हैं इस गाने के उस पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

भैया लिस्टर्स, अब आप हो जाइए तैयार, क्योंकि आज चुनौती देने वाली हैं आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस जो आपकी लाइफ को कर देंगे एकदम चेंज। चैलेंज का नाम ही चेंज करना होता है, यूं मुझे लगता है। फिलहाल आप सबका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं वापस से आपके अपने मॉर्निंग के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी आरजे चुनौती और आप सुन रहे हैं 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। और इस धड़कन को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करते हुए आइए चलते हैं उन चैलेंजेस की तरफ जो आपको फॉलो करने हैं, आपको पूरे करने हैं अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन करने की चाहत रखते हैं। अगर आप अपने अकेलेपन के डर को खत्म करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहते हैं, सोशल एंजाइटी को गुड बाय टाटा कहना चाहते हैं, या फिर तुरंत का तुरंत डिसीजन लेना चाहते हैं यानी कि अभी के अभी मैं सब कुछ कर डालूंगा वो वाली फीलिंग करना चाहते हैं ना, या फिर खुद को तलाश रहे हैं, खुद को ढूंढ रहे हैं भीड़ में दुनिया में, तो आइए उन चैलेंजेस पे बात कर लेते हैं जो आपको करने हैं, जिससे आपके दिमाग को कुछ नया करने का मौका मिलेगा और अपनी पुरानी बाउंड्रीज को तोड़ के आगे निकलने का मौका मिलेगा। जी हाँ, तो वो चैलेंजेस कौन से? सबसे पहला तो होता है कि हमें हर चीज अकेले करने से डर लगता है। इवन कई लोग तो ऐसे भी होते भैया जिनको कहते हैं ना अकेले करने में हालत खराब हो रही है, किसी से बात करना हो तू भी चलना, कहीं नीचे जाना तू भी चलना, रेस्टोरेंट जाना तू भी चलना, हम ऐसी बातें करते हैं। और ये चीज शायद हमने स्कूल्स में ही सीखी है कि अगर हमें वाटर बॉटल भी भरना जाना होता था तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी पकड़ के ले जाते थे, ए तू भी चलना। अपने बर्थडे पे हमें टॉफीज देने जानी होती थी तो मैम के साथ स्पेशली हमारे पास एक होता था कि मैम आज तो मेरा बर्थडे है, क्या मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को ले जा सकते हैं, और हम पूरे बिल्डिंग का चक्कर लगाते थे 3-4 पीरियड्स खत्म करने के बाद जब हम वापस आते थे, उसके बाद उन मेमोरीज को अच्छे तरीके से याद करते थे। बट इसी दौर में हम एक चीज़ भूल गए कि कुछ चीज़ें लाइफ में अकेली करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें लाइफ में आगे निकलना होता है। तो ये बात कर लेते हैं उन चैलेंजेस की जो मैं आपको देने जा रही हूँ, हर वक्त तो नहीं लेकिन कभी कभी छोटे छोटे कदमों के साथ इनको करने की कोशिश कीजिएगा और आप देखिएगा धीरे धीरे आप में कितना फर्क आता है। सबसे पहले है सोलो कैफे में जाना। अगर आपने कभी अकेले कॉफी पी होगी ना बैठ करके, या फिर कभी इम्तियाज अली की मूवीज देखी होंगी, तो उसमें एक सीन आता है, स्पेसिफिक सीन होता है कि हमेशा मेन कैरेक्टर हमेशा खाना अकेले खाता है, कॉफी अकेले पीता है, सैंडविच खा रहा है, मतलब कुछ भी ऐसे खाने पीने का जो काम होगा ना वो अकेले ही कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त मेन कैरेक्टर को तलाश होती है अपनी, वो कर रहे होते हैं हील, पुरानी बातें उन्हें परेशान कर रही होती हैं और वो उनसे निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं खुद को ढूंढ रहे होते हैं अपने अंदर इस दुनिया में इस भीड़ में, और खुद की तलाश के लिए ही वो अकेले बैठकर या तो सोचते हैं और सोचते सोचते कुछ ना कुछ ज़रूर खाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब आपका मन करे कॉफ़ी पीने का तो पूरे टीम को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कॉफ़ी पीने का मन आपका है तो कोशिश करें कि आप इस बार कैफ़े में अकेले जाएं, कॉफ़ी खुद के लिए खुद ऑर्डर करें और वहाँ पर बैठ के आराम से अपनी कॉफ़ी इन्जॉय करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके दिमाग से सबसे पहले वो डर निकलता है जो हर दिन हर किसी को परेशान करता है, और वो होता है अकेलेपन का डर। आप किसी पर डिपेंड नहीं रह जाते। हम अक्सर अपनी खुशियों के लिए, अपने वजूद के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं और हम सोचते हैं जब तक दूसरे हमारे साथ हैं वो हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा पार्टनर हो सकता है, हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जब तक वो हमारे साथ है तब तक हमारी वैल्यू है, तब तक हम हैं, जब तक वो हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। और यही डर आपको हर जगह पर काबू करके रखता है। इवन इसी डर की वजह से न जाने कितने लोग ऐसे भी हैं जो टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर भी रहते हैं। तो कोशिश कीजिए अकेले रहने की। इससे एक नज़रिया आता है आपको सोचने का, दूसरा आपके रिलेशनशिप और भी ज़्यादा बेटर होते हैं, तीसरा आप खुद के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं और किसी पे डिपेंड ना होकर खुद के ऊपर ख्याल रखते हैं। तो अगली बार कॉफी अकेले पीना है, दोस्तों के पूरी टीम को नहीं बुलाना है कि भाई तू भी चल तू भी चल तू भी चल, सब चलते हैं और एक साथ बाइक पे 3-4 लोग बैठ के ना जाएं। इस बार अकेले बाइक उठाइए, अकेले जाइए, खुद को एंजॉय कीजिए, खुद के लिए क्वालिटी

टाइम दीजिए। तो पहला चैलेंज आपके लिए यही था कि सोलो कैफे टाइम। दूसरा चैलेंज जो आई थिंक बहुत सारे लोग नहीं करते हैं और ये काम मुश्किल है, क्योंकि जो भी इंसान अकेले रहता है कहीं भी, वो खुद के लिए खाना नहीं पकाना चाहता है। और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये जो आपसे बड़े लोग हैं ना, ये इनकी भी बात है। जो लोग अकेले रहते हैं वो सोचते हैं यार एक इंसान के लिए खाना क्या पकाना, इससे अच्छा मैं बाहर से खा लूँ, इससे अच्छा मैं ब्रेड खा के रह लूँ, मैं चाय पी के रह लूँ, ऐसा नहीं कितनी ही बातें होती हैं और वो पूरे पूरे दिन खाना ही नहीं खाते हैं। और उनका मन करता है तो वो दो मिनट की नूडल्स में शिफ्ट हो जाते हैं कि चलो दो मिनट के नूडल है तो यार मैगी में काम चल जाएगा ना, क्या करना है। इस ख्याल को निकालना है और अब अपने लिए खाना बनाना शुरू करना है। अगर आप अकेले भी रहते हैं तो सेल्फ यानी खुद के लिए सेल्फ कुकिंग, खुद बनाना है, खुद को खिलाना है और खुद को बताना है कि ये खाना आप ही ने बनाया है, बाहर से नहीं आया है। और इसको एक प्रॉपर मील में कन्वर्ट करना है। दो दाल चावल सब्जी रोटी आप घर पर खाते हो, कुछ ऐसा ही मील आपको खुद के लिए प्रिपेयर करना है। इससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और प्लस अकेलेपन का जो डर है वो ऑफ कोर्स निकल जाता है। इसके बाद आता है रेस्टोरेंट में बैठकर अकेले खाना खाना। शुरुआत में जब मैं किसी को देखा करती थी तो लगता था अजीब है, बट ये अजीब नहीं है, ये बहुत पावरफुल मूव है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ करने की उम्मीद रख रहे हैं, तो आपको अकेले आगे बढ़ना पड़ता है और अकेले आगे बढ़ने के लिए आपको डर निकालना पड़ता है। और एक बहुत बड़ा पावरफुल मूव होता है जब आप अकेले बैठकर खाना खाते हैं, क्योंकि जब अकेले बैठकर आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं बहुत सारी नज़रें आपको देखती हैं और आपको लगता है कि सब मुझे जज कर रहे हैं, सबको लग रहा है मैं कितना खाता हूं, सबको लग रहा है मेरे पास कोई नहीं। और ये सबका जो डर होता है ना कि सब क्या कहेंगे, ये डर हमें अपने अंदर से निकालना है ताकि हम अपनी जिंदगी में कामयाब हो सके। क्योंकि किसी ने तो बहुत खूब लिखा है कि जब बिस्लरी मार्केट में आई थी, जब उसका आइडिया सामने आया था कि हम पानी बेचने वाले हैं, तो सबने उससे भी कहा था कि पानी कौन खरीदेगा तुमसे वे, पानी तो वैसे ही इतना सारा बिकता है, इधर पानी उधर पानी, झरने में पानी नदी में पानी, कहाँ नहीं पानी है, तुम पानी क्या बेच रहे हो इसमें। और उन्होंने अपने आइडिया को अपना बना कर रखा और आज आप देख सकते हैं बिस्लरी के अलावा मार्केट में कितनी सारी वाटर बॉटल्स घूम रही हैं, लेकिन आज भी लोगों का जो भरोसा है वो बिस्लरी पर ही है। लोग आज भी पानी खरीद रहे हैं, वो पानी जो शायद मुफ्त में मिल सकता है, मिलता है, उसको 20 रुपए देकर पानी खरीदा जा रहा है और वो कंपनी वो ब्रांड आज करोड़ों कमा रही है। तो लोग क्या कहेंगे, ये डर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अपनी कामयाबी के लिए। और कामयाब होने के लिए अकेला रहना पड़ता है, अकेले रहकर अकेले सोचना पड़ता है और इसीलिए अकेले रेस्टोरेंट में खाना खाना पड़ता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं सोलो ट्रिप की। हमारी अक्सर ट्रिप इसलिए कैंसिल हो जाती है क्योंकि हमें लगता है हमारे साथ कोई नहीं है जाने वाला, दोस्त नहीं जा रहे, ट्रिप कैंसिल, फैमिली नहीं जा रही, ट्रिप कैंसिल। भैया ऐसा मत कीजिए, सोलो ट्रिप पे निकल जाइए। ट्रिप का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ जाकर बहुत हाई फाई रेस्टोरेंट्स में खा खा के फोटो खींच रहे, ना, वहाँ की लोकल चीज़ों को एंजॉय कीजिए, उनके पीछे की कहानी जानी है, वहाँ पे जो लोकल चीज़ें मिल रही हैं, लोकल लोग हैं उनसे बातचीत कीजिए, उनके आसपास रहिए और आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिशंस कल्चर कितने डिफरेंट होते हैं। बड़े बड़े फाइव स्टार रेस्टोरेंट्स में रहना, होटल्स में रहना, वहाँ पे जाके खाना खाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, आप कहीं भी कर सकते हैं। बट अगर आप किसी स्पेसिफिक जगह पर घूमने जा रहे हैं, किसी सोलो ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं या फिर दोस्तों के साथ ही क्यों नहीं जा रहे हो, तो कोशिश कीजिए उस माहौल में ब्लेंड होने की, वहाँ के लोकल लोगों से मिलने की, वहाँ के लोकल खाने को खाने की, ना कि कोई फैंसी रेस्टोरेंट में कोई फैंसी सी डिश ऑर्डर करने की। इसके बाद बात करते हैं किसी क्लास को ज्वाइन करना। थोड़ा धक्का लगता है ना कि यार स्कूल तो कंप्लीट हो गया, कॉलेज कंप्लीट हो गया, आप कौन सी क्लास ज्वाइन करूँ। बेशक आप कीजिए, और एक उम्र के बाद, एक स्पेसिफिक एज के बाद, जैसे हम ये सुनते ना कि हमें कोई क्लास ज्वाइन करनी है, हमारे आंखों के सामने तारे नजर आने लगे थे क्लास, और हम मेरे बच्चों का टाइम हो गया पढ़ने का, तो अब मैं पढ़ूंगा क्लास में जाकर। जी हाँ, अब आप ज्वाइन करेंगे कुकिंग क्लास, डांस क्लास, जुम्बा क्लास, एरोबिक क्लास, कोई भी क्लास, लेकिन आप क्लास जरूर से ज्वाइन कीजिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ फील करने के लिए। और ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, लेकिन ये आपके लाइफ के लिए, आपके लिए बहुत बेहतर है। खुद के डिसीजन खुद से लेना, कितने लोग हैं जो ये नहीं करते, करने की कोशिश कर सकते,
ये तो आपको हजारों हाथ आने वाले हैं इस बात को रोकने के लिए कि खुद के डिसीजन खुद मत लो, बट फिर भी आप अपने डिसीजन खुद से लेना शुरू करो। सुबह 5 बजे उठना, आय हाय बड़ा मेहनत का काम है ना, 5 बजे नहीं उठा जाता क्योंकि हम 3 बजे ही सोते हैं। तो भाई आप कोशिश कीजिए अपने नींद के शेड्यूल को ठीक करें, वॉक करें, ड्राइव करें और घूमें बिना किसी जगह पर पोस्ट किए। आप में से कितने लोग हैं जो घूमने जाते हैं लेकिन इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पोस्ट नहीं डालते? मैं ये बात बोल सकती हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। क्या आप बोल सकते हैं? क्या आप वो इंसान हैं जो घूमने तो जाते हैं, जो पता नहीं कहाँ कहाँ घूमकर आ भी जाते हैं, फोटोज क्लिक भी करते हैं, बट उन फोटोज को कभी भी पोस्ट नहीं करते, लाइक्स और कमेंट के लिए उन्हें शेयर नहीं करते, और उसके बाद उसको पोस्ट करने के बाद लाइक्स की गिनती नहीं करते? अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके माइंड को जो फोमो हो जाता है ना कि यार सोशल मीडिया की दुनिया में मैं कहीं गायब ना हो जाऊं। सोशल मीडिया की दुनिया में लोगों को गायब होने की बड़ी दिक्कत होती है और वो फोमो रहता है हमेशा, वो नहीं होता है और आप अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। आपको लगता है कि दूसरा इंसान जो बाहर जा रहा है उसकी लाइफ बहुत चमक रही है, बट अंदर हकीकत कुछ और होती है। इसीलिए घूमिए, कहीं भी जाइए, मस्ती कीजिए, मजे कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए उनकी वीडियोस, उनकी फोटोज पोस्ट ना करें। इससे आपको रियल हैप्पीनेस मिलेगी, ना कि वो फेक वाली जो सोशल मीडिया के कुछ लाइक्स और चंद कमेंट्स की वजह से मिल रही है। ये कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल चैलेंज है जो आपको करने हैं कंप्लीट, और प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, एक एक करके इनको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। और जब ये सारे कंप्लीट हो जाए या एक भी कंप्लीट होता है तो उनके बाद आपके बिहेवियर में क्या डिफरेंस आया, आपने फर्स्ट टाइम क्या फील किया और उसके आखिरी बार यानी कि 10th time पर आपने क्या फील किया, मुझे जरूर से बताइएगा वापस आकर के हमारे इसी चैट बॉक्स में, यानी कि 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली का जो चैट बॉक्स है इसके अंदर आप अपनी जर्नी को जरूर से एक्सप्लेन कीजिएगा। तब तक के लिए आ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: प्लैटिनम रिकॉर्ड शहर टेक वन।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, यही गोंडा शहर की धड़कन। और यूं तो घड़ी ने कर दिया है इशारा कि वक्त होता जा रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आइए आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बता जाते हैं हम जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करने वाली है। हमारी इस कड़ी में आप हम बात करने जा रहे हैं पायल नाग की। ये नाम आपने शायद सुना होगा या शायद नहीं भी। अगर आप इंस्टाग्राम देख रहे हो या आपको क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा किसी और भी गेम में इंटरेस्ट है तो आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, पायल नाग। तो जब 5 साल की थी तो उन्हें 11,000 वोल्टेज का झटका लगा था। बिजली का झटका लगने की वजह से उनके हाथ पैर सब चले गए थे। जिस उम्र में बच्चे चलना फिरना सीख रहे होते हैं, बोलना उठना बैठना खेलना सीख रहे होते हैं, जिंदगी सीख रहे होते हैं, उस उम्र में उन्हें दोबारा से जिंदगी जीना सीखना पड़ा, क्योंकि अब उनके पास उनके दोनों हाथ नहीं थे, उनके पांव भी नहीं थे, उनका एक पैर भी, एक या फिर कहें दोनों घायल हो चुका था। अब लोगों को लग रहा था, डॉक्टर्स को लग रहा था कि शायद अब उनकी बेटी को, अब उस लड़की को हमेशा दूसरों के सहारे ही जीना पड़ेगा। उसकी जिंदगी अब एक धुंधली जिंदगी बन के रह जाएगी, वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। वहां पर पायल नाग ने ऐसा कुछ कर दिखाया है जो शायद आज हर उस इंसान को इंस्पायर्ड कर रहा है जो अपनी जिंदगी में हार मानते हैं। पायल नाग ने एक नहीं बल्कि दो गोल्ड मेडल जीते हैं। सोच सकते हैं, किसी के अगर हाथ नहीं है और वो भी गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है, इतने सारे देश के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है उस दौरान, तो ये कितनी बड़ी बात है। हम आपको बता दें, पायल नाग ने तीरंदाजी चुना था, निशानेबाजी। निशाना लगाना अपने आप में बहुत बड़ी कला होती है। बहुत सारे लोग निशाना लगाते हैं, अलग अलग देशों के बड़े कमाल तीरंदाज पहुँचते हैं निशाना लगाने के लिए। वो उनके बीच में रहकर पायल नाग ने अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए निशाना लगाया, सटीक निशाना, और उन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। तो एक बार जोरदार तालियां तो उनके लिए बनती हैं, एक सल्यूट उनको बनता है। तो भाई, ये तो थी पायल नाग की छोटी सी कहानी जो जाने से पहले हमने आपको बता दी, ताकि आप सिर्फ क्रिकेट के पीछे ना पड़े रहें, थोड़ा बाहर निकलिए, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट के अलावा भी हजारों गेम्स खेले जाते हैं और उनको अब पहचान की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे खिलाड़ी गोल्ड मेडल लाने के बाद भी उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल पाती जो उन्हें मिलनी चाहिए। फिर हमारा ही सवाल होता है कि हमारे देश में गोल्ड क्यों नहीं आ रहा? आ रहा है, बस आपको पता नहीं है। हमारे भारत में भी लोग गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, ये अलग बात है कि हम उन्हें सही पहचान नहीं दे पा रहे, उन्हें सही जगह नहीं दे पा रहे, उन्हें सही नाम नहीं दे पा रहे। उनकी जो जगह होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो भाई, अगली बार जब किसी का बच्चा खिलाड़ी बनने की उम्मीद रखकर अपने माँ बाप के पास जाए तो उन्हें ये ना सोचना पड़े कि यार गेम्स में तो कुछ नहीं रखा है, वो गर्व से कह सके कि हाँ, तुझे जो खेलना है तुम खेलो, और इसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप ही वो पहचान दिला सकते हैं और उसके सपनों की उड़ान भरवा सकते हैं। आप बताइएगा ज़रूर कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और हमारे साथ सबलू जी जुड़े हैं जो हमें सुन रहे हैं मुंबई से, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग आर्जुनती जी, गुड मॉर्निंग टू यू। दीपांशु जी लिख रही हैं नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और हम दोनों हैं मैम जी, ओके ऑल राइट, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ लगातार बने रहने के लिए आपके अपने मॉर्निंग वाले शो में। एंड घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं 89.6 FM, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। अगला कार्यक्रम है आपका गांव की गूंज, यानी कि वो भाषा जो आपको अपने बचपन की याद दिलाती है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
3: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
7: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
7: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
9: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
10: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
9: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
10: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
9: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
10: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
11: नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर आपका अपना पसंदीदा शो गांव की गूंज, और मैं हूं आपकी अपनी जया।
12: और मैं हूं समता। हर बार की तरह आज भी हम लेकर आए हैं गांव, परंपरा, विज्ञान और जीवन से जुड़ी एक बहुत खास चर्चा।
13: हां जी, तो आज का विषय है मल मास, जिसे लोग पुरुषोत्तम मास और अधिमास के नाम से भी जानते हैं।
14: ये महीना आखिर क्यों आता है? इसमें कौन से भगवान की पूजा होती है? क्या लोग विवाह और शुभ कार्य टालते हैं? और क्या सच में इस महीने का संबंध केवल आस्था से नहीं बल्कि विज्ञान से भी है?
11: तो आइए आज की इस सुंदर सुबह में भक्ति, ज्ञान और जीवन की बातों के साथ शुरू करते हैं हमारा विशेष एपिसोड। अरे, हमारे यूपी में तो मलमास का माहौल ही अलग होता है। गांव में शाम होते ही मंदिरों में घंटियां बजने लगती हैं, सारी औरतें एक साथ मिलकर के भजन गाती हैं, और वहां बैठे बच्चे तो प्रसाद का इंतजार करते रहते हैं।
12: बिल्कुल जया, पहले गांव में इसकी परंपरा ज्यादा दिखाई देती थी। सुबह सुबह मंदिरों में भजन, घरों में गीता का पाठ, सुंदरकांड, तुलसी पूजा। लेकिन अब शहरों में भी लोग बहुत श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास को मानते हैं।
13: हाँ दीदी, मेरी भाभी लखनऊ में रहती हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ हर मोहल्ले में कथा, भंडारे और भजन चल रहे हैं। बड़े बड़े मंदिर में तो सुबह से ही भीड़ लग जाती है।
14: और सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह लोग इस महीने को बहुत मानते हैं।
11: दीदी, आपको पता है हमारे यूपी में तो इस महीने की सुबह बिल्कुल अलग होती है। भोर होते ही मंदिर में हरे राम हरे कृष्ण की धुन आने लगती है और घरों में अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती है। हमारे यहाँ की महिलाएं सुबह जल्दी उठ के स्नान करके पूजा करने चली जाती हैं।
12: सही कहा, और अब शहरों में भी लोग अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालकर पूजा पाठ करने लगे हैं। कई लोग इस महीने में मोबाइल और दिखावे से दूर रहकर मन की शांति को खोजते हैं।
13: कल ही मैं बाजार गई थी, वहाँ भी लोग कह रहे थे कि मलमास चल रहा है, अभी शादी की खरीदारी बाद में करेंगे। कितनी श्रद्धा से लोग आज परंपराओं को निभाते हैं।
14: और एक बात मैंने देखी है, इस महीने में लोगों के अंदर सेवा की भावना भी बढ़ जाती है। कहीं शरबत बांटा जा रहा है, कहीं पानी की व्यवस्था, तो कहीं भंडारे हो रहे हैं।
12: यही तो इस महीने की सबसे सुंदर बात है। मलमास केवल पूजा का महीना नहीं बल्कि मन को विनम्र बनाने का महीना है।
11: सच में दी, गांव हो या शहर, इंसान कितना भी आधुनिक क्यों ना हो जाए पर अपनी जड़ों और आस्था से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता।
13: और शायद यही भारत की खूबसूरती भी है, जहाँ विज्ञान भी है, परंपरा और भक्ति भी।

0: और गांव में तो लोग एक दूसरे के घर जाकर कथा भी सुनते हैं, कहीं भागवत कथा, कहीं विष्णु पुराण, कहीं भजन संध्या। ऐसा लगता है कि पूरा गांव एक परिवार बन गया हो।
1: मध्य प्रदेश में मेरी मौसी रहती हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ भी पुरुषोत्तम मास में बड़े बड़े सत्संग होते हैं। गुजरात में तो लोग इसे बहुत ही विशेष मानते हैं। वहाँ मंदिरों में रात रात भर भजन चलते हैं।
2: राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, लगभग पूरे उत्तर भारत और पश्चिम भारत में इस महीने की बड़ी मान्यता है। कहीं इसे अधिक मास कहते हैं तो कहीं पुरुषोत्तम मास, लेकिन भावना सबकी एक ही होती है, भगवान के करीब जाना।
3: और अब तो नई पीढ़ियां भी इसमें रुचि लेने लगी हैं। पहले बच्चों को ये लगता था कि ये सब काम सिर्फ बड़ों के लिए है, लेकिन अब तो युवा भी गीता पाठ, भजन और सेवा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। मेरी बेटी बता रही थी कि उनके कॉलेज में भी कई लड़कियां इसी महीने उपवास रख रही हैं और शाम को मंदिर जाती हैं।
2: हाँ, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में दान सेवा का विशेष महत्व है, लेकिन सेवा दिखाने के लिए नहीं, सच्चे मन से होनी चाहिए।
3: और सच कहूं दी, गांव में कितना अपनापन होता है ना, वो मन को ना बिल्कुल छू सा लेता है। शाम को सब लोग मंदिर के बाहर बैठकर भजन सुनते हैं, बच्चे एकत्र होकर के खेलते हैं, बड़े कथा सुनाते हैं, कितना मनमोहक और सुंदर वातावरण होता है।
0: शहरों में भले ही ऊंची ऊंची इमारतें हों, लेकिन ऐसे महीनों में लोगों को अपनी मिट्टी और परंपरा याद आ ही जाती है।
1: हाँ, क्योंकि इंसान कितना भी आधुनिक हो जाए, मन को शांति तो आखिर भक्ति और अपनेपन से ही मिलती है।

0: अरे दीदी, अब वो कथा सुनाइए जिसमें भगवान विष्णु इस महीने को अपना नाम दिया था। पिछली बार आपने थोड़ा बताया था, लेकिन आज पूरा सुनाइए, ऐसा कि सुनते सुनते मन भर जाए।
1: बहुत पुरानी बात है बहनों, इतनी पुरानी जब धरती पर इंसान का मन आज जितना भारी नहीं हुआ करता था। तब समय के 12 महीने थे, हर महीने का अपना सम्मान था, अपना उत्सव था, अपनी पहचान थी। किसी महीने में दीपों का त्योहार, किसी में रंगों की होली, किसी में विवाह के मंगल गीत, किसी में फसल की खुशियाँ।
2: ओ, मतलब हर महीने के आने का लोग इंतजार करते होंगे।
1: हाँ, लोग महीनों का स्वागत करते थे। चैत्र आता था तो नए साल की खुशी, सावन आता था तो झूले और कजरी, कार्तिक आता था तो दीपों की जगमगाहट। हर महीने के पास कुछ था जिस पर उसे गर्व था। लेकिन
3: लेकिन क्या सुनता?
1: एक महीना ऐसा था जो सबसे अलग था, वह अतिरिक्त महीना था जिसे बाद में लोग मलमास कहने लगे। उसके पास न कोई त्योहार था, न कोई शादी ब्याह, न कोई उत्सव, न कोई मंगल गीत। जब वह आता लोग कहते, अरे अभी शुभ काम मत करो, किसी घर में शहनाई नहीं बचती, कहीं बारात नहीं निकलती, कई नए कपड़ों की खरीदारी नहीं होती। धीरे धीरे उस महीने को लगने लगा कि शायद वह बेकार है, और सचमुच बेकार। हाँ, कहते हैं वह महीना बहुत उदास रहने लगा। जब बाकी महीने आते तो धरती पर खुशी छा जाती, मंदिर सजते, ढोल बजते, घरों में पकवान बनते, लेकिन उसके आने पर लोग कहते, अभी रुक जाओ, अभी शुभ समय नहीं है। वह चुपचाप सब सुनता रहता।
2: जैसे किसी परिवार में एक बच्चा हो जिसे सब नजरअंदाज कर दें।
1: बिल्कुल सही कहा, वही पीड़ा थी उसकी। धीरे धीरे वह अकेले रहने लगा, उसे लगने लगा कि उसका कोई अपना ही नहीं है।
3: फिर उसने क्या किया?
1: एक दिन वह दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु सब मुझसे दूर भागते हैं, कोई मेरा सम्मान नहीं करता, मैं क्या करूं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, लेकिन तुम्हारा दुख दूर करने की शक्ति केवल विष्णु भगवान के पास है, तुम उनके पास जाओ।
0: फिर वो भगवान विष्णु के पास गया।
1: हाँ, कहते हैं वह रोता हुआ वैकुंठ पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका मन टूटा हुआ था। वह भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु सब मेरा अपमान करते हैं, किसी को मेरा इंतजार नहीं रहता, जब मैं आता हूँ तो लोग खुश नहीं होते, क्या मेरा जन्म ऐसे ही व्यर्थ है? यह सुनते ही भगवान विष्णु की आंखें करुणा से भर गईं। आंसू लेकर जो भी आया, प्रभु ने उसे अपनाया, जिसके मन में दर्द छिपा था उसको गले लगाया।
2: फिर भगवान ने क्या कहा?
1: भगवान विष्णु मुस्कुराए, उन्होंने उस दुखी महीने को उठाकर अपने पास बिठाया, फिर बोले, सुनो, संसार अक्सर बाहरी चमक को देखता है, जिसके पास उत्सव है लोग उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जो शांत है, जो भीतर से गहरा है, उसका महत्व लोग देर से समझते हैं।
0: वाह, क्या बात है।
1: भगवान ने आगे कहा, आज से तुम केवल मलमास नहीं रहोगे, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जो इस महीने में भक्ति करेगा, दान करेगा, गरीबों की मदद करेगा, उसके मन को शांत करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी।
3: मतलब जिसे सब अशुभ समझ रहे थे, भगवान ने उसे सबसे पवित्र बना दिया।
1: हाँ, यही तो इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है।
2: दी, सच कहूँ तो ये कहानी केवल महीने की नहीं लगती, ये तो इंसान की भी कहानी लगती है।
1: बिल्कुल, कई लोग जीवन में खुद को अकेला महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि कोई उनकी कद्र नहीं करता, लेकिन समय बदलता है, भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन किसी का मूल्य कम नहीं होने देते।
0: वो अब समझ में आया कि लोग इस महीने में इतना भजन और सेवा क्यों करते हैं।
1: क्योंकि ये महीना हमें विनम्र सिखाता है, यह सिखाता है दूसरों का अपमान मत करो, किसी को छोटा मत समझो, और जो अकेला है उसका साथ दो।
3: आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं,
1: और इसीलिए ऐसी कथाएं जरूरी हैं, क्योंकि ये केवल धर्म नहीं सिखाती, इंसानियत भी सिखाती है।
2: सच, अगर हर इंसान इस कथा का अर्थ समझ ले तो शायद दुनिया थोड़ी और सुंदर हो जाए।

0: इस महीने में आखिर किस भगवान की पूजा सबसे ज्यादा की जाती है?
1: इस महीने को भगवान विष्णु का महीना माना जाता है, इसीलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। विशेष रूप से लोग भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और तुलसी माता की पूजा करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि भगवान विष्णु ने ही इस महीने को सम्मान दिया था।
2: दीदी, कल हमारे गांव में शाम को गीता पाठ हो रहा था और कल ही मैंने देखा कि मंदिर में इतनी भीड़ हो गई कि लोग ना बाहर खड़े होकर भजन सुन रहे थे।
3: हाँ, और बस स्टेशन से लेकर रेलवे तक जगह जगह भंडारे लगे हैं। कोई शरबत बांट रहा है, तो खिचड़ी, तो कोई फल और ना जाने क्या क्या।
0: मुझे तो सबसे अच्छा तब लगा जब छोटे छोटे बच्चे भी सेवा कर रहे थे। कोई पानी पिला रहा था, कोई प्रसाद बांट रहा था।
1: यही तो इस महीने की सुंदरता है। ये महीना केवल पूजा का नहीं, सेवा और विनम्रता का भी है। नाम जपो और प्रेम बांटो, यही प्रभु का ज्ञान। सेवा से खिल उठता है सूना मन।
4: मलमास आवते पूरे गांव के वातावरण बदल जात रहा। लोग सभे सबेरे उठ के जल्दी नहाए, नदीम जात रहे और फिर ओकरे बाद मंदिर जात रहे।
3: आज भी गांव में यह परंपरा काफी बची हुई है और अब शहरों में भी लोग इसे बहुत श्रद्धा से मनाने लगे हैं।
4: अरे बहुत ज्यादा, पहले तो लोग ये महीना में यहाँ झूठो बोले से डरात रहे। घर में सादा बूदा खाना बनत रहा और शाम होते सभी कथा सुने जात रहे।
2: समता दी, लेकिन भगवान ने ये महीना बनाया ही क्यों?
1: अच्छा अब सुनो, इसका वैज्ञानिक कारण। हमारी धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य के हिसाब से एक साल लगभग 365 दिनों का होता है, लेकिन हमारा हिंदू पंचांग चंद्रमा के हिसाब से चलता है। चंद्रमा के हिसाब से ये साल लगभग 354 दिनों का होता है।
2: मतलब दोनों में लगभग 11 दिन का अंतर।
1: बिल्कुल, ये साल लगभग 11 दिन कम पड़ जाते हैं। अब सोचो, अगर ये अंतर ऐसे ही बढ़ता जाए तो धीरे धीरे हमारे त्योहार मौसम से हटने लगेंगे। होली सर्दी की जगह बरसात में आने लगेगी। दीपावली गर्मियों में पड़ सकती है।
3: अरे हाँ, फिर तो पूरा कैलेंडर ही गड़बड़ हो जाएगा।
1: इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बुद्धिमानी से लगभग हर 32 महीने बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया। यही कहलाता है अधिक मास।
0: मतलब ये केवल आस्था नहीं, पूरा खगोल विज्ञान भी है।
1: हाँ, यही हमारे भारतीय ज्ञान की महानता है। हजारों साल पहले बिना आधुनिक मशीनों के हमारे ऋषियों ने आकाश देखकर इतना सटीक गणित बना दिया था।
2: दीदी, सच में ये सोचकर आश्चर्य होता है, आज हम मोबाइल और मशीनों के बिना कुछ नहीं कर पाते। और तो और, उस समय के लोग इतना बड़ा हिसाब लगा लेते थे।
1: हाँ, इसीलिए हमारे त्योहार केवल धार्मिक नहीं है, उनमें प्रकृति और विज्ञान भी छुपा है।
3: और शायद इसीलिए लोग इस महीने को इतना सम्मान देते हैं।
1: हाँ, क्योंकि यह महीना हमें दो बातें सिखाते हैं, एक समय का संतुलन, दूसरा जीवन का संतुलन।
0: जीवन का संतुलन?
1: हाँ, जैसे कैलेंडर में संतुलन बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा गया, वैसे ही इंसान के जीवन में कभी कभी रुककर खुद को संतुलित करना जरूरी होता है। आज इंसान लगातार भाग रहा है, काम, पैसा, चिंता, प्रतियोगिता, लेकिन मन थक जाता है, रिश्ते थक जाते हैं। मलमास कहता है, थोड़ा रुकिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने व्यवहार को देखिए।
3: सच बात है बहन जी। देखो, पहले लोग शाम को साथ साथ बैठा करते थे, अब तो सब के सब मोबाइल में लगे रहते।

0: करते हैं।
1: इसलिए ऐसे महीने बहुत जरूरी हैं। ये हमें फिर से इंसान बनना याद दिलाते हैं।
2: सच में दी, मलमास केवल एक महीना नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे भगवान इंसान से स्वयं आकर कह रहे हो कि थोड़ा रुक जाओ और अपने मन को फिर से अच्छा बना लो। डमरू।

0: दी, मैं एक बात पूछूं?
1: पूछो जया।
0: क्या आपको पता है कि आजकल के लोगों के जीवन में सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन खाली खाली रहता है?
1: हाँ जया, यही तो आज के समय का सबसे बड़ा दुख है। पहले लोगों के पास सुविधाएं कम थी, लेकिन मन में धैर्य ज्यादा था। अब सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन मन बहुत जल्दी टूट जाता है।
2: पहले दादी और नानी कहानी सुनाती थी, अब बच्चे मोबाइल देकर सो जाते हैं।
3: और सबसे ज्यादा अकेले तो बुजुर्ग हो गए हैं। बच्चे बाहर नौकरी में और घर में सन्नाटा।
1: तुमने ध्यान दिया है, पहले शाम होते ही लोग घरों के बाहर चारपाई डालकर बैठते थे। कोई रामायण की चौपाई सुनाता था, कोई खेत की बात करता था, कोई बच्चों को कहानी सुनाता था। और अब शाम होते ही दरवाजे बंद, टीवी चालू, मोबाइल हाथ में और मन अंदर से खाली।
0: दी, क्या यही कारण है कि अब लोग भक्ति और परंपरा की ओर फिर से लौट रहे हैं?
1: हाँ, क्योंकि इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, मन को शांति आखिर प्रेम, विश्वास और अपनापन ही देते हैं। तुमने देखा होगा, जब घर में बहुत तनाव होता है तब लोग मंदिर जाते हैं, जब मन टूटता है तब भजन सुनते हैं, जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब भगवान को याद करते हैं।
3: सच, कई लोग कहते हैं कि भक्ति बूढ़ों के लिए होती है, लेकिन मुझे लगता है कि भक्ति तो थके हुए मन के लिए होती है।
1: वाह, आज तो तुमने बहुत बड़ी बात कह दी।
3: बेटियों, पहले मलमास आते ही लोग अपने मन को भी साफ करते थे। अगर किसी से झगड़ा हो गया हो तो जाकर माफी मांग लेते थे। अगर किसी गरीब की मदद करनी हो तो चुपचाप कर देते थे। उस समय दिखावा कम था, सच्चाई ज्यादा थी। आजकल तो दान देकर फोटो भी खिंचवाते हैं।
1: हाँ, लेकिन भगवान शायद वही काम स्वीकार करते हैं जिसमें अहंकार कम हो।
0: दी, जरा ये बताइए, आपको कभी डर लगता है?
1: डर तो लगता है जया, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ, जब तक इस देश में कोई दादी बच्चे को कहानी सुनाती रहेगी, तब तक मंदिर की घंटियाँ बजती रहेंगी। जब तक कोई भूखे को रोटी खिलाता रहेगा, तब तक हमारी संस्कृति पूरी तरह खत्म नहीं होगी।
3: पुरुषोत्तम मास में रोज एक दीप जलाना चाहिए।
1: देखा, यही परंपरा है। किताबों से ज्यादा बच्चे घर के वातावरण से सीखते हैं।
0: सच में, अगर घर में हर समय बड़े लोग आपस में झगड़ते रहेंगे तो बच्चे इससे क्या सीखेंगे?
1: और अगर घर में भजन हो, प्रेम हो, बड़ों का सम्मान हो, तो वही बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बनते हैं।
2: आप लोगों ने एक बात का ध्यान दिया है ना, मलमास में लोग थोड़ा सरल हो जाते हैं। कोई महंगे कपड़ों की बात नहीं करता, कोई दिखावे की चिंता नहीं करता, बस मन को शांत रखने की कोशिश करता है।
1: क्योंकि ये महीना हमें याद दिलाता है कि जीवन की सबसे जरूरी चीजें खरीदी नहीं जा सकती हैं। शांति, प्रेम, अपनापन, विश्वास
3: और समय।
1: आज लोग पैसे कमाने में इतने व्यस्त हैं कि अपने ही लोगों के लिए समय नहीं बचता।
0: कल ही एक बुजुर्ग कह रहे थे, बेटे पैसे भेज देते हैं लेकिन उनको बात करने का समय नहीं होता। सुनकर मन बहुत दुखी हो गया। रिश्ते केवल खून से नहीं होते, वो समय मांगते हैं। दो मीठे शब्दों से ही सूने मन में भी खुशी भर जाती है।
1: मलमास हमें यही सिखाता है, जीवन केवल कमाने के लिए नहीं मिला, थोड़ा समय अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने गांव के लिए और अपने मन को भी, अपने मन के लिए भी निकालो।
2: और शायद भगवान के लिए भी।
1: हाँ, लेकिन भगवान को केवल मंदिर में मत खोजो। अगर कोई बूढ़ा अकेला बैठा हो तो तुम उससे दो बातें कर लो, वहाँ भी भगवान है। अगर कोई प्यासा पक्षी हो तो तुम उसे पानी दे दो, वहाँ भी भगवान है। अगर कोई दुखी इंसान हो तो तुम उसका हाथ पकड़ लो, वहाँ भी भगवान है।
4: समता दीदी, भगवान दिखाई क्यों नहीं देते?
1: हाँ बेटा, शायद सबसे ज्यादा वही रहते हैं।
3: आज की बातों ने मन हल्का कर दिया।
2: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मलमास केवल कैलेंडर का महीना नहीं, मन को ठीक करने का समय है।
0: और शायद रिश्तों को फिर से जोड़ने का भी।
1: हाँ बहनों, जब जीवन बहुत उलझ जाए, जब मन बहुत थक जाए, जब रिश्तों में दूरी आने लगे, तब थोड़ा रुक जाना चाहिए, एक दीप जलाना चाहिए, थोड़ा भजन सुनना चाहिए और किसी अपने से दिल की बात कहनी चाहिए। क्योंकि अंत में इंसान को याद वही रहता है कि किसने उसे प्रेम दिया।
2: थोड़ा प्रेम बचा लो मन में, थोड़ी दया बचा लो, दौड़ बहुत ली जीवन भर अब, थोड़ा खुद को पालो, पुरुषोत्तम मास ये कहता है, मन का दीप जला लो।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: अरे अरे वेट, ज्ञानस्थली लाइव जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ खास जानकारियाँ आपके अपने ज्ञानस्थली डिपार्टमेंट से और सुनते हैं मोटिवेशनल स्टोरी। सो ये सब आपको मिलेगा आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञानस्थली लाइव में रोज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। सो सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी तुरारा रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
12: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए? इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी, सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
13: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
12: भैया बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
13: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पी लिया हो या फिर जिनमे संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो, NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी RJ आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
12: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
13: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
12: अच्छा।
13: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
12: अच्छा भैया, तो अब ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
13: बहुत सारी,
12: जैसे?
13: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक एक करके बताता हूँ।
12: जी।
13: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
12: और बाकी?
13: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी RJ आकांक्षा जी, NBSU का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते तो NBSU माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है, जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है, त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है, माता पिता दोनों KMC कर सकते हैं।
12: अरे वाह, क्या बात है भाई, और इसके अलावा भी कुछ है?
13: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। NBSU में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है। और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल, यदि बच्चा गंभीर हो, NBSU पहले बच्चे को स्थिर करता है फिर SNCU को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
12: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत NBSU ले जाना चाहिए?
13: देखिए आकांक्षा जी,
12: जी,
13: नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
12: जी
13: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है या बच्चा हाँफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए, शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे तो सीधा NBSU। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है। देर मत करो आरजे दीदी
7: जी।
13: खासकर कम वजन वाले बच्चे 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर NBSU दिखाना चाहिए। ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
7: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा NBSU से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
13: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है, और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे, सिर हाथ पैर ढककर रखे, कैम्सी यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल ना घी ना हल्दी, बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाए, और डॉक्टर जो तारीख दे फॉलो अप जरूर कराए, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े तो तुरंत वापस NBSU।
7: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी, लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है?
13: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ENC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जाने और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें। साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाए, जब पूरा गांव जागरूक होगा नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
7: और भैया हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्यों?
13: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं, और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
7: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
13: बस इतना ही, NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी हल्के में मत लीजिए, उसका एक एक मिनट कीमती होता है, संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाओ, NBSU पहुंचो। आपका सही समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है।
7: बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। तो श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है, हम फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM के साथ। नमस्कार।
14: हाँ जी, हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है 12 बज चुके हैं और 12 बजे होता है आपका अपना स्वास्थ्य संगनी, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ कई बैनर के तले। मैं हूँ आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपकी फेवरेट वाली आरजी आ चुकी हैं और भाई गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में रोड साइड चाट के ठेले और उनमें से आती खुशबू जितना ही हमारा दिल लुभाती है, और छोटी सी गलती उतने ही हमारे पेट में जाकर बूम यानी कि ब्लास्ट करती है। अब आपने भी कई बार देखा होगा कि बाहर का खाने के बाद कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है जिसमें पेट में दर्द होना, उल्टी आना, बुखार आना, और हम सोचते हैं हमने ऐसा भी क्या किया है। एक ऐसा दुश्मन जो आपके प्लेट से निकल कर आपके पेट तक जाता है, एक ऐसा विलन जो दिखाई तो नहीं पड़ता है लेकिन बीमार आपको हफ्तों के लिए कर जाता है, जो आपको कमजोर हफ्तों के लिए कर जाता है। आज उसी विलन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं पड़ रहा, और जिसको हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। सुनने में काफी खतरनाक लगता है, पॉइजन का वर्ड सुनते ही लगता है भाई किसी ने जहर घोल दिया है, और जब खाना जिसको हम खा रहे हैं एनर्जी के लिए, सोचिए अगर वही हमारे शरीर में जाकर जहर का काम करने लगे तो क्या होता है, तो क्या होता है बताने वाले हैं आज के अपने वाले शो में। तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए आपका अपना शो स्वास्थ्य संगली। मिलते हैं इस वाले ब्रेक के उस पार बताने के लिए कि आफ्टर ऑल क्या है ये फूड पॉइजनिंग, क्यों होती है ये फूड पॉइजनिंग, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से आप कर सकते हैं इस फूड पॉइजनिंग को ट्रीट। स्टे ट्यून्ड।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

हाल में ही आपने भी कोई खराब खाना खाया है या आप थोड़े से भी अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा बीमार बीमार महसूस कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कल रात तो अच्छे खासे थे, भले चंगे थे, और अचानक से पेट में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है, साथ में उल्टी भी आ रही है, बुखार भी है, कमजोरी भी है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो होशियार हो जाइए क्योंकि ये हो सकता है फूड पॉइजनिंग, जिसके बारे में आज हम करने वाले हैं बात। तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आशुनती, लेकर आई हूं सेहत सही लाभ के बैनर के तले आपके लिए इस खूबसूरत सी श्रृंखला को, जिसमें बात होती है आपके सेहत की, आपके अपनों की सेहत की, स्पेशली आपकी आज बात होगी आपके पेट से जुड़ी हुई। क्योंकि भाई खाना खाने का शौक हम भारतीयों से ज्यादा आज तक किसी को नहीं होता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। जब भी हम खाने को देखते हैं, स्पेशली जब हम स्ट्रीट पे निकलते हैं, यानी कि रोड साइड निकलते हैं, और स्ट्रीट स्टॉल इतने सारे होते हैं, उनमें से आ रही इतनी लजीज खुशबू होती है कि हमसे रुका नहीं जाता, और हम सोचते हैं पानी बताशे भी खा लिए जाए, ये भी खा लिया जाए, बर्गर भी खा लिया जाए, चाउमीन भी खा लिया जाए, और क्या ही हो जाता है। एक दिन तो चीट डाइट चलती है ना, और जिस दिन चीट डाइट करते हैं पता चलता है हमारे पेट ने हमारे साथ ही थोड़ी सी चीटिंग कर दी और अब पेट में हो रहा है दर्द। तो अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह से हो रहा है तो भाई वो है फूड पॉइजनिंग, या फिर हो सकती है फूड पॉइजनिंग। लेकिन ये बला है क्या, फूड पॉइजनिंग कहते किसको है? तो भाई अगर किसी खाने के जरिए आपके शरीर में कोई वायरस, कोई टॉक्सिन, कोई बैक्टीरिया अंदर चला गया है जिसने आपको अंदर से बीमार कर दिया है, तो आपको होती है फूड पॉइजनिंग। दूषित भोजन या पेय पदार्थ का सेवन से होती है। हम आपको बता दें कि कोई हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी या फिर कोई टॉक्सिन्स आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं खाने के जरिए, और उसी के बाद आप होते हैं बीमार। आपके पेट में होता है बहुत ज़्यादा दर्द, उल्टियाँ होना, मतली आना, दस्त होना, पेट में लगातार दर्द होना या फिर बुखार, ये सारे लक्षण शामिल होते हैं जब भी किसी को होती है फूड पॉइजनिंग। ये हल्के से लेकर बहुत गंभीर तक हो सकते हैं। आमतौर पर तो इसे कई लोग घर में ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि वॉमिटिंग यानी कि उल्टियां बहुत ज्यादा आती है। उल्टियों के साथ साथ लगातार लूज मोशंस भी आते हैं, और जिससे हालत बद से बदतर होती चली जाती है। स्पेशली अगर आप डायबिटिक के पेशेंट हैं और आपको अगर फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो आपकी कंडीशन और भी ज्यादा क्रिटिकल होने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि भाई एक तो आपका शुगर लेवल बहुत तेजी से डाउन होने लगता है, यानी कि लो होने लगता है, उसमें फिर आपको चक्कर आते हैं, आपकी बॉडी उल्टी भी कर रही है, आपकी बॉडी से लूज मोशन भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी हो रही होती है डिहाइड्रेट। और इस दौरान अगर आपने कहीं ना कहीं अपनी शुगर की दवा भी ले ली है तो मुबारक हो, आप बीमार हैं, साथ ही साथ आप बेहोश भी होने वाले हैं। हालांकि मुबारकबाद जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें आपको तुरंत अस्पताल जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप नज़दीकी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं तो ये समस्या और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उनसे तो कहा जाता है कि अगर आपको लूज मोशंस और आपको वॉमिटिंग लगातार आ रही हो तो कभी भी अपनी डायबिटिक की दवा ना लें। अगर आप लेते हैं तो शुगर लेवल लो होने की वजह से आप कोमा तक भी जा सकते हैं।

सारे लक्षणों को गंभीरता से लेने की जरूरत होती है। फिलहाल हम आपको और भी बता देते हैं कि कुछ और सिम्टम्स जो फूड पॉइजनिंग को दर्शाते हैं, यानी कि बताते हैं। तो कहते हैं भाई सागर, समुद्री बीमारी या फिर उल्टी होने लगे, दस्त आने लगे, पेट में ऐठन होने लगे, भूख में लगातार कमी होने लगती है, हल्का हल्का बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, और कई लोग चक्कर खाकर भी बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी हो चुकी होती है बहुत ज्यादा कमजोर। इसकी वजह से उनकी एनर्जी हो जाती है खत्म और हमको लगता है कि यह नॉर्मल लूज मोशन है। अगर हम मेट्रोजेल खाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, वो मेट्रोजेल से भी ठीक नहीं होता है। और अगर ये दवाई लेने के बाद भी आपने सारे उपचार घर में करके देख लिए हैं, फिर भी अगर ये ठीक नहीं हो रहा है, तो अब आपको किसका इंतजार है? बीमार होने का, बेहोश होने का? क्योंकि अब बीमार तो पहले से ही है भाई, तो बेहोश होने का इंतजार ना करें, नजदीकी जिला अस्पताल में जाकर अपनी जांच करवाएं और पता करें कि कहीं आपको फूड पॉइजनिंग तो नहीं है। अगर फूड पॉइजनिंग है तो कौन सी दवा लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। अब आपको बता दे भाई, ये लक्षण तब आते हैं जब आप दूषित भोजन खाने के बाद कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रहते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि अगर आपने आज चाट खा लिया है या आज वो पानी बताशे खा लिए हैं जिसमें कहीं ना कहीं थोड़े से बैक्टीरिया, थोड़े से टॉक्सिन्स शामिल हैं, अगर आपने वो खा लिए और आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला है, भैया होगा, होगा, हो सकता है आपकी बॉडी उसको झेल ले जाए और हो सकता है आपकी बॉडी ना झेल पाए, लेकिन उसके अगले ही सेकंड आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू नहीं होती हैं। ये तब शुरू होती है जब कुछ घंटे गुजर चुके होते हैं, कुछ दिन गुजर चुके होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने रात में खाना खाया है तो सुबह तक उसके पेट में दर्द होना, सर में दर्द होना, कमजोरी होना, ये सारे लक्षण उन्हें आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। बट अगर आपने पहले ही दिन खाना कुछ भी ऐसा गलत खा लिया है और आपकी बॉडी उससे लड़ने की कोशिश कर रही है, तो हल्का हल्का बुखार आना शुरू होता है और कुछ दिनों तक आपके पेट में लगातार दर्द बना रहता है या कुछ दिन बाद आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और अगर आपके पेट में बहुत तेजी से दर्द शुरू हो रहा है, ऐठन हो रही है, तो यहाँ पर आपको संभलने की जरूरत थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के उस पर आते हैं, बताते हैं कि फूड पॉइजनिंग अगर किसी को हो जाए तो उसे क्या कुछ करने की जरूरत है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप फूड पॉइजनिंग के पीरियड के दौरान ले सकते हैं, किन चीजों को बिल्कुल ही अवॉइड करने की जरूरत है, क्या आप ना खाएं, क्या आप खाएं जिससे आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं इस ब्रेक के उस पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनोसली 89.6 एफएम, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। सेहत सही लाभ कई बैनर की तरह लेकर आए इस खूबसूरत सी श्रृंखला को, जिसमें बात है आपके सेहत की। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो सबसे ज्यादा किसी को बीमार करता है वो होता है फूड पॉइजनिंग का बैक्टीरिया। भाई, जब भी आप कुछ खाते हैं, पीते हैं, या फिर आप बिना हाथ धोए खा लेते हैं, या फिर बाहर के चाट पकौड़े, समोसे, बर्गर, पिज़्ज़ा, पानी बताशे, जब इनका शौक आपको बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जब ऐसे मौसम में जहाँ बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैला करती हैं, तो उस मौसम में आप हो जाते हैं बीमार और आपको लगता है कि यार आम दस्त ही तो है। बट ऐसा नहीं है, कभी कभार ऐसा होता है कि ये बीमारी हो जाती है बहुत ज़्यादा जानलेवा। तो हमने ये तो जान लिया कि ये फूड पॉइजनिंग होती क्या है और इसके कुछ आम लक्षण क्या होते हैं, बट अब बात करते हैं क्या इसका कोई इलाज संभव है। जी हाँ, इसका इलाज संभव है। और अगर हम प्रारंभिक चरण की बात करें तो सबसे पहले जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो होता है हाइड्रेट रहना। जब भी कभी भी आपको फूड पॉइजनिंग हो तो सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद को हाइड्रेट रखना। उल्टी और दस्त से शरीर में तरल पदार्थ की काफ़ी मात्रा कम हो जाती है, काफ़ी मात्रा निकल जाती है, आपके बॉडी से बहुत सारा पानी निकल जाता है। साथ ही साथ अगर गर्मी का मौसम चल रहा है तो आपकी बॉडी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी खो रही होती है, क्योंकि आपको पसीना आता है, उस दौरान काफ़ी सारी इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। तो अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं इस दौरान भी तो पीना शुरू कर दीजिए। आमतौर पर भी गर्मियों में पानी ज़्यादा पीने की बात की जाती है, ज़्यादा पीना भी चाहिए। और अगर आपको लगातार उल्टी और दस्त आ रहे हैं तो खुद को और भी ज़्यादा हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है। तो लगातार अपने तरल पदार्थों की पूर्ति करते रहिए, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इसमें आप पानी ले सकते हैं, ORL ले सकते हैं, शोरबा ले सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी ड्रिंक्स ले सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट शामिल हो। फॉर एग्जांपल, आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, यानी कि नारियल का पानी ले सकते हैं। इसमें आपको हाइड्रेशन भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको मिलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। और एक और ख़ास बात जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब भी आप पानी पिए तो कोशिश करें वो पानी पूर्ण रूप से साफ और स्वच्छ हो, क्योंकि हम जो पानी पीते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम पानी टंकी का पी लेते हैं और इसकी वजह से भी हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। सिर्फ खाने से ही फूड पॉइजनिंग होगी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, कई बार आपके पीने की वजह से भी, जो आप कहीं भी जाकर किसी भी जगह से पानी पी लेते हैं उसकी वजह से भी आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो ध्यान रखें, जब आप पानी पिएं तो उसको साफ और स्वच्छ पिएं, स्वच्छ बर्तन में पिएं पानी, या फिर अगर आप कोई चीज़ बनाकर ढक रखते हैं तो उसको हमेशा ढक कर रखें, बिना ढके उसे ना रखें, ताकि उसमें कोई एक्स्ट्रा बैक्टीरिया ना हो। बासी खाना ना खाएं। गर्मियों में कई बार ऐसा होता है कि हम रात का रखा हुआ खाना खा लेते हैं जो कि नहीं खाना चाहिए। अगर वो खाना स्मेल में भी ठीक है, टेस्ट में भी ठीक है, तो आप उसे एक बार गर्म ज़रूर कर लें खाना खाने से पहले। और अगर वो फ्रिज में रखा है तब तो आप उसको सेफली खा सकते हैं। अदरवाइज़ कोशिश करें कि आप गर्मियों में फ्रेश, ताज़ा बना हुआ खाना खाएं, बाहर के खाने को थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि बाहर के खाने, आपको भी नहीं पता होता कि बाहर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो कब की हैं, क्या वो सेफ हैं, वो नहीं है। और गर्मियों में बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती है। अगर आप टिक्की की बात करते हैं तो आलू जो होते हैं वो सुबह कहीं ना कहीं उबाले जाते हैं और शाम तक आते आते वो ख़राब होने लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी में होते हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में होते हैं और इतना टेम्परेचर वो नहीं झेल पाते हैं। तो इसीलिए अगर आप बाहर कोई चीज़ खाने जा रहे हैं तो ये इंश्योर ज़रूर करें कि वो साफ़ हो, सुथरा हो और उससे भी ज़्यादा हाइजीन इसमें मेंटेन तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ वो आपके लिए सेफ़ हो। सुबह का रखा हुआ, कल रात का रखे हुए खाना खाने से बचें और खुद को साफ सुथरा खाना, साफ सुथरा पानी जरूर प्रोवाइड करें। इसी के साथ बात करते हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो भैया और कर सकते हैं आप कुछ घरेलू उपचार। जी हाँ, हम आपको बता दें भाई, घरेलू उपचार में कई बार ऐसा होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा लूज मोशंस आ रहे होते हैं तो घर में रखी हुई जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं लूज मोशंस के लिए वो आप ले सकते हैं, लेकिन उन्हें ज़रा ध्यान से लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है, तो भाई ज़रा ध्यान से उनका इस्तेमाल करें, उन्हें आप ले सकते हैं ताकि आपके लूज मोशंस कुछ देर के लिए रुक जाए। अगर रुक गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत तभी भी होती है क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अब पूरी तरह से ठीक हैं, फिर भी एक बार खुद को चेक जरूर करा लें कि आगे जाकर के कोई खतरा तो नहीं होने वाला है। इसी के बाद आता है भाई कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो भैया खाना क्या नहीं है वो हम आपको बता देते हैं और क्या खाना है वो भी हम आपको बता देते हैं। जब आप फिर से ठोस खाना खाना शुरू कर दें, क्योंकि भाई जब आपको फूड पॉइजनिंग होती है तो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि आपको तरल पदार्थ वाली चीज़ें लेनी है, सूप लेना है, खिचड़ी लेनी है, जो आप आसानी से डाइजेस्ट कर ले जाएँ, यानी कि आसानी से आप पचा ले जाएँ, जिसको पचाने में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े उसमें। और इसके बाद जब आप ठोस खाद्य पदार्थ खाना शुरू कर देते हैं तो उसमें केले, चावल, सेब, टोस्ट, यानी कि जिसको हम ब्रेड आहार कहते हैं, वो शामिल कर सकते हैं। इसमें आप हल्के खाने को शामिल कर सकते हैं, खिचड़ी को, दाल को, चावल को। बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाने से बचे। फिर से एक बार वही आता है कि हर गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत ज़्यादा मसालेदार या फिर बहुत ज़्यादा तीखा खट्टा मीठा खाना खाने से बचना चाहिए, बहुत सादा भोजन लेना चाहिए। और आपको गर्मियों के मौसम में बाहर जो सब्ज़ियाँ या फिर जो फल मिलते हैं वो मेनली ऐसे होते हैं जो गर्मियों में बहुत आसानी से पच जाएँ, साथ ही साथ जो आपको हाइड्रेट रखते हैं, जिनमें पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। फिर चाहे आप बात कर ले लौकी की, चाहे आप बात कर ले खीरे की, चाहे आप बात कर ले तरबूज की, या फिर आप बात कर ले खरबूज और तुरई की, ये वो सारी सब्जियां हैं जिनमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, क्योंकि ये आपको गर्मियों में जरूरत होती है हाइड्रेशन की, यानी कि आपको ज़रूरत है खुद को हाइड्रेट रखने की। तो अगर आप इन सब्जियों को शामिल कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट कोशिश करें कि गर्मियों में ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें ना खाएं। अगर आप लौकी भी बना रहे हैं तो उसको सादा बनाएं, उसको कोफ्ते बना के खाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जब आप फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी से जूझ रहे हों या खुद को ठीक कर रहे हों, तब आपको बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। पूड़ियों को थोड़ा साइड कीजिए, कचौड़ियों को थोड़ा साइड कीजिए, रोटी पर आइए, पराठों को थोड़ा साइड कीजिए और तली हुई चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। ठंड आएगी भाई, फिर से आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ये सारी चीज़ें दे सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों में ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से इसको बंद कर देने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खा सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन लिमिट में। हर एक चीज़ अगर लिमिट में रहती है तो भाई डॉक्टर्स भी कहते हैं कि लिमिट में लिया गया हर एक चीज़ बेहतर है। और अगर आप अनलिमिटेड किसी चीज़ को खाना शुरू कर देते हैं तो फिर वो दवाई क्यों ना हो आपके शरीर में जा कर के कहीं ना कहीं वो जहर का ही काम करने वाली है। तो ब्रेड आहार ले सकते हैं जिसमें केले, चावल, सेब, टोस्ट एंड बाकी जो फल आते हैं जो गर्मियों के मौसम में आसानी से उपलब्ध होते हैं, आप उन्हें ले सकते हैं, उन्हें खा सकते हैं। साथ ही साथ हल्का भोजन लेने की ज़रूरत होती है। अब आपको क्या नहीं खाना है वो भी हम आपको बता दें। जब तक आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, यानी कि आप जब तक कम्प्लीटली ओके नहीं हो जाते हैं, आपको नहीं लग जाता कि भाई अब मैं फिट एंड फाइन हूँ, अब मुझे उल्टी नहीं हो रहा है, मुझे कहीं भी दस्त नहीं आ रहे हैं, मुझे पेट में दर्द नहीं हो रही, कमज़ोरी नहीं हो रही, तब तक के लिए आपको कुछ चीज़ों से बचने की जरूरत होती है। और वो चीजें हैं डेयरी उत्पाद, यानी कि वो जो दूध से बनी हुई चीजें हैं। अब और दूध से बनी चीजों का मतलब ये नहीं कि आप दही अवॉइड करेंगे, आप दही ले सकते हैं एक लिमिट में, क्योंकि दही आपके पेट को आराम देता है, बट दूध से बनी बाकी चीजें, कॉफी, दूध, खीर, मिठाई, आइसक्रीम, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि दूध में होता है लैक्टोज, जो कि एक शुगर का ही फॉर्म है, और यह आपके पेट में जाकर आपके पेट में जाकर आपके पाचन तंत्र को और भी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। जो भी लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जब वो दूध पीते हैं तो उनको ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, पेट में दर्द, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो जब भी किसी को फूड पॉइजनिंग होती है तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि आप डेयरी से बनी उत्पादों से दूर रहें, कुछ दिनों के लिए दूर रहें। भले ही आपको दूध चाहे कितना ही पसंद क्यों ना हो, लेकिन कोशिश करें कि जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक आप डेयरी की बनी चीजें ना खाएं। इसके बाद आते हैं वसा युक्त यानी कि बहुत ज्यादा फैट वाला खाना। फैट किस में होता है, चलिए ये भी बता देते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा बटरी खाना खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा बटर, क्रीम, घी, तेल का इस्तेमाल हो रहा है, रिफाइंड का इस्तेमाल हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल पूड़ी, छोले, राजमा, इन सारी चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है अगर आप फूड पॉइजनिंग से गुजर रहे हैं तो इन सारी चीजों को ना खाएं। दूसरा आता है कि मसालेदार खाना। जी हाँ, बेशक क्योंकि आपका पाचन तंत्र अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, अगर आप मसालेदार खाना खाते हैं तो ये आपके पेट में जलन के साथ साथ आपकी कंडीशन को और भी ज्यादा वर्स कर सकता है, यानी और भी ज्यादा खराब कर सकता है। तो इन सारी चीजों से बचने की जरूरत है। आप दही का सेवन कर सकते हैं, उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स को कहीं ना कहीं एंड प्रोबायोटिक के साथ साथ आप प्रीबायोटिक ले सकते हैं। प्रीबायोटिक आपको केले में मिलेगा ऑफ कोर्स, तो आप केला खा सकते हैं, आप दही खा सकते हैं और ये आपकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं उन सवालों की जो लोग अक्सर पूछते हैं और अक्सर सोचते हैं कि भाई ये दोनों चीज़ें तो सेम सेम होती हैं, वो सवाल कौन से हैं बताते हैं लेकिन इस छोटे से ब्रेक के उस बार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूँ आपकी आर चुनौती और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर प्रोग्राम चल रहा है आपका स्वास्थ्य संगिनी। सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आए हैं इस खूबसूरत सी श्रृंखला को और आज हम बात कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, फूड पॉइजनिंग क्या होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने जानी। और अब बात करते हैं उन सवालों की जिनका इंतजार आई थिंक आपको भी था। तो भाई वो सवाल क्या है जो लोग अक्सर पूछते हैं, लोगों का अक्सर सवाल होता है कि पेट फ्लू यानी कि स्टमक फ्लू और फूड पॉइजनिंग में अंतर क्या होता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि फूड पॉइजनिंग और पेट का फ्लू यानी कि फूड पॉइजनिंग और स्टमक फ्लू में दोनों में ही मतली आना यानी कि उल्टी आना, दस्त होना, पेट में ऐठन होना जैसी समान चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, समान लक्षण आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से ये काफ़ी अलग होते हैं। जहाँ फूड पॉइजनिंग आपको दूषित भोजन, दूषित खाने या फिर पानी की वजह से होता है और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ये उसी व्यक्ति को बीमार करता है और कमज़ोर करता है, वहीं पर जो स्टमक फ्लू होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, संपर्क के जरिए, दूषित सतहों पर, दूषित भोजन के जरिए, पानी का सेवन करने के जरिए, और अगर आप वॉशरूम ना जाकर कहीं खुले में शौच करते हैं तो उसके ज़रिए ये फ्लू फैलने की आशंका थोड़ी ज्यादा रहती है। लोगों का दूसरा सवाल होता है कि कितने दिनों तक फूड पॉइजनिंग रहती है। तो मैं आपको बता दें, आमतौर पर दूषित भोजन खाने के कुछ घंटों से लेकर कई दिनों के भीतर लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आमतौर पर ये 1 से 3 दिन तक चलते हैं। हालांकि कुछ प्रकार के फूड पॉइजनिंग ऐसी भी होती हैं जो 1 सप्ताह से ज़्यादा भी चल सकती हैं या 1 सप्ताह तक भी चल सकती हैं। अगर आपको सिर्फ 1 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाता है, आप देखते हैं कि सिर्फ आपको 1 दिन ही उल्टी हुआ है, बुखार आया है, पेट में दर्द है, ऐठन है, दस्त हो रहे हैं और आपने घर में पैरासीटामोल लेकर या फिर मेट्रोजिल जैसी दवा लेकर खुद को ठीक कर लिया है और उसके बाद आप अगली सुबह प्रॉपर तरीके से ठीक हो गए हैं तो ये अच्छी बात है। और अगर ये 1 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है या फिर 3 दिन से ही ज़्यादा चल रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाने की और डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत होती है। तो भाई ये तो था शो आपका फूड पॉइजनिंग को लेकर के, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो खाने पीने से होती है, दूषित खाना, दूषित पानी की वजह से होती है। अगर आप इन गर्मियों के मौसम में छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, ख्याल क्या रखना है भाई ये भी बता देते हैं, ख्याल रखना है कि आप दूषित भोजन ना करें, घर का बासी खाना ना खाएं, बाहर जाकर चाट पकौड़े खाने से अच्छा है आप घर से खाना पैक करके ले जाएं, बाहर पानी पीने से अच्छा है आप घर से पानी पैक करके ले जाएं। हाँ माना बैग का वजन थोड़ा बढ़ जाता है, लगता है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम लेकर चल रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बाहर जाकर खा लेंगे, बट भाई इसको लेकर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आप घर से पैक कर रहे हैं कोशिश करें वो बहुत जल्दी ख़राब होने वाला खाना ना हो, उसमें बहुत तेल मसाला ना हो, बहुत ज़्यादा तीखा ना हो, बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, जिससे आप उसे लंबे समय तक कैरी कर सकें, उसे लंबे समय तक ले सकें। वो हल्का भोजन हो जिसमें पानी की मात्रा भरपूर हो, साथ ही साथ खुद को हाइड्रेट करते रहिए, लगातार पानी पीते रहिए। अगर आप सफ़र में सुबह 2 गिलास पानी पीने के बाद सीधे शाम में ही जाकर 4 गिलास पानी पीने की कोशिश करते तो ऐसा ना करें। हर घंटे में खुद को 1 गिलास पानी से ज़रूर नवाजें, यानी कि खुद को 1 गिलास पानी ज़रूर दें। पानी बहुत ज़्यादा चिल या बहुत ज़्यादा गर्म ना रखें, नॉर्मल पानी पी सकते हैं, नॉर्मल पानी रख सकते हैं। अगर आपको ठंडा पीने का शौक़ है तो उसे भी थोड़ा टेम्परेचर उसका डाउन होने की ज़रूरत है, यानी कि आप उसको थोड़ा सा हल्का नॉर्मल करके पी सकते हैं, जिससे आपकी प्यास भी मिटेगी, आप खुद को हाइड्रेट भी कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से जो आपके दांत जम जाते हैं वो भी नहीं जमेंगे। तो बस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है और आप ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से जो आपको कमज़ोर कर देती हैं हफ्तों के लिए, आपको परेशान कर देती हैं, आप उनसे बच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, गर्मियों में अपना ख्याल रखते रहिए, पानी पीते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना FM रेडियो 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: एक बार फिर से हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
0: बिल्कुल, और आप सुन रहे हैं अपने चहेते आरजेस को। मैं हूँ आरजे अदनान और मेरे साथ हैं
1: आरजे आकांक्षा।
0: जी हाँ, जो आपके लिए एक ऐसी श्रृंखला लेकर आए हैं जो आपको आपकी सेहत के साथ साथ आपके पैसे बचाने के अलग अलग तरीके बताते हैं।
1: जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले हफ्ते अपनी नई कड़ी सेहत सही लाभ कई में बताया था कि हमारी इस कड़ी से जानकारी पाकर आप सभी माला माल हो जाएंगे। कहते हैं ना कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा।
0: अजी बिल्कुल सही कहा, स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे, एनर्जी होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, साथ में आमदनी भी। तो श्रोताओं, आपको याद होगा कि हमने सभी की मुलाकात सेहतिया सिंह जी से करवाई थी। सेहतिया भैया की कहानी सुनकर तो बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। हमें तो कम से कम 25 कॉल आई थी स्टेशन के फोन से और सभी ने कहा कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने, इसका बड़ा कारण था कि बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी भी सेहतिया सिंह जी की जिंदगी से मिलती जुलती थी। उन्होंने भी किसी परिवार के सदस्य की बीमारी के कारण या सही समय पर सही इलाज न मिलने के कारण या फिर वही झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़कर अपने अपनों और अपनी जमा पूंजी को खोया।
0: लेकिन एक हादसे ने सेहतिया सिंह जी की जिंदगी को बदल दिया, उनकी सोच में बदलाव आया और उन्होंने लोगों की मदद करने की ठान ली। इनको लगा कि जागरूकता के अभाव से उनकी तरह हजारों लोग दर बदर भटकते हैं, तो क्यों ना लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर उनकी मदद की जाए। सरकार इतना कुछ कर रही है लेकिन लोगों तक उसकी जानकारी ना पहुंचे, ये तो सही नहीं होगा ना।
1: आज तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो आरजे अदनान।
0: मतलब, अरे मैं तो हमेशा सही बोलता हूँ, पर तुम मुझे बोलने दो तब ना।
1: हाँ हाँ, जो सही बात है भला उसे कौन रोक सकता है। देखा था ना, जब सेहतिया भैया बोल रहे थे हम सब चुपचाप उनको सुन रहे थे। मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम यानी सेहत सही लाभ कई से हमारे श्रोताओं को बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारे आसपास भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें अनेक बीमारियों के बारे में पता नहीं है।
0: बिल्कुल सही बात है, जैसे कि फाइलेरिया। मैं कल जब घर जा रहा था तो मैंने ऑटो पर कुछ लाउडस्पीकर चलते हुए देखा। मुझे लगा सेहत से जुड़ी बात हो रही है और श्रोताओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैंने श्रोताओं के लिए रिकॉर्ड भी कर लिया है।
1: अच्छा, तो फिर सुनाओ जरा।
0: चलिए तो हम सुनाते हैं आपको ये सेहत की अनोखी बात।
2: नमस्कार, मैं मनोज वाजपेयी। मेरा बचपन ऐसे ही एक छोटे गाँव में बीता है और मैंने लोगों को काला आजार की बीमारी से होने वाली तकलीफों से लड़ते हुए देखा है, इसलिए मैं जानता हूं कि काला आजार जैसी जानलेवा बीमारी कितनी तकलीफ दे सकती है। जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता है, उसी तरह काला आजार बालू मक्खी से फैलने वाली एक घातक बीमारी है। तो आज मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, शरीर में कालापन दिखे या पेट में सूजन रहे तो तुरंत पास के सरकारी अस्पताल में इसकी जांच कराएं। आपको बता दें कि सरकारी अस्पताल में केवल मुफ्त जांच और इलाज ही नहीं, मजदूरी का मुआवजा भी मिलता है। बस एक आखिरी बात, जब भी सरकारी छिड़काव कर्मी बालू मक्खी के खात्मे के लिए आपके घरों में आए तो कृपया उनकी सहायता पूरी तरह से करें। याद रखिए, आपका थोड़ा सा सहयोग खत्म करेगा काला आजार रोग।
3: स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: अब तुम बोलोगी कि ये फाइलेरिया क्या बला है, इसीलिए मैंने कल शाम ही डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी से इस बारे में अच्छे से बात की थी। उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी दी कि ये बीमारी एक परजीवी की वजह से होती है और मच्छर इसे फैलाते हैं।
4: तो ये भी बताते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि उन्हें दवा की जरूरत नहीं है, उन्हें भी फाइलेरिया की दवाइयां लेनी चाहिए। इसीलिए सभी श्रोताओं से हम गुजारिश करते हैं कि ध्यान से सुनिए, जो भी काम कर रहे हो, चाहे मोबाइल देख रहे हो या बच्चे का होमवर्क करा रहे हो या फिर रसोई में खाना बना रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। अगले 10 मिनट तक डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी के जरिए बहुत ही जरूरी जानकारी को ध्यान से सुनिए। अगर आप अभी नहीं सुन पाए तो हम इस प्रोग्राम को रिपीट टेलीकास्ट फिर से करेंगे। कब करेंगे ये बताएंगी आरजे आकांक्षा।
1: तो हम रिपीट टेलीकास्ट करेंगे अगले शुक्रवार को।
4: जी हाँ, तो सुनिएगा जरूर और घर वालों को भी सुनाइएगा। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी को।
5: ये एनटीडी है, तो अगर आप लोग यहाँ टॉप में लेफ्ट में देखेंगे तो ये इसके कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। तीसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जहाँ पे ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो गड़बड़ आइटम होता है, जहाँ पे इन्फेक्शन होता है उसके आइटम वहां से गुजरते हैं, वहीं पे जाके ये वर्म रहता है। राइट में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये मैनिफेस्टेशन है, यानी कि दिखाई कैसे पड़ता है शरीर में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, बट वी विल बी एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जिनमें सिम्टम आते हैं उनमें दो तरह की कंडीशन होती है, वन इज एक्यूट, यानी कि छोटे समय में सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ गए, क्रॉनिक यानी कि बहुत देर बाद सिम्टम आए और जो देर तक टिकेंगे। एक्यूट में क्या होता है, देयर इज फीवर और फीवर के बाद लिम्फेटिक चैनल्स में सूजन आ जाती है, दर्द होता है बहुत तेज, और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जो क्रॉनिक है उसमें लिम्फेडेमा एक होता है, लिम्फेडेमा एसेंशियली कहाँ होता है, तो लिम्फेटिक चैनल्स में जहां ये एडल्ट पैरासाइट रहते हैं वहां पे लिम्फेटिक चैनल ब्लॉकेज होता है और थोड़ा सा खुल जाता है। चैनल्स खुलने से क्या होता है, फ्लूइड हमारा बाहर आ जाता है और वो धीरे धीरे सूजन पैदा करता है। इट कैन बी योर लिम्स, इट कैन बी आर्म, इट कैन बी लेग। और अगर ये हमारा पुरुषों में जो जननांग होते हैं, स्क्रोटल एरिया होता है, वहां पे ये पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। ये महिलाओं में ब्रेस्ट में भी हो सकता है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वी कॉल इट एलिफेंटियासिस, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन और होती है, जिन लोगों की किडनी के लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, अगर मान लीजिए मुझे बीमारी है और मॉस्किटो इज बाइटिंग मी और वो मॉस्किटो फिर किसी और को बाइट करेगा, तब ये डिजीज उसको हो सकती है, अदरवाइज ये ट्रांसमिट नहीं होती है। अब आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, राइट पे जो पिक्चर है, इसमें जो लेफ्ट की दो पिक्चर है, ये लिम्फेडेमा है। कितना स्टिग्मा इस व्यक्ति को झेलना पड़ता होगा, जस्ट इमेजिन। और ये बीमारी प्रिवेंटेबल बीमारी है, इससे बचा जा सकता है। ये रीजन है आज हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा इस चीज को ध्यान से समझ लें कि फाइलेरिया की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है, और जिसको हो जाती है इस कंडीशन में उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। पर हमने आपको बता दिया है कि ये मच्छरों से फैलती है, तो इसीलिए इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इतना आपको बता दें कि जब मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो वो बच्चा माइक्रोफाइलेरिया बेबी उसके अंदर जाता है शरीर में, और वो एडल्ट बन जाता है, मेल एंड फीमेल। और वो मेल फीमेल जब एडल्ट हो जाते हैं, दे मैरी एंड दे प्रोड्यूस बेबीज। वो जो बेबीज होते हैं उनको हम माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। दिन के समय अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो ये माइक्रोफाइलेरिया उस सैंपल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंटरनल लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे लंग्स के आसपास का सिस्टम है, वहां छुपा रहता है। ये केवल शाम के समय 8 बजे के बाद, मोस्टली मिडनाइट में, हमारे पेरिफेरल ब्लड में आता है। तो इसीलिए कुछ लोग गलती से ये कर लेते हैं कि दिन में गए, ब्लड टेस्ट कराया, नेगेटिव आया। लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम है, WHO का सिस्टम है, उसमें हम ये चाहते हैं कि लोग शाम को ब्लड टेस्ट कराएं, और इसको कहा जाता है नाइट ब्लड स्लाइड टेस्ट। कुछ जगहों पे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि रात में ये रक्त सैंपल लिया जा रहा है, और एक या उससे अधिक लोगों का ब्लड पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब वहां पे ये बीमारी बहुत फैली हुई है। और इसके लिए क्या करना है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवाएं बढ़ती है जिसको सभी लोगों को उसका सेवन करना होता है। इसमें आप देखेंगे जो हरा कलर दिखाई पड़ रहा है मैप में, चलाया जाएगा, उसकी सूची अर्चना जी आपको दे देंगी। मोस्ट प्रोबेबली आप उस जिले या उसके आसपास के जिले के होंगे, इसीलिए आपको इसमें इनवाइट किया गया है। उसे हम कहते हैं डीए, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, और वो अपने क्षेत्र का पूरा प्लान बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा पोलियो में एक माइक्रो प्लान बनता था, पोलियो में लोग घर घर जाके ड्रॉप दिया करते थे, लेकिन वहां पे केवल 5 साल के से नीचे के बच्चों को ही दिया जाता था। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोग्राम में सभी लोगों को हमें ट्रैक करना पड़ता है और सबको देना है दवा, एक्सेप्ट 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं या कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमार हो। अदरवाइज एवरीबडी हैज टू बी कवर्ड। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, लेकिन इसके बारे में सबसे कम नॉलेज जनता को है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग प्लीज समझिए इस प्रोग्राम को और जितना हो सके इस प्रोग्राम में योगदान दीजिए। क्यों? क्योंकि साल में सिर्फ एक बार होता है और प्रोग्राम्स तो मान लीजिए कुछ महीनों में रिपीट भी होते हैं, पर साल में सिर्फ एक बार। तो जो व्यक्ति इन दवाओं का सेवन नहीं कर पाया उस समय, वो छूट जाएगा और वो अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम हियर इज, भले ही उसके अंदर सिम्टम ना दिखाई पड़े, बट दैट पर्सन कैन बेसिकली स्प्रेड द डिजीज टू अदर इंडिविजुअल्स। क्योंकि अगर मेरे अंदर है वो माइक्रोफाइलेरिया, मैं हेल्दी दिख रहा हूं, बट इफ द मॉस्किटो बाइट्स मी एंड बाइट समबडी एल्स, तो वो वहां फैल जाए। तो इसमें आप लोग देखिए कैसे वर्कर जाते हैं घर पे, जो लोग घर पे नहीं होते हैं उनके लिए दवाएं नहीं बांटी जाती हैं। पहले क्या होता था, पहले प्रोग्राम में दवाएं बांटी जाती थी। गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोवाइड द मेडिसिन्स, बट वी नीड टू कंज्यूम द मेडिसिन्स। हम तो यहां तक कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि ठीक है इस प्रोग्राम की दवाओं पे हमें विश्वास कम है, भले ही ये विदेश से आई है और अच्छी दवाएं हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए प्राइवेट से खरीद लीजिए, सेम दवाएं अपने डोज के हिसाब से प्राइवेट से ले लीजिए, खा लीजिए, बट प्लीज कंज्यूम कीजिए। ये जो मैसेजिंग है हमें देनी पड़ेगी। सेकेंड, शहरी क्षेत्र में लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, एंड मेनी ऑफ देम फील कि हम क्यों खाएं, हम तो शहर में रहते हैं, हमारे आसपास तो कोई नहीं है, हम तो गुड नाइट कॉयल लगाते हैं, हमारे पास मच्छर काटने का भी नहीं। बट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कभी तो पार्क में निकलते होंगे, कभी तो मार्केट जाते होंगे, क्या वहां मच्छर नहीं काट सकता? और ये जो मच्छर काटता है, ये मच्छर क्यूलेक्स वैरायटी का होता है। मच्छर की फैमिली होती है, 4 मुख्य प्रकार होते हैं, उसमें क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलीज, मंसोनिया होते हैं। लोग खाते नहीं थे, तो ये रीजन है लोगों ने दवाएं क्यों नहीं खाई। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब गवर्नमेंट ने ये नियम लगाया कि नहीं, आपको घर में दवा बांटनी नहीं है, सामने खिलानी है, तो ये प्रॉब्लम घट के केवल 27% रह गई। जो सेकेंड कैटेगरी है, अब्सेंट वाली, ये वो लोग हैं जब टीम हमारी घर पे गई है, पीपल वेर नॉट एट होम। तो ये समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर कोई जाएगा अपने काम के लिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं करेगा। लेकिन ये लोग अगर काम करने से पहले अगर दवा खा लें, या काम करने के आने के बाद जाके आशा बहन से मिलके, या किसी भी हमारे मेडिकल जो गवर्नमेंट की पीएससी या सब सेंटर है वहां से खा लें, तो कम से कम वो पार्ट ले लेंगे और वो बच जाएंगे, खुद भी बचेंगे और डिजीज को ट्रांसमिट करने से भी बचेंगे। तीसरी कैटेगरी आप देखिए पर्पल में, 18%, ये रिफ्यूजल वाले लोग। तो यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप ये बता सकते हैं कि देखिए आप जो नहीं खा रहे हैं, ये सिर्फ आप अपना घाटा नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप ये पूरे देश का घाटा कर रहे हैं, क्योंकि ये डिजीज एलिमिनेट करनी है भारत से, खत्म करनी है भारत से, और जो व्यक्ति इसमें दवा नहीं खाया उस इलाके का, वो बेसिकली ट्रांसमिट दोबारा कर सकता है उस इलाके। जैसे कोविड में क्या हुआ था, हर किसी को मास्क लगाने के लिए कहा गया, हम बचाव की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइलेरिया एक बार निम्फोडेमा हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंजेक्शन और टैबलेट या सर्जरी नहीं हो सकती जिससे हम पैर की सूजन कम कर सके, हाइड्रोसिल केवल हम ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी और में नहीं कर सकते। उसमें अगर आप देखिए बाएं तरफ अनीमिया दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड में आपको अंडरवेट यानी कुपोषण दिखाई पड़ रहा है, और नीचे सेंट्रिश की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि भारत में अनीमिया भी बहुत ज्यादा है, कुपोषण भी बहुत ज्यादा है। जो दवाएं दी जाती है इस मास्टर एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें एल्बेंडाजोल होती है, डीईसी एक होती है, और एक तीसरी कुछ जगहों पे आइवरमेक्टिन होती है। तो जहां जहां एल्बेंडाजोल और डीईसी दिया जाता है, एल्बेंडाजोल न केवल फाइलेरिया वाले कीटाणुओं को मारता है, मतलब मार तो नहीं पाता है, कम कर देता है उनका रिप्रोडक्शन, केवल माइक्रो फाइलेरिया को मार पाता है, पर एल्बेंडाजोल जो आंत वाले हमारे कीड़े थे, कृमि जो मैं पहले बता रहा था आपको, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, उनको मारता है। तो कम से कम वो जो मैलन्यूट्रिशन है वो भी कम होगा अगर ये दवाएं सब लोग टाइम पे खा लेंगे। अनीमिया का एक मुख्य कारण होता है हुकवर्म, ये हमारे आंतों में रहता है और खून चूसता है। जहां जहां पे ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है, आइवरमेक्टिन उस हुकवर्म को भी मारती है, यानी कि जो ब्लड सक करने वाले वर्म्स हैं वो भी मर जाएंगे, जिसका बेनिफिट होगा अनीमिया हमारा कम होगा। तीसरी चीज, जहां जहां ट्रिपल ड्रग थेरेपी दी जा रही है वहां पे और बेनिफिट है, जिसे स्केबीज है, जो दाद खाद खुजली हम बता रहे थे आपको, और जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जो जुए होते हैं, आइवरमेक्टिन से वो भी मर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार की मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रिपल ड्रग में, न सिर्फ फाइलेरिया बल्कि पेट के आंत के कीड़े, खुजली वाले कीड़े, हुकवर्म और जुए, ये सब भी मर जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर्स हर घर में नहीं पहुंच पाएंगे, और आपको सिर्फ एक चीज कहनी है कि डोंट वेट फॉर हेल्थ वर्कर टू कम टू योर हाउस, यू शुड एक्चुअली अप्रोच टू द हेल्थ वर्कर एंड ट्राई टू गेट द मेडिसिंस एज सून एज पॉसिबल। इसको केवल चबा के खाना है, चबा के खाना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चबा के खाना है। जो दूसरी आप देख रहे हैं बीच में सफेद कलर की, ये आइवरमेक्टिन की गोली है, इसको पानी के साथ लेना है। इसका नियम ये होता है, ये हाइट के हिसाब से होती है, 5 साल से छोटे बच्चों को आइवरमेक्टिन नहीं दी जाती है, 90 सेंटीमीटर के आमतौर पर उनकी हाइट होती है, तो 90 से 120 सेंटीमीटर के लोगों को एक गोली, 120 से 140 तक दो गोली, 140 से 160 तीन गोली, और जो 160 सेंटीमीटर से ऊपर है उसको 4 गोली दी जाती है। और जो तीसरी गोली आप देख रहे हैं ये DEC है, ये उम्र के हिसाब से दी जाती है, 2 साल से 5 साल के बच्चे को एक गोली, 5 से 15 साल के बच्चे को 2 गोली, और 15 से बड़े को 3 गोली। कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है जो एडल्ट होगा उसको मल्टीपल टैबलेट्स मिलेंगी, उसे घबराना नहीं है, वो उसकी मिल रही है मल्टीपल टैबलेट्स, क्योंकि उसकी डोजिंग उम्र और वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से होती है। कई लोग सोचते हैं कि एक खा लेंगे बाकी छोड़ देंगे और हमारा अभियान में रोल हो गया, तो आप कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बार बार लोगों को बताइए पूरी डोज लीजिए। आप सोचिए कि फूल झाड़ू से मार ले, क्या होगा, उल्टा आपको आके काट ही लेगा। तो यहाँ पे समझाना है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट को बचाने के लिए डोज पूरी लेनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने इतना साथ दिया, और अब मैं ओपन करता हूँ डिस्कशन।
4: इतनी सारी जानकारी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हाथी पांव को फाइलेरिया कहा जाता है, और ये भी एक बीमारी है जो कि एक पैरासाइट यानी परजीवी की वजह से होती है। कोई भी व्यक्ति उसका वाहक बन सकता है, क्योंकि इसके लक्षण इतने सालों बाद आते हैं, लोग दवाई लेने से इसकी कतराते हैं।
1: तुम तो भाई वाकई बहुत समझदार हो गए हो। तो क्या आज सेहतिया भैया नहीं आएंगे?
4: आएंगे क्यों नहीं आएंगे, लेकिन अब ये 10 अगस्त की तैयारी में लग गए होंगे, भाभी लगी होंगी महिलाओं को जागृत करने में, और भैया जो है वो पुरुषों को कर रहे होंगे।
1: इसका मतलब ये हुआ कि ये बीमारी दोनों यानी महिला और पुरुषों को हो सकती है।
4: कभी कभी ना तुम ऐसी बात करती हो जैसे मुझे लगता है कि तुम आरजे कैसे बन गई हो। मच्छर क्या ये देखकर काटता है कि महिला है या पुरुष है, सोचो जरा।
1: तो ये कहो ना कि फाइलेरिया मच्छर के काटने से होती है, और 10 अगस्त को क्या होगा, अगर सेहतिया भैया आ जाते तो उन्हीं से पूछ लेते।
4: जिनका तुम्हें इंतजार था वो आ ही गए। नमस्कार भैया, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा था।
6: सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार।
1: तो आप भी 10 अगस्त में बिजी थे?
6: बिल्कुल ठीक समझे हो आप, हमारे जिले में भी फाइलेरिया की दवाई दी जाएगी। देश के अनेक जिलों की तरह हमारा जिला भी फाइलेरिया जैसी निगलेक्टेड बीमारी की चपेट में है, इसलिए हमारे जिले में भी अन्य जिले की तरह मास ड्रग्स MDA राउंड 10 अगस्त को चलेगा। यह NTD में से एक है। ये वो रोग हैं जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में बहुत आम होते हैं, जिनमें से भारत भी एक है, परंतु इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, और फाइलेरिया उपेक्षित उष्ण कटबंधीय रोग यानी NTD का हिस्सा है। यह बीमारी शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करती है, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूजन हो जाती है, शुरुआत में तो सूजन मामूली लगती है, लेकिन अगर समय रहते इलाज न कराया जाए तो यह एक अस्थायी विकृत में बदल सकती है। इस बीमारी के चलते मरीजों को अक्सर पीड़ित होने के साथ साथ सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है।
4: अरे, हमारे चाचा भी इसी बीमारी के कारण समाज से कटकर रह गए थे, क्योंकि लोग उन्हें देखने से डरते थे। लेकिन सिहतिया भैया की समझदारी और धैर्य ने लोगों के मन में चल रही भ्रांतियों को दूर कर दिया। उन्होंने बताया कि ये बीमारी छुआछूत की नहीं और किसी के संपर्क में आने से कोई खतरा नहीं होता।
1: तो ये बीमारी यानी ये रोग सभी को हो सकती है, मतलब किसी को भी हो सकती है ना? हमने अभी डॉक्टर साहब को सुना। इस बीमारी का सही नाम भी इतना मुश्किल है, लिम्फेटिक फाइलेरियसिस, और ऊपर से ये एक संक्रामक बीमारी है, तो पता चला मच्छरों के काटने से फैलती है।
6: होने को तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन अक्सर ये रोग गरीब, पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। NTDS का सामना करने वाले समुदाय में आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अधिक होती हैं।
4: लेकिन लिम्फेटिक फाइलेरियासिस न केवल शारीरिक तकलीफ देता है, बल्कि इससे पीड़ित व्यक्ति अक्सर सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करता है। लोग जो है वो अंधविश्वासों और भ्रांतियों की वजह से उनके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं, जिससे उनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और यही वजह है कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को गंभीर स्वास्थ्य समस्या माना जाता है, और इसे नियंत्रित करने के लिए कई कोशिशें भी की जा रही है।
1: उन उपायों में से एक उपाय ये भी है कि पूरे समुदाय को एक साथ दवा दी जाती है, जिससे संक्रमण का प्रसार रुक सकता है और बीमारी के बढ़ाव की संभावना बहुत कम हो जाती है। इससे न केवल मरीजों का इलाज होता है, बल्कि रोग नियंत्रण में भी मदद मिलती है। सभी गोलियों का सेवन एक साथ करें, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को जड़ से खत्म करने में एक उपाय है ये।
6: तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो। जब हम पूरे समुदाय में एक साथ दवा वितरण करते हैं तो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या घट जाती है और LF के फैलने का दर भी कम हो जाता है। इससे लोगों में डर और अंधविश्वास को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि जब दवा उपलब्ध होती है तो बीमारी के खिलाफ एक ठोस कदम उठाया जा सकता है।
4: और भैया, इन बीमारियों के फैलने के मुख्य कारण क्या है?
6: भारत में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी NTDS में प्रमुख रूप से कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, डेंगू, कालाजार, हुक्मवर्म संक्रमण, चिकनगुनिया, सिस्टोसोमियासिस, ट्रेकोकोमा, रेबीज और सेक बाइट एनवेशन जैसे रोग शामिल हैं।
4: तो अगर हम आसान शब्दों में कहें तो LF यानी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एक गंभीर और विकराल बीमारी है, जिसे रोकने के लिए MDA जैसी सामूहिक स्वास्थ्य पहलों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही LF जैसी NTDs पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।
1: क्या हमारे देश में और भी निग्लेक्टेड रोग हैं?
6: ये बीमारियाँ मुख्य रूप से अस्वच्छता, साफ पानी की कमी और गरीबी के कारण फैलती है। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है, लेकिन अभी भी जागरूकता, समय पर निदान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है।
1: सिहतिया भैया, मेरा एक और सवाल है। वो पिछले एपिसोड में आपने कुछ बताया था ना निक्षय मित्र के बारे में, वो क्या है?
6: एक बार फिर बताता हूँ, निक्षय मित्र एक सामुदायिक पहल है जिसका उद्देश्य TB क्षय रोग से पीड़ित मरीजों को पोषण, मानसिक समर्थन और आवश्यक देखभाल प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत लोग, संस्थाएं और संगठन TB मरीजों को गोद लेकर उनकी उपचार यात्रा में सहायता करते हैं।
1: तो क्या ये फाइलेरिया के मरीजों के लिए भी स्कीम है?
6: नहीं, निश्चय मित्र योजना केवल TB क्षय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए है। इसके तहत मरीजों को आर्थिक सहायता के रूप में 500 प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। यह राशि उनके पोषण और देखभाल के लिए सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे उनकी उपचार प्रक्रिया बेहतर ढंग से आगे बढ़ सके।
4: लेकिन राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम यानी NFEP के तहत भी तो सरकार बहुत मदद करती है।
6: बिल्कुल, सबसे पहले तो फाइलेरिया के प्रसार को रोकना और इसे जड़ से खत्म करने के लिए मास ड्रग यानी MDA के तहत सरकार हर साल सामूहिक रूप से दवाइयाँ DEC और एल्बेंडाजोल मुक्त में वितरित की जाती है। फाइलेरिया के मरीजों को हाइड्रोसील सर्जरी सरकारी अस्पतालों में मुक्त कराने की सुविधा दी जाती है। साथ ही निवारक देखभाल और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सूजन को कम करने के लिए मुक्त दवाइयां, साफ सफाई और फिजियोथेरेपी की सुविधा भी दी जाती है। समय समय पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन जहां जांच, परामर्श और दवाइयां दी जाती है। एक और खास बात है कि इस बीमारी का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाता है, जिससे मरीजों को मुक्त इलाज मिल सके।
1: सेहतिया भैया, ये तो आपने और डॉक्टर भूपेंद्र ने हमारे श्रोताओं को बहुत ही काम की जानकारी दी है।
4: बिल्कुल, हमारे सभी श्रोता दोस्त भाइयों और बहनों, बीमारी की तकलीफ और इलाज के खर्च से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मच्छरों से बचाव करें और सरकारी दवाइयां जरूर लें। और तो और, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आशा कार्यकर्ता से संपर्क करके फाइलेरिया से जुड़ी योजनाओं की और ज्यादा जानकारी ले लें।
6: और अब समय हो गया है मेरे जाने का, क्योंकि घर घर जाकर सबको दवाई जो खिलानी है। लेकिन
7: आपके जाने से पहले शपथ लेना जरूरी है।
4: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई
1: तो सेहतिया भैया, आपने इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
4: बिल्कुल, तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेगमेंट यही समाप्त होता है। याद रखिए, सही जानकारी, समय पर इलाज और सामूहिक प्रयास से हम हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करिए, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत दवाइयां जरूर खाइए। सेहतिया भैया के अनुभव से हमें बहुत प्रेरणा मिली है। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे और कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे साझा भी करेंगे।

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सभी के लिए।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़।

0: ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: डिलीशियस
4: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
4: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे।
7: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आरजे अंशिका। क्या हाल है भाई आप सभी का? जल्दी से आ जाइए चैट बॉक्स में, क्योंकि हम आ गए अपने समय अनुसार। आपकी ट्रेन आ चुकी है, जो कि कभी भी डिले नहीं होती है, कभी लेट नहीं होती है, बस एक से दो मिनट अगर डिले होती है तो वो 3 बजे तक कवर कर लेती है। हमारी वो ट्रेन है कि हम लोग कवर कर लेते हैं,
8: बिल्कुल
7: है ना।
8: तो भाई वाहन चालिकाओं के साथ ट्रेन जो है वो अपने यथा समय पर यथा स्थान पर पहुंच चुकी है।
7: इतनी हिंदी,
8: अब हमें यात्रियों का इंतजार।
7: ओह माय गॉड, तो अपनी कमर की पेटी को बांध लें, क्योंकि हम उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए, आपका पसंदीदा शो शुरू हो गया है, जिसका नाम है
8: सुन सहेली विद
7: आरजे समता एंड आरजे अंशिका। हमारी इस प्यारी सी मुस्कान, इस प्यारे से जोश और इस प्यारी सी खुशी के पीछे का राज केवल और केवल दुख भरी कहानी, उस पे मत जाइएगा।
8: क्योंकि कहते हैं ना, मुस्कुराते चेहरों के पीछे बहुत गम है,
7: बहुत दर्द होता है। कभी कभी तो हम लोग ये भी करते हैं कि रो लेते हैं और जब हम ब्रेक लेते हैं तो अपने आंसू पोंछते हैं और पानी पीते हैं और फिर से आपसे मिलने चले आते हैं।
8: क्योंकि आपको हम आपको सिर्फ मुस्कुराहट देना चाहते हैं। हम दोनों ही यही चाहते हैं कि आप अगर हमारी आवाज सुने, कहीं भी बैठे हो तो सिर्फ मुस्कुराएं।
7: ट्रेन में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, छत पे बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं, एनीथिंग, कहीं भी बैठे हैं, तो आपको हमारे दुख का एहसास नहीं होना चाहिए।
8: बिल्कुल, क्योंकि दर्द हमेशा सिर्फ अपना होता है और खुशियां सभी की होती है। इतनी हैवी लाइन थी
7: जैसे नहीं, वो एक कसक वाली आवाज आई अंदर से, कसक, जो कसक भरी वाली आवाज होती है, वो वाली आवाज आई। खैर कोई बात नहीं है, चलिए भाई दोपहर का समय है और हम आ गए हैं बिल्कुल नहा धो करके, अच्छे से बैठे हुए हैं। तो फटाफट विश कर देते हैं एक साथ, दोनों एक साथ एक ही फ्रेम में,
8: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और शुभ दोपहरिया के साथ आगाज हो गया है सुन सहेली का। सुन सहेली में आपकी सहेलियां हाजिर हैं, और सहेलियां आई हैं तो कुछ लाई हैं, और आज हम लाए हैं
7: खाने के लिए नहीं,
8: नहीं खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने की बात मैं इन दिनों नहीं करती हूँ, क्योंकि वो मेरी फीलिंग्स हर्ट हो जाती है, क्योंकि मैं प्रिकॉशन पे हूँ, फिलहाल मुझे कुछ खाना नहीं।
7: टाइम कितना गजब का हो रहा है, 143
8: 143
7: मींस पता है
8: क्या?
7: आई लव यू।
8: ओह,
7: अब ये बता दूं कैसे?
8: कैसे?
7: वन का मतलब क्या होता है? आई, यानी एक अल्फाबेट।
8: ओके।
7: फोर का मतलब LOVE।
8: ओह।
7: एंड थ्री का YOU।
8: वाओ।
7: तो क्या? ये तो बहुत पुराना है 143। बहुत
8: पुरानी बातें मैम को अभी
7: तक। 90s के हम लोग जमाने में मतलब ये शैतानियां किया करते थे फ्रेंड्स को, 143 ये वो दुनिया भर की चीजें। अब तो 143 का कोई मतलब ही नहीं रहे।
8: अच्छा कोड बताया आपने,
7: काम आएगा तुम्हें इसको,
8: काम आएगा, इसे यूज किया जा सकता है,
7: याद इसको यूज करना, ठीक है। चलिए तो आज के शो को शुरू करते हैं और बिल्कुल भी हम देर नहीं करेंगे क्योंकि रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ भी इंतजार कर रहा है अंशिका की तरफ से। और मैं लेके आई हूँ आज बहुत ही प्यारी सी पोयम जिसका शीर्षक है दिल तो बच्चा है जी।
8: वाह, ये तो शीर्षक ही सुन के ऐसे लग रहा है कि दिल तो बच्चा है जी, मतलब
7: थोड़ा कच्चा है जी।
8: थोड़ा
7: थोड़ा सही,
8: थोड़ा सही। तो जो थोड़ा सा कच्चा वाला पार्ट है वो
7: पका लेते हैं उसको,
8: उसको हम लोग अपने,
7: वो पक चुका है, वो इतना पक चुका है कि सफेद बालों में सफेदी आ गई, इतना ज्यादा पक चुका है। तो दिल तो बच्चा है आज का शीर्षक है। आइए चलते हैं आज की बच्चों वाले सेक्शन में, यानी आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन साथ ही साथ है बड़ा मंगल, यानी आज है सातवां बड़ा मंगल। तो बहुत सारी चीज़ें आपके इस गुंडा शहर में हो रही, यानी आठ बड़े मंगल। जो अगला मंगल आने वाला है वो है लास्ट बड़ा मंगल, एंड आज के दिन भी कई जगहों पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, भंडारे लगाए जा रहे हैं। पर मुझे लगता है कि सभी श्रद्धालुओं ने इस बार बहुत ही अच्छा किया हुआ है कि पूरे गोंडा शहर में केवल दो या तीन जगह ही आज के दिन भंडारे किए गए, मतलब सब लोगों ने बांट लिया है। वरना तो एक दिन में चार चार जगह पे होता था तो लोग खाएं क्या, करें क्या नहीं करें, मतलब कुछ समझ में नहीं। बट इस बार वाला सेक्शन बहुत ही बढ़िया लगा। तो चलिए आज मंगल के दिन हम लेकर के आते हैं बच्चों के लिए कुछ खास उनकी पाठशाला में। तो आज की पोयम फटाफट शुरू करते हैं बिना देर लगाए।
8: जी मैम, शुरू करिए।
7: उम्र भले ही बढ़ती जाए, धूप छाव जीवन की आए, मन का पंछी उड़ना चाहे, मन का पंछी उड़ना चाहे। ये तो एक गाने की लाइन है,
8: ऐसे बहुत प्यारा लग रहा है। एक काम करती है आप गा के सुनाइए।
7: मन का पंछी उड़ना चाहे, कोई खुशियां,
8: हाँ अच्छा लग रहा था,
7: कोई खुशियां ढूंढता जाए।
8: अरे वाह,
7: क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। नादानियों में खो जाना, छोटी बातों पर मुस्कुराना, रूठना फिर से झट से मान जाना, हर पल नया उत्सव मनाना, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। बचपन की वो प्यारी यादें, मासूमियत भरी वो बातें, छूटे पीछे खेल खिलौने, फिर भी मन में वही उमंगे, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। जिम्मेदारियों के इस मेले में, दुनिया के रोज के झमेले में, उम्मीदों की एक किरण सजाए, क्योंकि दिल उम्र भर मुस्कुराए, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी।
8: आज तो दिल बच्चा होके ही मानेगा जी, मतलब इतने प्यार से और इतनी स्मूथली सुनाया है, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पियानो पे धुन नहीं बजती है, सूथिंग सी प्यारी सी, कुछ वैसी ही फील आ रही थी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। लिसनर्स, आपको कैसी लगी जरूर बताइए। और जैसा कि लास्ट की लाइन थी, दिल तो बच्चा है जी, दिल हमेशा बच्चा ही होना चाहिए, चाहे आपकी उम्र कितनी भी बढ़े, बट आपका दिल जो है ना वो हमेशा बच्चा हो, क्योंकि जब दिल बच्चा होगा तो आप बच्चे होंगे। हम कहते हैं ना कि अरे नहीं अब तो बड़े हो गए हैं, तो खुद को कभी एहसास मत कराइए कि आप बड़े हो गए हैं, क्योंकि मुझे तो लगता है मैम 90% एक्चुअली 99% प्रॉब्लम्स तभी शुरू होती हैं जब हम खुद को ये एहसास कराते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, अब हमें जिम्मेदारियां लेनी,
7: जिम्मेदारियां अपने आप फिर घिरने लगती हैं।
8: हाँ, कहते हैं कि आप एक बच्चे से पूछो अभी जा करके कि बेटा आप ठीक हो, आपको सब है, तो वो आपसे ये नहीं कहेगा अरे नहीं यार बहुत टेंशन में है। लेकिन आप किसी बड़े से जा करके पूछो तो वो आपको एक नहीं ऐसी 100 चीजें बताएंगे जिनकी वजह से वो टेंस्ड रहते हैं।
7: हाँ।
8: क्योंकि हमारे पास है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है काम, है घर, है फैमिली, है बहुत कुछ है, लेकिन एक बच्चे के पास कुछ नहीं होता। उसके लिए तो उसका दो टाइम का होमवर्क जो उसको करना है वही बहुत बड़ा पहाड़ है कि मुझे मेरे दो पेज होमवर्क पूरे करने।
7: बिल्कुल।
8: तो कहीं ना कहीं बच्चों की तरह जीने की कोशिश करें, हालांकि इतना आसान भी नहीं होता है, मतलब हम कह तो देते हैं बट इट्स नॉट सो इजी, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि दिल तो बच्चा है और दिल बच्चा ही रहे।
7: बिल्कुल।
8: तो चलिए आप बढ़ते हैं आगे,
7: रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ सुनना है और उसके बाद में हम चलेंगे एक सॉन्ग।
8: बिल्कुल। तो आज रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में है कुछ थोड़ा सा मस्ती भरा, क्योंकि आज है हमारा ट्यूसडे।
7: ओके।
8: ट्यूसडे में मस्ती भरा ये है कि हम सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी की नकल उतारी होगी।
7: हाँ।
8: और बहुत मजे से उतारी।
7: बहुत। और खास करके टीचर्स का। हाँ। मिमिक्री में जब कोई फंक्शन होता था ना तो टीचर्स की मिमिक्री जरूर होती थी। बिल्कुल। और हम लोग तो बहुत करते थे, बहुत मजा आता था।
8: तो आज का हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ ये कहता है कि जब हम किसी के व्यवहार को दोहराते हैं, यानी कि उसके जैसा करने की कोशिश करते हैं, तो इससे हमारे बिहेवियर में पॉजिटिव पर कभी कभी नेगेटिव चेंजेस भी हो जाते हैं।
7: अच्छा,
8: इसलिए अगर आप किसी के व्यवहार को दोहरा रहे हैं, मींस अगर किसी की तरह चलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के जैसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जैसे बैठने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ भी है उसके अंदर का जो आप अपना रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि पॉजिटिव चीज़ें लेनी है। क्योंकि कई बार होता है ना मैम कि अरे तुम उनकी तरह नहीं हो, देखो उनकी तरह बनो, वो कितने अच्छे से रहते हैं या रहती हैं, जो भी है। तो हम दूसरे की कई बार गलत चीज़ों को भी ले लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी, लेकिन कहना ये भी चाहूँगी कि इसे प्लीज़ एक्स्ट्रा भी मत लीजिएगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि कई बार हम अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं और उसमें कोई स्मोक करता है, तो आजकल एक तो सबसे बड़ी पता है आजकल प्रॉब्लम क्या है, आजकल यूथ्स में स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि शराब पीना या सिगरेट पीना इन चीज़ों को कूल मानते हैं। अरे यार डूड, वो तो बहुत कूल है। कूल क्यों है? क्योंकि वो इस तरह की चीज़ों को करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कूल होने का कोई सिंबल नहीं होता, और दूसरी बात ये कि अगर इन इस तरह की चीज़ों को हम अपने बिहेवियर में लेते हैं कि अरे वो बहुत कूल है, मुझे भी कूल बनना है, मैं भी ये चीज़ें करूँगा, और धीरे धीरे सिर्फ ट्राई करते करते आपको उसकी हैबिट
7: आदत पड़ जाती है,
8: हैबिट लग जाती है, और फिर पूरी लाइफ लगती है। क्योंकि देखिए हम कहते हैं ना कि बुरी आदतें पड़ती बहुत देर में हैं, बट उनको छोड़ने में आपको पूरी लाइफ लग जाती है, लेकिन आप छोड़ नहीं पाते।
7: बिल्कुल।
8: इसलिए आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ यही कहता है कि अगर अपनाना चाहते हैं तो किसी की सिर्फ अच्छी आदतों को और अच्छी भावनाओं को अपनाएं। नेगेटिव ना भावनाओं को अपनाना है और ना नेगेटिव चीजों को अपनाना है, क्योंकि वो आपका व्यक्तित्व खराब कर देती है।
7: बिल्कुल। और ये बड़ी अच्छी आज रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ में बात निकली है कि हम अगर किसी को कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के साथ साथ में ना उनके पॉजिटिव थिंक को हमें कॉपी करना है, ना कि नेगेटिव पॉइंट्स को करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किसी को कॉपी करते हैं या किसी को आइडल बनाते हैं तो उनके नेगेटिव चीज़ों को भी हम अपनाने लगते हैं।
8: हाँ।
7: कि भाई मेरा आइडल है तो क्या हो गया, वो क्या ऐसे नहीं करता है? करता है ना, बिल्कुल करता है।
8: बिल्कुल।
7: तो इसीलिए आप पॉजिटिवली रहें और अपने जीवन की, अपने मॉर्निंग की जो शुरुआत करते हैं हमेशा से पॉजिटिव होकर के ही किया करिए। चलिए तो हम लेते हैं यहाँ पर।
8: अब अगर मुझे अपनाना होगा तो मैम की कोई अच्छी सी आदत अपनाऊंगी,
7: और
8: अगर
7: अच्छी चीज है क्या कोई?
8: ये कैसे कह दिया आपने, ये तो गलत कह दिया। बहुत सारी अच्छी चीजें हैं आप में, एक बस छोड़ करके।
7: गुस्से वाली?
8: हाय मैम, कितनी जल्दी समझ जाती
7: है। वो तो मेरे से सभी परेशान है, गुस्से से तो मेरे सभी परेशान
8: नहीं नहीं, मैंने मजाक किया है। प्लीज आप इसको सीरियस में मत ले लें, वरना ऑफ माइक कुछ हो जाएगा और फिर अब मैं जब एंट्री करूंगी तो मुझे फिर लिसनर समझदार है। नहीं, मैं मजाक कर रही थी।
7: मारपीट होने लगेगी, इसे मारेंगे, भगा देंगे।
8: अरे नहीं नहीं,
7: है ना?
8: नहीं नहीं,
7: चलिए तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक।
8: ये सिर्फ मस्ती थी।
7: मस्ती थी, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, डरो ना, घबराओ ना, ठीक है। तो वैसे ही एक बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे दरवाजे हैं यहाँ पर, और उसमें सिर्फ अंशिका और मैं ही हूँ। अगर मैं इसको मारूंगी तो बाहर आवाज भी
8: बचाने वाला नहीं,
7: तो आवाज भी बाहर नहीं जाने वाली है।
8: नहीं
7: है?
8: लेकिन मैम ऐसा करेंगी नहीं, इसका मुझे 200% नहीं 500% भरोसा है।
7: भगवान, तुम चाहे 1% भी विश्वास न करो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी भाई, कुछ नहीं।
8: मुझे पता है, इसीलिए मैंने कहा, मतलब जब हमें पता होता है ना कि हमारे पास सेफ्टी जोन है, तभी हम उसमें,
7: और ये अपने संस्कार
8: जाने का ट्राई करते हैं।
7: मेन बात ये है कि ये अपने संस्कार होते हैं, किसी
8: कोई बात नहीं।
7: तो चलिए हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और ब्रेक के में आप लोगों को गाने सुना करके फिर हम लौटेंगे आज के टॉपिक पर। तब तक के लिए आपको कहीं नहीं जाना, आपको सुनते रहना है हम दोनों सहेलों की बकबक को और बहुत सारे ज्ञान को। तो बस,
8: और थोड़ा सा कमेंट भी करना है।
7: हाँ भाई, पता नहीं कहाँ है सब लोग, तो कमेंट्स बॉक्स में आइए, कमेंट भी करिए, एंड देन
8: नहीं तो फिर हमें ऐसे लगता है कि हम सिर्फ बोल रहे हैं
7: और बस। हम यू गए, यू आए, स्टे ट्यून।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका बेहद पसंदीदा शो सुन सहेली। और भाई गाना जो था ना, अभी सॉन्ग वो बहुत ही प्यारा था, मेरा सनम सबसे प्यारा है। बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और सनम जो होते हैं वो सभी को प्यारे होते हैं। क्यों मैम, होते हैं या नहीं होते हैं?
4: पता नहीं, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
3: एक्सपीरियंस नहीं है, ओके।
4: और क्या, हमें कोई एक्सपीरियंस है क्या, ये बताओ पहले।
3: अरे अब आपको नहीं है तो फिर सोचने वाली बात हो गई।
4: ठीक है, बहुत प्यारे होते हैं सनम।
3: हाँ कुछ, लेकिन दिल से नहीं आया है, ऊपर से आया है।
4: बहुत प्यारे होते हैं। एक्चुअली मैं इस समय मैं हीलिंग प्रोसेस पे
3: हूं ना। ओके ओके ओके। हाँ तो हम राह भटकते नहीं है, जो राह है उस राह पर रहते हैं। तो ये सवाल था और सवाल का जवाब बहुत ही प्यारा सा मिल गया है मुझे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ेंगे हमारे नए वाले आज टॉपिक के साथ, जो कि हम आज बात करेंगे बढ़ते हुए बच्चों की। बढ़ते हुए बच्चों का मतलब होता है कि जो हमारे
4: टीनेजर्स
3: होते हैं, क्योंकि

0: जैसे हम छोटे बच्चों के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें प्रेफर करते हैं, बताते हैं, ठीक उसी तरीके से कई बार जो बढ़ रहे होते हैं उन बच्चों के लिए बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना टीनेजर्स की एज ऐसी होती है कि इस एज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं है ऐसी ही एक प्रॉब्लम है और उसी प्रॉब्लम पर हम बात करेंगे। तो आज हमारी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का नाम जो है वो थोड़ा सा मतलब कुछ लोगों को लग सकता है कि उन्होंने पहले कभी नहीं सुना है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन आज इसी को हम पॉइंट्स में उठाएंगे और आपको ब्रीफ भी करेंगे। हम दोनों ही बताएंगे कुछ पॉइंट्स, लेकिन उससे पहले नामकरण करते हैं यानी नाम बता देते हैं। तो आज जिस डिसऑर्डर को लेकर हम बात करने वाले हैं वो है अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर।
1: ओके,
0: यानी कि जैसे कहते हैं ना कि जब लड़ाई लड़ने आप जाते हैं, जब पुराने ज़माने में मैम राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे तो उनको होता था ना कि एक हमारे विपरीत है और हमें उससे फाइट करनी है। तो आज भी सिचुएशन कुछ वैसी ही है कि आपके कोई विपरीत है और आपको उससे फाइट करनी है।
1: एग्जैक्टली, और ये तो बच्चों के लिए है, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि हर एक सिचुएशन को, हर एक गंभीर सिचुएशन को हमें ऐसे ही लेना चाहिए कि जीवन में कि हम उससे फाइट करके, हम उससे लड़ के आगे निकल सकते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
1: बिल्कुल,
0: जो मन ही हार गया तो फिर वो तो कुछ नहीं जीत सकता है, क्योंकि ये कहते हैं ना कि आपके पास एक ग्लास भी रखा हुआ है पानी का, लेकिन अगर आप मन से मान चुके हैं कि मैं उसे उठा नहीं,
1: मेरे पास भी ग्लास रखा हुआ है शीशे का अभी पानी पीने के लिए,
0: आप ऐसा मान ही नहीं सकती। ये तो जो मानते हैं उनके लिए कि जो अगर मन में ठान लेते हैं कि मैं नहीं उठा सकता हूँ, मान लीजिए आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और आपके मन में है कि मुझे बहुत वीकनेस है और मैं वो ग्लास नहीं उठा पाऊंगा, मन में मान लिया आपने, तो फिर आप नहीं उठा पाएंगे। और कोई चीज 2 किलोमीटर दूर आपको जाना है और आपके आपको पेन है, लेकिन फिर भी अगर वो इंसान ठान ले कि नहीं मुझे तो जाना ही है, तो फिर वो 2 किलोमीटर आराम से ट्रैवल कर सकता है।
1: अच्छा अंशिका, मेरे साथ पता है मेरे साथ क्या है, उल्टा है।
0: उल्टा
1: कि अगर जैसे मतलब मैं अपनी सोच
0: जी जी जी
1: कि जैसे कभी ये सिचुएशन शायद आपके साथ भी आती है, और ये सिचुएशन से बाहर निकलना मैंने अपनी मम्मी से सीखा है कि वो कहती हैं कि जब हम बीमार होते हैं, मतलब जैसे कभी भी कुछ प्रॉब्लम सबको होती रहती है, तो उस दिन मुझे लगता है कि हमें अपने आप को प्रूफ करने के लिए, उससे फाइट करने के लिए हम काम को ज्यादा, हमें काम ज्यादा करना चाहिए। ऐसा होता है? तो मेरी मम्मी तो जरूर ये चीज मुझे मैंने उनसे ही सीखा है
0: जी जी।
1: कि जब भी कुछ लगे ना कि हाँ मैं ये नहीं कर पाऊंगी यार, मुझे कुछ होने लगा यार, मतलब क्या बता दूं, मतलब मेंटल हेल्थ है या फिर फिजिकल हेल्थ है, कुछ भी है, तो मुझे लगता है कि हम अपना काम, मन जो मन है अपना, वो हम काम में लगा दें। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद ना हमारी बॉडी जो है वो अपने आप से रिलैक्स होना शुरू हो जाती है।
0: जी मैम बिल्कुल,
1: क्योंकि हमारा मानसिक, जैसे कहा ना मन के हारे हार मन के जीते जीत, तो मन और दिमाग का जो कनेक्शन होता है ना आपस में, ये शतरंज खेलते हैं और हमेशा से खेलते रहते हैं, देखते हैं कौन जीता है कौन हारता है।
0: और उस शतरंज में अगर आपको अपनी जीत चाहिए तो उसके लिए जरूरी है कि दिमाग की नहीं सुननी है और दिल की सुननी है, क्योंकि दिल हमेशा सही कहता है। आज जैसा अभी मैम ने बताया, तो जब फीवर होता है किसी को, हल्का फीवर होता है मैम, तो हमेशा कहा जाता है नहीं बेटा आराम करो, और जैसे कहा जाता है अरे नहाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा फीवर है तुम्हें, नहाओगे तो कहीं ऐसा नहीं हो कि फीवर और ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो, अभी बीच में बहुत ज्यादा थी और इतनी थी कि उठने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी चलने में, लेकिन फिर भी मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी पकड़ के ही सही, लेकिन आप मुझे बाथरूम में बिठा दीजिए और मैं नहा लूंगी। और मुझे प्रॉपर हल्का फीवर था, लेकिन फिर भी जैसे अगर आप बीमार हैं और आप नहा लेते हो ना तो एक फ्रेशनेस फील होती है
1: अपने आप में, एक लगता है कि यस, हाँ, बीमार नहीं है।
0: हाँ। और उसी में पड़े रहिए और बार बार मन में ये चलाते रहिए अरे हम बहुत बीमार हैं, अरे हम बहुत बीमार हैं, तो वो पता है जैसे कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी जब जाती है तो वो फील भी होने लगती है कि बहुत ज्यादा बीमार है। मैं बीमार थी, मुझे मतलब काफी दिक्कत थी मुझे, लेकिन उसके बावजूद भी अपना खाना लाना, अपने लिए उठना, अगर एक ग्लास पानी पीना है तो खुद से करना, ये सब मैंने खुद ही किया, मैंने प्रॉपर किसी को अपने लिए नहीं करने दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत शरीर को चलाना बीमारी में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम लोग अच्छा ज्ञान दे लेते हैं,
1: अच्छा ज्ञान देते हैं, बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं, पर उसमें कभी अमल, हम लोग खुद भी अमल करते हैं
0: ऐसा नहीं है,
1: क्योंकि हम जो अमल करते हैं
0: वही आपको बताते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे होता है ना, अभी मैम ने पोएट्री पढ़ी थी बहुत प्यारी सी, दिल तो बच्चा है जी, तो कभी ये दिल भी बच्चा हो जाता है, मन नहीं करता है कि घर जाएं हम और रेडी मम्मी ने बना के रखा हो और मम्मी कहें आओ बेटा खाओ, कभी कभी ये मन करता है। हमारा भी मन बच्चा है तो कभी कभी मचल जाता है।

0: तो चलिए आज के हम उस पे
1: जी जी मैम
0: सीओडी पे आते हैं,
1: टॉपिक पे आते हैं।
0: सीओडी
1: सीओडी नहीं है, ओडीडी है।
0: ओडीडी हमें लगा सीओडी है।
1: नहीं सीओडी नहीं है,
0: कैश ऑन डिलीवरी।
1: कैश, ओ वाह क्या फुल फॉर्म दिया है, कैश ऑन डिलीवरी।
0: सीओडी का मतलब क्या, सीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी तो होता है जब हम किसी भी ऐप में जाते हैं और कुछ मतलब मंगवाने के लिए, तो उसमें नीचे ऑप्शन आता है सीओडी,
1: यानी कैश ऑन डिलीवरी।
0: कैश ऑन डिलीवरी।
1: चलिए सीओडी से ओडीडी पे आते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको नाम बताया उसका कि क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे हर बच्चे को मैम आपने देखा होगा कि कभी ना कभी वो जिद करते हैं, और एक किसी किसी का जब हम टोकते नहीं है तो एक जिद्दी स्वभाव ही बन जाता है। लेकिन ओडीडी एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें बच्चा जिद्दी नहीं होता है, वो विद्रोही हो जाता है। विद्रोही इन द सेंस कि उसको अपनी माँ बाप की हर बात गलत लगती है, उसको लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो उसके लिए गलत है। ये कंडीशन बच्चे में तब आती है जब बच्चे टीनेज में होते हैं, टीनेज इन द सेंस कि जब वो बड़े भी नहीं हो रहे होते हैं प्रॉपर, और प्रॉपर बच्चे भी नहीं रह जाते हैं। जैसे जब कोई बात होती है, झगड़ा होता है, तो हम कहते हैं अरे अब तो बड़ी हो रही है ना, या बड़ा हो रहा है, अब तुम हाथ नहीं उठा सकते हो, अब तो आपको प्यार से समझाना होगा। और हाथ उठाना कोई ऐसा मतलब ये सोल्यूशन भी नहीं होता है, क्योंकि बच्चे बागी हो जाते हैं, फिर उनको लगता है अरे यार मम्मी पापा ज़्यादा क्या करेंगे, मारेंगे ही। तो लेकिन एक बात और कहूँगी कि जितना ज़रूरी होता है आप प्यार करें, उतना ही ज़रूरी होता है कि आप स्ट्रिक्ट भी हों। अगर हाथ से कोई निकल रहा है, मतलब बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा उनके बिहेवियर में गलत चेंजेस हो रहे हैं, तो दो थप्पड़ मारने में कोई बुराई नहीं है, बट थोड़ा सा सोच समझ के।
0: और मुझे तो लगता है कि मारने से ज़्यादा ना आँखों में डर होना चाहिए।
1: हाँ
0: हाँ, क्योंकि डर से ही मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चे ना, एक आँखों में डर होना चाहिए। हाथ उठाना तो दूर की बात है, जब नहीं, अगर क्या कहते हैं कि आँखों से नहीं मान रहे हैं या फिर डांट से नहीं मान रहे हैं, फिर तो वो सेवा करनी चाहिए, वो हाथ वाले
1: वो प्रॉपर है,
0: वो प्रॉपर सेवा करनी,
1: क्योंकि बचपन में हमें भी मिली हुई है ऐसा।
0: हाँ,
1: नहीं
0: तो वो सेवा से वंचित ना रहे कोई।
1: नहीं एक्चुअली जैसे ये कहा जाता है ना कि जब टीचर पढ़ाने आते हैं तो हम कहते हैं गुरु की मार के बिना विद्या नहीं आएगी, ठीक वैसा ही प्रोसेस होता है कि मम्मी पापा की जब तक दो चार हाथ, बेलन, झाड़ू और वो क्या होता है जिससे वो करते हैं, अरे क्या बोल, हाँ चिमटा, तो जब तक वो पड़े नहीं हो चार पांच आपको, तब तक आपको बचपन भी स्वार्थ नहीं है। खैर ये हम अपनी नहीं बता रहे, हमें नहीं पड़ी है कभी।
0: ओके, चिमटे से मार नहीं पड़ी है।
1: अरे अब वो तो लिसनर समझ गए कि इतने अगर फीलिंगफुल तरीके से बताया जा रहा है तो इसका मतलब है कि स्वागत हुआ होगा तभी बताया जा रहा है। चलिए हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो हम बात करते हैं तो फिर हम बात करते रह जाते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि बच्चों में इसके कुछ लक्षण भी होते हैं, लेकिन कई बार पेरेंट्स उन्हें इग्नोर कर देते हैं, उन्हें लगता है कि टीनेजर है, बढ़ रहा है, तो ये तो बिहेवियर में चेंजेस हैं, बट वो बिहेवियर के चेंजेस नहीं हैं, वो उनके मेंटल कंडीशन में चेंजेस हैं, और वो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगातार गुस्सा करना, अगर कोई बच्चा लगातार गुस्सा कर रहा है, लगातार गुस्सा इन द सेंस कि आइसक्रीम मांगी मान लो और आपने कह दिया नहीं बेटा नहीं है, अभी नहीं, अभी पापा बाद में ले आएंगे तुम्हारे लिए, उस पर उसका अग्रेशन बढ़ जाना, ज़रूरत से ज़्यादा हाथ उठा देना, सामान फेंक देना, या बोलना कि नहीं नहीं मेरी तो किसी को केयर ही नहीं है, और ठीक है नहीं लाना है तो मत लाओ, मैं बाहर खा लूँगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, ये एक अग्रेशन दिखाता है कि बच्चे में मेंटल कंडीशन खराब हो रही है। क्योंकि गुस्सा हमें सबसे ज़्यादा तभी आता है जब असर हमारी मेंटल कंडीशन पे होता है। आप देखिए मैम, कोई बहुत परेशान होता है, बहुत स्ट्रेस में होता है, तो वो इंसान गुस्सा ही करता है, इवन इंक्लूडेड मी ऑल्सो, कि जब कभी दिमाग पे प्रेशर मेरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक लेवल अप हो जाता है, तो मैं गुस्सा करने लगती हूँ, फिर सीधे रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर मुझे छोटी छोटी चीज़ों में चिढ़ लगने लगती है, कोई बात भी करता है तो मन करता है यार अभी इस पॉइंट पे ये बात ना करे, अभी मुझे छोड़ दे, मैं थोड़ी देर बाद मैं फिर हील हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी लगातार गुस्सा करने की आदत ये साबित करती है कि कहीं ना कहीं आपके मेंटल कंडीशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है।
0: बिल्कुल,
1: और बच्चों में ज़्यादा इसलिए क्योंकि 16, 17, 18 जब बच्चे बढ़ते हैं तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और उनका माइंड भी उतना ही सेंसिटिव होता है, चीज़ों को जल्दी कैच कर लेता है। अब आते हैं सेकेंड वाले पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट होता है कि बहस करना, बहस करना इन द सेंस कि वो सही बात पर भी बहस कर रहे हैं और गलत बात पर उससे ज़्यादा बहस कर रहे हैं। सही बात पर बहस करने का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको व्हाइट शर्ट पहन के जाना था, जैसे जब हम लोग छोटे थे तो एक वो होता था कि सैटरडे को व्हाइट शर्ट पहन के जाना, या रूल होता है कि कॉलेज में ड्रेस, अब तो सभी कॉलेज में हो गया है, सभी अथॉरिटीज़ में हो गया है कि कॉलेज भी आप जा रहे हो तो ड्रेस पहन के जा रहे हो, अब वो सिविल तो सब खत्म हो गया है, सिविल सेवा वाला सिस्टम, तो आप मान लीजिए बच्चा ड्रेस पहन के नहीं जा

0: आप उसको इतना ही बोल रहे हो कि बेटा ड्रेस पहन के जाना, और उस पर उसकी दुनिया भर की बहस है, मैं क्यों जाऊँ, मेरे फ्रेंड ऐसे आते हैं, मैं ऐसे ही जाऊँगा, और ये आप अपने पुराने ज़माने की बातें मत करिए, इस तरीके के वर्ड्स वो यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बच्चा धीरे धीरे एक उस कंडीशन में आ रहा है कि जब उसे कुछ भी नहीं मानना है। ऐसे बच्चों की मेंटल कंडीशन ऐसी हो जाती है मैम कि उन्हें आप कोई भी नियम बताएंगे ना तो उन्हें ये लगेगा कि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, या हम नियम में क्यों जिए, नियम में जीने से कुछ नहीं मिलता है। एक ये वाली फीलिंग बच्चों में आ जाती है, जान पूछ कर वो अपने पेरेंट्स को परेशान करते हैं, जान पूछ कर ऐसी चीज़ें करते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं, उनके साथ बैड बिहेव करते हैं, ये सब जान पूछ कर करते हैं वो, और ये करने में उन्हें मेंटली अच्छा लगता है क्योंकि उनकी मेंटल कंडीशन ही वैसी हो जाती है जहाँ पर वो सिर्फ दूसरों को परेशान करना चाहते हैं। और ये तब होता है जब बच्चे घर से अपनी फैमिली से किसी बात को लेकर डिस्टर्ब हैं, ये तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन जब एक प्रॉपर फैमिली का माहौल नहीं मिलता है तभी बच्चों के साथ ये चीज़ें होती हैं और वो धीरे धीरे बदलने लगते हैं। एक टाइम ये आता है कि उनके अंदर बदले की भावना आ जाती है, बदले की भावना इन द सेंस कि हमारा भी झगड़ा होता था मैम जब छोटे थे तो दोस्तों के साथ होता था और अब भी होता है। मैं तो आपको बताऊं लिसनर्स कि मेरी एक फ्रेंड है, वो फोर्थ क्लास से मेरी फ्रेंड है और आज मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया है मतलब, लेकिन फिर भी उसकी और मेरी जब भी लड़ाई होती तो बहुत ख़राब वाली होती है। मतलब उसके मुँह में जो होगा वो मुझे बोल देगी, मेरे मन में जो भी होगा उल्टा सीधा मैं उसे बोल दूंगी, लेकिन एक घंटे बाद अगर आप हमें देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि एक घंटे पहले इनका झगड़ा हुआ था, क्योंकि वो हमारा अपना है, मैं उसे सुना सकती हूँ, मेरा राइट है, वो मुझे सुना सकती है, उसका राइट है। लेकिन इस सिचुएशन में एक ऐसी कंडीशन बच्चे में आ जाती है कि अगर उसने किसी ने उसे छोटी सी चीज भी कह दी तो उसके मन में ये आता है कि इन्होंने मुझे ये कहा है, अब मुझे इनसे बदला लेना है।
1: इट्स कुमार जी कह रहे हैं कि मेरे कॉलेज में ऐसा नहीं था, मन पड़े तो आओ, मन ना पड़े तो मत आओ।
0: अच्छा, ऐसा भी होता है? नहीं, हमने कॉलेज किया तो हमारे साथ तो ये कंडीशन नहीं थी।
1: हमने भी कॉलेज में हम लोग, क्योंकि तो ऐसा बॉयज के लिए है ना, गर्ल्स के लिए तो
0: ओके ओके।
1: और अंशिका, हम लोग किस कॉलेज के हैं ये भी तो आप देखो ना।
0: जी जी बिल्कुल मैम, तो हम तो भाई पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कुमार जी, मतलब ये नहीं कहा मैंने कि आप नहीं पढ़ते, अन्यथा ना ले। तो यही हम आपको बता रहे थे कि बदले की भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चे को लगता है कि अगर किसी ने उससे कुछ कहा है या किसी ने उसके अगेंस्ट कुछ कर दिया है तो वो बदला लेना चाहते हैं कि अब तो मुझे तुमसे बदला लेना है।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरीके नेगेटिव भावनाओं का जरूरत से ज्यादा बढ़ जाना ही एक ऐसी कंडीशन आती है जब वो अपनी जो अपोजिट साइड हैं उनसे डिफेंसिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि मुझे इनसे खुद को डिफेंड करना है, और जो कि आपको अपने पेरेंट्स से खुद को डिफेंड नहीं करना है बल्कि उन्हें समझना है। तो ये कुछ कारण थे, कुछ लक्षण थे जिन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपके बच्चे की जो मेंटल कंडीशन है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है।
1: और अब ठीक करने का जिम्मा मेरा है।
0: हाँ, वो मैम अच्छे से ठीक करती है।
1: हाँ, तो मैं बताऊं कि ये ठीक
0: डिसऑर्डर्स को ही नहीं और भी कुछ चीजों को अच्छे से ठीक करती है। हाँ मैम,
1: तो ट्रीटमेंट ऑफ ODD, यानी ये अच्छी बात है कि सही उम्र और सही समय पर अगर इलाज मिल जाता है तो ये पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। और इसमें इसमें दवाओं से ज्यादा थेरेपी काम आती है, आपको पता है? तो थेरेपी कौन सी है? थेरेपी जैसे कहा जाए कि पेरेंट्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है, PMT, जिसमें माता पिता को सिखाया जाता है कि बच्चे के गुस्से को बिना खुद गुस्सा किए हुए कैसे शांत करना चाहिए। और घर में पॉजिटिव एनवायरमेंट होना चाहिए, अनुशासन बनाना चाहिए लेकिन बिना गुस्से के, ठीक है। और उसके बाद में बिहेवियर थेरेपी होनी चाहिए जिसको CBT कहा जाता है। थेरेपिस्ट बच्चे से बात करके उसके सोचने के तरीके को बदलते हैं। बच्चे को सिखाया जाता है कि गुस्से को काबू कैसे किया जाए और अपनी बात को शांति से वो कैसे रखें। एंड थर्ड थिंग्स की फैमिली थेरेपी, पूरे परिवार की काउंसलिंग की जाती है ताकि घर का माहौल सुधारा जा सके और आपसी बातचीत को बेहतर बनाया जा सके। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और थेरेपी आती है जिसमें आता है लास्ट मेडिसिन, जिसके लिए सीधी दवा नहीं होती है, लेकिन अगर बच्चे के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या फिर डिप्रेशन भी है तो डॉक्टर से सलाह करके आप उनके लिए दवाएं ले सकते हैं।
0: बिल्कुल। और सबसे मेन बात इसमें है कि अभी हमने आपको काफ़ी सारी थेरेपीज़ बताई, तो इन सभी थेरेपीज़ को आप बच्चे पे यूज़ ज़रूर करवाएं, क्योंकि क्या होता है ना मैम कि जब भी बात आती है काउंसलर के पास जाने की या कोई भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेने की तो पेरेंट्स के मुंह से भी निकलता है, मेरा बच्चा पागल थोड़ी ना है। तो ये एक ये थिंकिंग जो है, अच्छा ठीक है, एक बात पूछती हूँ मैं, लिसनर से भी पूछती हूँ, आप सभी से पूछती हूँ, मैम से भी पूछती हूँ, मैम जब हमें कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं?
1: फिजिकली
0: मतलब जैसे उल्टी हो गई या मतलब कोई भी सर दर्द हो गया कुछ भी,
1: वो हमें क्या कहते हैं दिखती है।
0: हाँ
1: वो हमें दिखती है,
0: बिल्कुल।
1: Am I right?
0: Yes, you also right, और आज भी आप राइट हैं क्योंकि बिल्कुल सही जवाब दिया मैम ने कि वो हमें दिखती है,
1: दिखती है।
0: लेकिन हमारी मेंटल प्रॉब्लम हमें दिखती नहीं है। कहते हैं ना कि शरीर में ये जैसे कुछ बीमारियों को कहा जाता है चोर बीमारी है, चोर बीमारी इन द सेंस होता है कि वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ते एक इस पीक पॉइंट पर पहुंच जाती है कि तब हम इलाज भी नहीं करा पाते। अगर आपको कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है तो बेशक बिना मन में कोई भी गिल्ट लिए काउंसलर के पास जाइए, क्योंकि वो सिर्फ आपकी बात सुनकर आपको जो थेरेपी चाहिए वो देती हैं, अगर ज़रूरत है तो दवाइयाँ भी देती हैं। और हमारा काउंसलर के पास जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पागल हैं। ये मन में एक बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कि मेरा बच्चा पागल थोड़ी है कि हम काउंसलिंग की ट्रीटमेंट के लिए ले जाएं। लेकिन एक बात कहूँगी कि अगर आप नहीं ले जाएंगे तो वो आसार जरूर हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमने अभी आपको बताया ना अग्रेशन किसी किसी बच्चे में आप देखेंगे एंगर इश्यूज, वो जवान हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तब तक उसके एंगर इश्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि समय पर इलाज नहीं कराया। इसलिए समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी है।
1: जी,
0: और तो आपको इलाज की टिप्स भी किसने दी है? मैम ने दी है।
1: मैम ने दी है, तो इसीलिए आप जाएं और जरूर से इसकी काउंसलिंग करवाएं। तो तब तक के लिए बहुत ही बढ़िया सा एक गाना मुझे मिल गया है, चलिए सुना देते हैं और उसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: और साथ में आरजे अंशिका। तो फटाफट शुरू करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि कुछ जानवरों के लिए भी।
3: बिल्कुल, तो आज उनकी बात करेंगे कि जिनसे है हमारा बहुत ही पुराना नाता, और हम बात करेंगे हमारी गौ माता। गौ माता यानी कि हमारी बहुत ही अच्छी सी होती हैं, हमारी दोस्त होती हैं, और बचपन में जो भी गाँव गए होंगे उन्होंने गाय के साथ खेला बहुत होगा। मतलब मैंने तो बचपन में बहुत खेला है मैम, और पता है उनको नहलाने के लिए जब बात होती थी तो हम झगड़ा करते थे, नहीं हम करेंगे, नहीं नहीं हम करेंगे, तो बहुत मज़ा आता था, बहुत ही मज़ा आता था। तो कहीं ना कहीं आज हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि देखिए हम हमारी बिजी लाइफ में ना इन जानवरों को भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें हमें भूलना नहीं है, उन्हें भूलना नहीं है। और भूलना इसलिए नहीं है क्योंकि बढ़ती गर्मियाँ हैं, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है मैम कि अब तो हमें भी लगता है कि अगर रेस्ट नहीं है, प्रॉपर आपने प्रिकॉशन नहीं किया है, तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर प्रिकॉशन कीजिए।
2: तो प्रिकॉशन क्या होना चाहिए वो हम बताएंगे
3: जी।
2: उसके पहले मैं सोच रही हूँ कि गाय के बारे में कुछ हम बता दें
3: जी मैम।
2: तो
3: गाय को लेकर के
2: तो जानवरों की देखभाल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनको किस तरीके से रखा जाए, किस तरीके से उनकी देखरेख की जाए। तो गर्मी के मौसम में पाली गई गाय का विशेष ध्यान रखना है, उसके लिए कुछ ऐसे टिप्स हमको अपनाने हैं, जैसे कि रखने की जगह यानी शेड का प्रबंधन। तो प्रबंधन क्या होना चाहिए, जैसे छप्पर होना चाहिए और शेड्स होना चाहिए। अगर आप गाय को खुले में बांधते हैं तो ऊपर से घास फूस का पुआल या फिर छप्पर की मोटी परत को ज़रूर डालें, जिससे टीन की छत जो होती है ना वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। और जानवरों के लिए तो स्पेशली हमारी गौ माता के लिए तो क्या ही है, मतलब मैं क्या ही बता दूं। एंड सेकंड पॉइंट इज़ कि हवा का बहाव जो है वो बिल्कुल देखना है, गाय को किसी भी दशा में बंद या घुटन वाली जगह पर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए जहाँ हवा का आने जाने का रास्ता हो, और बहुत ही जैसे ना हवादार वाले रूम में रखना चाहिए, और या फिर हॉल में रखना चाहिए। टाट या बोरी का उपयोग बिल्कुल करना चाहिए, खिड़की या खुले जगहों पर, खुले हिस्सों पर सूती बोरी यानी टाट को लटका देना चाहिए, खास करके गर्मियों में, और उन पर समय समय पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए ताकि ठंडी हवा अंदर जा सके। सेकेंड पॉइंट इज कि पानी और नहलाने की व्यवस्था पूर्ण रूप से होनी चाहिए, पर्याप्त पानी होना चाहिए उन्हें, कम से कम हफ्ते में उनके पास दिन में कम से कम 3 से भी ज़्यादा, जैसे उनको लगे कि हाँ, आपको लग रहा है कि जैसे कि जब हम लोग जो हैं मतलब मनुष्य हैं हम लोगों को इतनी गर्मी लगती है, तो सोचिए जानवरों की जो खाल होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, तो उन्हें तो गर्मी लगती ही लगती है। तो सामान्य तौर पर मैं आपसे ये भी बताना चाहती हूँ कि जब आपको लगे कि हाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप तुरंत ही तुरंत एक घर पे पानी का इंतज़ाम करें। पानी नहीं है जैसे पाइप से, उससे आप नहला सकते हैं, और या फिर आप कर सकते हैं एक टब का इंतज़ाम, या फिर अगर आप लोग क्या कहते हैं गांव में हैं तो गांव में आसपास कहीं पर भी जहां पर एक छोटी सी तालाब हो या कहीं पे है तो आप उन्हें ले जा सकते हैं।
3: बिल्कुल मैम ने अभी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी गाय को लेकर के, हमारी गौ माता को लेकर के, वो सभी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इन गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें जितना हमें प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं उतना ही उतना हमारे जो घर में हम पेट्स रखते हैं उन्हें भी होती है।
2: बिल्कुल, और गाय को दिन में 3 से 4 बार पानी से नहलाएं, ध्यान रखें कि दूध निकालते समय या ठीक उसके बाद गाय को ठंडा पानी न दें, सीधे धूप में ना नहलाएं क्योंकि तेज धूप में गाय पर पानी न डालें, हमेशा सुबह जल्दी या शाम को ही नहलाएं। और गाय को क्या खिलाएं?
3: हाँ, खिलाने की बात है तो मैं बता देती हूँ। खिलाने के लिए आपको क्या करना है कि गर्मी में हमेशा सूखा चारा जो होता है वो कम खिलाना चाहिए और हरा चारा ज़्यादा देना चाहिए।
2: हाँ।
3: हरे चारे का मतलब है कि घास या जो भी कुछ आप उनको दे रहे हैं खाने के लिए वो हरी होनी चाहिए। कई बार हम घर में जो फल के होते हैं वो उन्हें देते हैं, तो अगर आप फल भी दे रहे हैं कुछ तो वो हमेशा क्या होना चाहिए कि जैसे तरबूज खिलाते हैं बहुत लोग, और तरबूज खिलाना भी चाहिए क्योंकि वो पानी की कमी को पूरा कर देता है, वो चाहे इंसान हो या फिर पेट्स हो सभी में। तो वो अगर आप खिला रहे हैं तो अच्छे से छील करके आपको खिलाने हैं और वो फ्रेश होने चाहिए, मतलब आप अभी लाएं और आप तुरंत दे रहे हैं, जैसे रखी हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए। दूसरा है कि सुबह और शाम ठंडे पानी जो आप दे रहे हैं वो समय से ही उनको चारा और पानी दीजिए। दोपहर में खाना खिलाने के बाद उनके शरीर को जो होता है उनका अंदर का जो यानी कि इंटरनल जो हीट होती है वो बढ़ जाती है
2: दोपहर,
3: जिससे उन्हें बहुत परेशानी होती है,
2: इसीलिए सुबह और शाम को ही ठंडे समय में ही खाना
3: देना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है कि अपने डॉक्टर से आप हमेशा ये पूछ करके रखें, स्पेशली पेट्स के लिए, कि मिनरल्स जो मिक्सचर होता है वो रोज़ उन्हें उतना ही देना चाहिए जितना कि वो अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर ले जाए। क्योंकि उससे क्या होता है कि जैसे हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप एक गाय रख रहे हैं जैसे, तो 50 ग्राम जिसमें मिनरल्स 50 ग्राम हो वो मिनरल मिक्सचर आपको उनको देना चाहिए, और उससे दूध कम नहीं होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम मिनरल्स उनको प्रॉपर नहीं देंगे तो वो दूध कम देने लगती हैं, बट ऐसा नहीं होता है, दूध में कोई कमी नहीं आएगी, बट मिनरल्स आपको कम देने हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। दूसरा पॉइंट आता है कि गाय के चारे में थोड़ा सा सादा नमक ज़रूर डालना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा अगर पानी पीने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मन करता है उनका पानी पीने का, अगर आप उनके चारे में नमक देंगे सादा नमक तो इससे उन्हें पानी पीने का मन होगा, और जब वो प्रॉपर पानी पियेंगे।
2: अच्छा,
3: तो
2: वैसे हम लोगों को जैसे मनुष्य जो होते हैं, हम लोग जैसे जीव हैं,
3: जी,
2: तो हम लोगों को मीठा खाने के बाद क्रेविंग होती है पानी की। पर जो जानवर होते हैं उन्हें ना, उन्हें पानी में नमक मिला करके देने से पानी की मात्रा वो लोग ज्यादा लेते हैं।
3: बिल्कुल। और गर्मी में अगर आप गाय को चारा दे रहे हैं तो उसमें आप 50 ग्राम आंवला पाउडर ज़रूर मिला दीजिए। आंवला पाउडर इसलिए क्योंकि ये इंटरनल, हमने कहा ना इंटरनल हीट होती है,
2: हाँ।
3: तो ये इंटरनली ठंडा करता है बॉडी को,
2: इंटरनल ठंडा करता है
3: और गाय को ठीक भी रखता है, मतलब वो प्रॉपर सही रहती है, स्वस्थ रहती है। और साथ ही साथ में जैसे दूध देने वाली गाय है तो आप उसे जौ होता है जैसे हम जौ बाजरा कहते हैं ना,
2: हाँ।
3: वो जौ का दलिया भी दे सकते हैं, पानी में भिगो करके अच्छे से आप इसे दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपने देखा होगा गर्मी में कुछ पेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाँफते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और वो मुँह से कहीं ना कहीं अपनी गर्मी को बाहर निकालते हैं। अब जैसे मेरे यहाँ डॉग है ब्लैकी है, तो ब्लैकी भी हमारा मुँह से हाँफता बहुत है, इसका प्रॉपर हवा में रहता है, लेकिन वो है उसको कि उसको गर्मी ज़्यादा लगती है। तो इसी तरीके से अगर आप जौ का दलिया देंगे तो वो उन्हें ठंडा रखेगा और हाँफना उनका जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा।
2: जी बिल्कुल। तो ये थी कुछ पेट्स को लेकर के जानकारी, एंड मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वाली गर्मी भी हो रही है, तो हम लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे आज की मॉरल स्टोरी यानी आप सभी का फेवरेट सेक्शन। तो चलिए अंशिका ले ले।
3: हाँ मैम, म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और सॉन्ग भी हम बजाएंगे, सुनेंगे, इंजॉय भी करेंगे। बिल्कुल।
2: ओके।
3: तो बिल्कुल चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को और आते हैं गाने के उस पार एक बहुत ही प्यारी सी मॉरल स्टोरी के साथ।

0: जाने का टाइम हो गया है, लेकिन उसके पहले आज की मॉरल स्टोरी जो कि आपको बताएंगी अंशिका, तो आइए जल्दी से चलते हैं सीधे सीधे आज की मॉरल स्टोरी की तरफ।
1: बिल्कुल, तो मर्यादा का है दूसरा नाम हमारे हम सभी के प्रभु श्री राम।
0: ओके,
1: तो आज स्टोरी भी कुछ उन्हीं की लाइफ से है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक दिन महल में भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उनके छोटे भाई शत्रुघ्न से एक कीमती गुलदस्ता टूट गया। हाँ। गलती से वो बहुत डर गए कि अब तो मुझे माता की डांट खानी ही पड़ेगी। तभी वहां माता कौशल्या आ गई। श्री राम ने तुरंत आगे बढ़कर शांत आवाज में कहा, माता यह गलती से हुआ है, किसी ने जान पूछ कर नहीं किया, शत्रुघ्न का इसमें कोई कसूर नहीं है, हम तो खेल रहे थे और गलती से गुलदस्ता टूट गया। उनके शांत व्यवहार को यानी कि उनकी शांत बात को सुनकर जो उनकी माँ थी यानी कि माता कौशल्या थी वो बिल्कुल शांत हो गई और उन्हें जो गुस्सा आ भी रहा था उनका वो गुस्सा भी शांत हो गया।
0: अच्छा।
1: और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, और टूट गया है तो क्या हुआ, हम दूसरा ले आएंगे, आप ठीक है आप लोग जाइए। तो जब वो वहाँ कमरे में पहुँचे तो शत्रुघ्न ने पूछा कि आप ये बताइए मुझे भैया राम कि माता कौशल्या इतनी शांत कैसे हो गई और उन्होंने हमें डांटा भी नहीं, ऐसा क्यों, उन्हें तो हमें डांटना चाहिए था। तो भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब भी कोई गलती हो या गलती से भी आपसे कोई गलती हो जाए तो अपनी बात को हमेशा शांत रहकर कहना चाहिए। जब हम हमारी बात शांति और स्थिरता से कहते हैं तो सामने वाला ये समझ जाता है कि हमारी कोई गलती नहीं,
0: मतलब जानबूझ के नहीं किया।
1: हाँ, जानबूझ कर आपने उसको
0: नहीं किया, नहीं हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: तो बच्चों आज से आप लोग किचन में जाइएगा, आटे के जो ड्रम होता है और मैगी का जो डब्बा होता है उसको गिराइएगा, बनाइएगा, और क्योंकि बच्चों की पाठशाला है, और फिर आराम से जाकर के अपनी माता जी से कहिएगा मम्मी किचन की हालत जाकर के देख लीजिए,
1: गलती से हुआ है,
0: गलती से हुआ है।
1: और उसके बाद
0: ऐसे प्रकॉशन दे रही है कि मार फिर
1: नहीं, नहीं।
0: हाथ से नहीं पड़ेगी, मार फिर चप्पल से भी नहीं पड़ेगी, मार फिर
1: किसी विशिष्ट
0: डंडे से भी नहीं पड़ेगी, मार किसी विशिष्ट यंत्र से पड़ेगी।
1: नहीं, ये इसलिए था कि जब आपसे गलती से कोई गलती हो जाए,
0: गलती से भी कोई गलती,
1: जानबूझ कर की गई गलती,
0: जा रहे मैगी बना रहे हैं तो वो गलती से ही गलती हो जाएगी ना।
1: नहीं, ये तो जानबूझ कर की गई गलती है, क्यों आप जाकर किचन में मैगी बना रहे हैं जब आपको पता है कि मैं किचन का ऐसा हाल करके निकलूंगा कि फिर उसके बाद मेरा हाल बेहाल होगा।
0: कल ऐसे ही रात में 1:30 बजे हमारे घर के बच्चों ने भी यही किया था, रात में
1: 1:30 बजे
0: मैगी बनाई और पूरे किचन का पूरा सत्यानाश किया, और मैं फिर उठी और मैंने बहुत देर से चिल्लाया, मैंने कहा ये क्या किया है तुम लोगों ने, ये बताओ, मतलब कोई रात में 1 से 1:30 बजे कोई मैगी खाता है?
1: नहीं, क्रेविंग तो बहुत अच्छी होती है।
0: मैं रात 1:30 बजे बना के आई है, 2 बजे खाया गया है, उसके बाद सोया गया है।
1: रात वाली क्रेविंग बहुत अच्छी होती है, मतलब मुझे भी कभी कभी होती है और तब मेरा मन करता है कि घर में जो भी मौजूद है मैं वही बना डालो
0: और खाओ
1: और खाओ।
0: तो चलिए भाई, और मार तो खैर पड़ेगी ही, अच्छी मार पड़ सकती है, लेकिन हमें नहीं इजाजत, हम मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर भुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुंहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
9: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
8: और जेंट्स के लिए?
9: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
8: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा। और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा, नियर सिविल लाइंस, गोंडा।
9: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
1: अरे सुना
10: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
10: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945 583 5346।

0: हाँ जी श्रोताओं, तो एक बार पुनः से हाजिर हूँ मैं यानी आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा लेकर के आपका वही वाला प्रोग्राम जिसको कहते हैं आप फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा। हाँ जी, और जब बात हो मंगलवार की तो भाई एक ही चीज हमको याद आता है, वो है लंगर। आपको पता है अफसोस इस बात का है, हम गए थे पूरी खाने, पूरी छन के रखी हुई थी बड़े बड़े डेग में, पर मिली नहीं एक भी खाने को। हाय अफसोस। लेकिन उम्मीद है कि आप सभी आज के प्रसाद को भी ग्रहण करने वाले हैं और उसके बाद में नेक्स्ट मे बी लास्ट मंगलवार हो जेठ का, भाई इस दफा तो ताबड़ तोड़ लंगर लग रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं। कारण बस एक ही है, क्योंकि हमें लग रहा है लोग भंडारे पे मतलब क्या ही बोलूं मैं, इतनी गर्मी में भी लोग भंडारा खाते हैं और हम जैसे लोग, वाह वाह वाह। खैर इसको करते थोड़ा साइड, आते हैं उस ओर जो लेके आई हूँ मैं यानी कि आपके अपने शो की ओर। और शो में आज की पहली डिमांड किसकी है वो हम जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी पसंद का ये गाना सुने और तब तक कॉल करते रहें 6093316429 पे, क्योंकि आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो गाना 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। शो है आपका फोनी फरमाइशी कार्यक्रम और फोन करेंगे तो आपकी फरमाइश कंप्लीट की जाएगी, उससे पहले हमारी पसंद का। और अगर कोई आपसे खफा हो, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत हो किसी से और थोड़ी सी नाराजगी वाला टर्म हो तो कितना आनंद आता है वो आप इस गाने से जरूर जानेंगे। थोड़ा गौर फरमा के सुनिएगा, बड़ा ही सुकून का गाना है। सिंगर है पपोन साहब और इनके गाने मुझे बड़े ही अजीज हैं और बदतमीज दिल तो इन्होंने ही गाया है जिसको हम अपना बहुत करीबी गाना मानते हैं। एंजॉय द ट्रैक।
1: ये वो बनता है बिल्कुल कंटेम्प्रेरी आज की बात,
2: क्या बात।
1: नदिया तेरा
2: हम तक यूं ही
1: बहते रहना बनता है।

दोस्तों, जब बात हो प्यार मोहब्बत रिश्ते की या फिर करीबी होने की, तो भाई कुछ चीजें हो सकता है खफा भी हो जाए सामने वाला सुन के आपकी बातों को, पर सच्चाई हमेशा उनसे दसिएगा, गल उनसे हमेशा करते रहिएगा। लेकिन एक बात और ख्याल रखिएगा, उनका दिल किसी बात से अगर नाराज हो जाता हो वैसा वाला कि परमानेंट हो जाए, या तो वहाँ खामोश रहना ज्यादा अच्छा होता है।

0: सच्ची दोस्तों तो कोई खफा हो जाए लेकिन उसे सच ही बोलिएगा, क्योंकि सच्चाई एक दफा सुन के इंसान बर्दाश्त कर लेगा लेकिन झूठ आपका आपको उनसे दूर करता रहेगा। इसलिए सच बोलना सीखिए और रिश्तों में सच्चाई बेहद जरूरी है। फिलहाल बढ़ते हैं एक प्यारी सी डिमांड की ओर। उससे पहले एक प्यारी सी लाइन आई हुई है। सर्व सावंत जी लिखते हैं सिर्फ इंडिया मुंबई से, दिल ना लगाना दिलदार, सारे झूठे हैं वादे करते हैं जो सारे झूठे हैं, हकीकत में यहाँ कोई किसी का नहीं होता, मोहब्बत के ये दावेदार सारे झूठे हैं। उफ क्या बात है भाई, कितनी गहरी बात कह दी है और लग रहा है कि काफी करीब से आपने मोहब्बत को जाना है। फिलहाल बढ़ेंगे आज की पहली डिमांड यानी कि पंडित जी की डिमांड की ओर और सुनते हैं कि मोहब्बत किसे कहते हैं।
1: फिर भी दिल किसी का हो जाता है, ना उसकी आदत छूटती है ना उसकी यादें, और फिर हर धड़कन उसी का नाम लेने लगती है।

0: कभी सोचा नहीं था कि एक अजनबी मेरी जिंदगी की वजह बन जाएगा, कि उसकी आवाज सुकून बन जाएगी और उसकी खामोशी भी मोहब्बत लगने लगेगी। तेरे संग जो लम्हे गुजरे वो मेरी जिंदगी का नूर बने।
1: हाँ जी, तो मोहब्बत क्या होता है, कैसे एहसासात होते हैं, ये सब कुछ बयां कर दिया इस प्यारे से नगमे ने, जिसको भेजा था हमारे पास में प्रबल मिश्रा जी पंडित जी ने। और आप बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई है सबलू सावंत जी के पास से। तो चलिए देखते हैं सबलू जी ने आज हमें क्या भेजा है।

क्या बात है भाई, पूरी तरह से इन्होंने प्रूफ भी कर दिया कि ये दिलदार झूठे क्यों कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है हमारे प्यारे के गुप्ता जी की ओर से, और इस गाने को हम डेडिकेट करेंगे किसको करें सोच रहे हैं। हाँ जी, आप सभी को, और किसको, इतना सोचना क्या है, आपसे बढ़ के कौन है हमारे लिए। एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को 3 से 4 के सफर में। मैं हूँ आपके होस्ट दोस्त आर्जा कांक्षा, और ये गाना कितना

जी हाँ, और हमेशा की तरह आज भी चैट बॉक्स में काफी सारी भीड़ है और गाने भी बहुत सारे आए हुए हैं और वक्त वही एक घंटा। क्या बताए, क्या दुख का पीड़ा का कारण होता है एक घंटा। कभी कभी मन करता है एक घंटे को हम घंटा लगा दे। फिलहाल सुनते रहिए इस प्यारे सनग में को।

भाई हमारे एक घंटे पे आई है एक प्यारी सी टिप्पणी जो हम पढ़ना चाहेंगे। इट्स कुमार साहब कहते हैं एमपी रीवा से, भाई घंटा एक घंटा है बजाते रहो, इसीलिए तो बजा रहे भाई आप सभी के गाने को। फिलहाल बढ़ेंगे इस प्यारी सी बहुत ही खूबसूरत सी डिमांड के बाद में नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो की आई हुई हमारे पास में समरीन जी की ओर से, राहत फतेह अली खान साहब की आवाज। एंजॉय करते हैं, फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेके हम अपनी प्यारी सबी हाजी की, नहीं जी दरक्षा अंसारी जी हैं। हाँ

धन्यवाद भाई, बहुत सुंदर सी डिमांड थी समरीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बढ़ते नेक्स्ट डिमांड की ओर, और डिमांड हमारे पास मैं सीतापुर से मंगाया एक डिमांड, और डिमांड हमारी दरअक्षान सारी जी की। आइए एंजॉय करते इस ट्रैक को, फिर आएंगे हम अपने सभी हजी की डिमांड के पास में, और नेक्स्ट डिमांड होगी हमारे राम भवन जी और हमारे प्यारे दिल से सुनने वाले लिसनर यानी कि मुकेश जी की। एंजॉय करिए इस ट्रैक को, नेक्स्ट ट्रैक के साथ आते हैं। 3 से 4 के सफर को आप एंजॉय कर रहे हैं आपके अपने 89.6 FM के साथ।

हमारे साथ में शो में बने हुए हैं सबलू सावंत जी हैं मुंबई बोरीवली से नहीं भैया आजकल सिस इंडिया मुंबई से हैं और के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स से राम भवन जी बमनान गोंडा से सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से दक्षा अंसारी जी सीतापुर से नेहा जी बहराइच से यानी हमारे मंगू जी और प्रबल मिश्रा जी पंडित जी हमारे दिल से यानी गोंडा से और इसके अलावा कौन है हम जरूर बताएंगे उससे पहले गाना

क्या बात भाई, बहुत ही प्यारी प्यारी डिमांड होती है इन प्यारी प्यारी लड़कियों को, जो लड़कियों की मतलब दरक्षा जी हो, सबीहा जी हो, सबा जी हो, समरीन जी हो, वाह वाह वाह वाह, मजा आ गया। और आगे बढ़ते हैं उन मैसेजेस की ओर जिन जिनके हमारे पास में मैसेज आए हैं। तो रीना शर्मा जी हमारे साथ में बनी हुई है रुड़की उत्तराखंड से, और इसके अलावा है हमारे प्रेम मौर्य जी जो हमें सुनते हैं सीतापुर से, मनी शर्मा जी है भटपुरवा से, खुरासा भटपुरा से, और इसके अलावा है हमारे साथ में अब्दुल मुजीम साहब। ओके, गुड आफ्टरनून आपको प्रेम मौर्य जी, और अब्दुल मुजीम साहब हैं, और ये हमें सुनते हैं कहाँ से सुनते हैं, अहमदाबाद से सुनते हैं भाई। दीपांशी तिवारी जी हैं भाई गोंडा से सुनती हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे एमपी दीवा वाले प्यारे इट्स कुमार साहब। कुमार साहब के अलावा अगर बात करें तो अब्दुल मुजीम साहब ने भाई कुछ प्यारी सी लाइन आज भी अर्ज की है, फ़र्ज किया है, तो मतलब इन्होंने अर्ज किया तो हमारा फ़र्ज हम पढ़ देते हैं। जन्नत की आरजू में कहाँ जा रहे हैं लोग, ओहो जन्नत की आरजू में कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत को करबला में खरीदी हुसैन ने दिया। ओके, खरीदी हुसैन ने दुनिया ओ आखरात में, जो रहना हो चैन से जीना, अली से सीखो मरना हुसैन से। ओ माय गॉड, क्या बात है भाई, इन्होंने पूरी की पूरी हमको सीख दे दी है कि अगर आप जी रहे हैं और मौत को अगर गले लगा रहे तो आपको सीखना चाहिए किससे, और फिर अगर आपको मरना है मतलब जीना चाह रहे हैं, मरना चाह रहे हैं, तो किससे सीखना, ये आपको बताया जा रहा है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, क्योंकि हमारे पास में लगातार कॉल्स भी आ रही हैं, तो अब चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये डिमांड है किसकी, हमने किसकी नाम बताया था हमने नाम बताया था सबीहा। चलिए सुनते हैं इस प्यारी सी डिमांड को, सबीहा जी की डिमांड को।

जी, तो सभी हाजी की डिमांड पे माहिरू अभी आपने एंजॉय किया है और मूवीज की बड़ी ही प्यारी है और थोड़ी सी हॉरर वाली है लेकिन बड़ी ही खूबसूरत है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, उससे पहले कुछ चैट बॉक्स की ओर और रुख करेंगे। तो लास्ट मैसेज हमने लिया था हमारे मनी शर्मा जी थे और उसके बाद में थे हमारे अब्दुल मुजीम साहब और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज हमारे पास में आया हुआ है अमित चौधरी जी हमारे साथ में बने हुए हैं जो हमें सुनते हैं महाराष्ट्र से और इसके अलावा हमारी प्यारी नीना जी हैं, हाँ जी यानी हमारी चंगू जी। तो चंगू मंगू की जोड़ी हुई है कंप्लीट और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जोड़ी की ओर। नहीं जोड़ी ऐसी है नहीं कोई फिलहाल। मिश्रा ऑप्टिकल से आज मिश्रा जी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और नेक्स्ट आप सभी की ढेर सारी वाली चिट चैट लगातार जारी है। और ये क्या मैं देख रही हूँ मुकेश यादव जी भी आ गए अपनी गड्डी के साथ, नहीं गड्डी के साथ नहीं आए भैया, बीच पे है गोवा वाली बीच पे, नहीं नहीं आगे नहीं गाएंगे। गुड आफ्टरनून डियर मैम आरजे कांक्षा जी, हाँ जी थैंक यू फॉर योर लवली वाला हाँ जी। आगे बढ़ते हैं तो हमें नेक्स्ट मैसेज में आप सभी के मैसेजेस दिख रहे हैं, फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है किसकी बता देते हैं, तो ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है किसकी ये हमें भी नहीं याद आ रहा है, नहीं नहीं याद आ गया, राम भवन जी की। और राम भवन जी और हमारे प्यारे मुकेश जी को सुनना है ये प्यारा वाला गाना, हमारे चीची जी वाला गाना। और ये गाना हम काश किसी को डेडिकेट कर पाते लेकिन नहीं कर रहे हैं, खाली सुन रहे हैं, एंजॉय करिए, बाकी आप सभी समझदार हैं।

अब सुनाते हैं आपको नेक्स्ट वाला गाना। गाना बड़ा ही प्यारा था भाई, माई चीची जी का गाना हो हमको पसंद ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये जन्म तो हम उनके कायल ही रहने वाले हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और डिमांड हमारे मनी शर्मा जी की भटपुरवा से। आइए सुनते हैं इनको क्या सुनना है।

हाँ जी दोस्तों, और जब तक कृष्ण की लीला नहीं होगी तब तक किसी को इश्क नहीं होगा, ये बस सच है। एंजॉय करते रहिए 3 से 4 के सफर में आपके अपने शो कॉलर ट्यून गोंडा को। आपने ट्यून करके रखा हुआ 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, और गाना है मनी जी की डिमांड पर।

हाँ जी दोस्तों, और अब इस नगमे के बाद बढ़ते हैं हम अपने अजय मिश्रा जी की डिमांड की ओर, और उसके बाद आएंगे रमेश कुमार जी की डिमांड की ओर, जो हमें सुनना है महाराष्ट्र से। चलिए एंजॉय करते हैं मिश्रा ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी की इस प्यारी सी, खूबसूरत सी, बड़ी ही खूबसूरत सी डिमांड को।

बहुत ही प्यारा 90s हिट्स अभी आपने एंजॉय किया। आज मिश्रा जी की डिमांड पे और अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये डिमांड हमारे पास नहीं है रमेश कुमार जी की महाराष्ट्र से, लेकिन उससे पहले चंद लाइन आई हुई है प्रबल मिश्रा जी का। कहना है तूफानों से लड़ने की हिम्मत मिल जाती है जब हनुमान जी की भक्ति दिल में बस जाती है, ना कोई भय ना कोई हार सताती है, बजरंग बली की कृपा जब हर राह आसान बनाती है। क्या बात भाई, जय बजरंग बली। और इसके साथ में ये नगमा सुनते हैं परदेश मूवी से SRK का दिल।

और आज ही दो इस गाने के बाद में होगी नीना जी की डिमांड, और नीना जी की डिमांड में हम ऐड करने वाले हैं अपनी प्यारी सी चुलबुली सी चटपटी सी मोहिनी तिवारी जी को। मोहिनी जी, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, जिंदगी ऐसी होती है, आज हम हैं कल नहीं होंगे, लेकिन आपकी और हमारी यादें दुनिया जरूर याद करेगी, और उसी याद के साथ आगे बढ़िए और उस याद को रंगीन बनाइए। इसलिए नेक्स्ट गाना जो नीना जी का होगा उसमें हम आपको ऐड करेंगे। फिलहाल ये गाना हमारे प्यारे रमेश कुमार जी की डिमांड पे जो हमें सुनते हैं महाराष्ट्र से, और इस गाने का नाम तो आप सबको पता ही है ना, दिल एंजॉय करती है।

और बता दें, इस गाने को अगर आप सच में एंजॉय करना चाहते हैं, कार में बैठ के लॉन्ग ड्राइव पर निकल के, सुहाना मौसम हो, और इसको फुल वॉल्यूम में बजा के फिर गुनगुनाते हुए जाइए। आहा, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना था। और अब चलते हैं नीना जी की डिमांड की ओर, और इस गाने को हम डेडिकेट करते हैं अपनी प्यारी मोहिनी तिवारी जी को। भैया गाना बड़े ध्यान से सुनिएगा।

की शौकीन है हमारी नीना जी, ऐसा उनका कहना है, और मोहिनी जी कुछ दिन में हो जाएंगी, हमने इसलिए इनको सीख दे दी है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में। गाना बहुत सारा है अभी हमारे पास में, वक्त बेहद कम। निपर जी की डिमांड आई हुई रेलवे क्रॉसिंग से, आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। उसके बाद होगी नेक्स्ट डिमांड हमारे प्यारे देवी जी की, और देवी जी के बाद होंगे हमारे सुरेंद्र यादव जी फ्रॉम गौरा चौकी। एंजॉय करते रहिए, एक से बढ़कर एक डिमांड आप सभी की।

भाई ये लाइन हमारे लिसनर्स पे शूट करती है, एक को मनाते हैं दूसरा रूठ जाता है, एक ही घंटा हमारे पास में होता है, इतनी सारी डिमांड्स होती है कैसे पूरी करें। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट साइड डिमांड के ओर और पहले सुरेंद्र जी का सॉन्ग प्ले करेंगे, फिर आएंगे देवी जी के सॉन्ग के साथ में।

डिमांड के बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है देवी जी की, और हमारे साथ में जुड़ गए हैं भीम कुमार जी गुजरात से, और बड़े दिनों बाद हमारे युवा पत्रकार महोदय यानी के सिंचाई विभाग से राहुल जी। एंजॉय करिए इस ट्रैक को, फिर आते नेक्स्ट डिमांड लेकर के। वक्त की कमी के कारण फटाफट से आप सभी की डिमांड के साथ में आगे बढ़ती है आपकी अपनी आर्ज आकांक्षा आपके अपने शो कॉलर ट्यून गुंडा के साथ।

दोस्तों हमारे कई सारे लिसनर्स के कई सारे सिग्नेचर सॉन्ग हैं और ये सिग्नेचर सॉन्ग है हमारे कमल नयन जी का। तो एंजॉय करिए, बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा नगमा आप एंजॉय कर रहे हैं 3 से 4 के सफर को। भाई 3 53 हो गया, पता ही नहीं चला मेरे को।

साथ नेक्स्ट वाली डिमांड लेते हैं अमित चौधरी जी की महाराष्ट्र से, और इस गाने को एंजॉय करेंगे और फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में, और हो सकता है तब तक बाय बाय बोलने का भी वक्त हो जाए।

ही खूबसूरत और उम्दा डिमांड भाई, हमारी तो सांसें थम सी गई एक पल को, इतनी बेहतरीन डिमांड थी। और अब बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। और ये डिमांड आप एंजॉय कर रहे थे अमित चौधरी जी की डिमांड पे, बड़ी इनकी डिमांड बड़ी प्यारी प्यारी होती है महाराष्ट्र से जो हमें सुनते हैं। अभी बारी है भीम कुमार जी के डिमांड को कम्प्लीट करने की, और उसके बाद में अगर वक्त रहा तो रईस साहब की डिमांड। और हमने प्ले लिस्ट तो कर रखा था सबा जी नेक्स्ट आपका, लेकिन आई एम सो सॉरी मेरे पास शायद वक्त ना हो, और अगर कोशिश करूंगी तो शायद मुखड़ा मुखड़ा ही सही, लेकिन हाँ क्योंकि नन्ही मुन्नी सी बच्ची की एक रिक्वेस्ट है तो उसको पूरा करना मेरा फर्ज बनता है। और आज जिन जिन की डिमांड रह जाएगी उन सभी से सॉरी है, और कल आप फिर से डिमांड कर सकते हैं, यही आपको कहना है। तो रह जाएंगे हमारे मोनू जी, अब्दुल मुजीम साहब, अजीज साहब मुंबई से, इसके अलावा एहसान जी, मुमताज अंसारी जी, चांद बाबू जी, और हो सकता है सबा जी आप भी रे से बाहर हो जाए, राजू सलमानी जी, इतनी सारी डिमांड हमारी बच जाएंगी आज।

हाँ जो, और नेक्स्ट डिमांड लिए चलते हैं हम आपको रईस साहब की रईसियत की ओर, और इस गाने को एंजॉय करिए, और इसका लास्ट डिमांड लेंगे हम सबा जी को, और इसी के साथ आप सभी को बोलते हैं टाटा, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। आज का सफर काफी रोमांचक और क्या बताएं लजीजदार रहा, एक से बढ़कर एक नगमे रहे, कई सारे नगमे तो रेस से बाहर हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, आप कल फिर से डिमांड करने वाले मुझे मालूम है, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, सुनते रहिएगा 89.6 FM गुंडा शहर की धड़कन।

0: संजोग तो देखिए, इन दोनों की जन्म पत्री एक है और इनके नाम भी एक है, माही।
1: एकदम बैट बॉल जैसी जोड़ी है।
2: वेट फॉर इट।

0: अपने आप को रोमियो समझते हो?
1: उसे प्यार के लिए जान दी थी, मैं उस टाइप का नहीं हूँ।
0: लेकिन मैं जूलियट हूँ, मुझसे प्यार करोगे तो जरूर मरोगे।
1: I just want flirtationship.

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
2: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
1: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
2: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
1: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
2: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
1: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
6: और जेंट्स के लिए?
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब?
8: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 1।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: तुझे मेरे बारे में वो सब पता है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया।
2: You know you've been my best buddy since forever, right?

नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। और आपके साथ मौजूद है आपके अपने आरजे बिना, आपके शो विज्ञान शाला लर्निंग बियॉन्ड क्यूरोसिटी, यानी कि क्यूरोसिटी के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं विज्ञानशाला में। और विज्ञानशाला की बात अगर करूं तो सबसे पहले तो मुझे याद आ जाता है अभी हाल ही में बीता आपका और हमारा फेवरेट डे, यानी कि अर्थ डे, हमारी अर्थ डे यानी कि मदर अर्थ डे, जितने भी नाम लूँ उतने कम है। और इस डे को लेके बहुत सारी जगह अलग अलग काम किए गए, हम सब ने भी पेड़ पौधे तो लगाए ही होंगे, लेकिन पेड़ पौधे लगा देने मात्र से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या लगता है आपको? बिल्कुल भी नहीं। समस्या का समाधान तब होगा जब हम समस्या ना बनाएं, यानी कि समस्या सबसे बड़ी है पृथ्वी के लिए प्लास्टिक और पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन के लिए तो हम बहुत सारे चीज़ें कर रहे हैं, व्हीकल कम कर रहे हैं, व्हीकलों को हम ईंधन के रूप में ईंधन से ना चला करके हम इसे सोलर पैनल्स यानी कि सोलर ऊर्जा से चलाएंगे, सोलर एनर्जी से चलाएंगे, तो पोल्यूशन जो है वो कम होगा। तो ये तो पोल्यूशन की बात होगी। और क्या है जो हमारी मदर अर्थ को प्रभावित कर रही है, और क्या है जो हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहा है? वो है प्लास्टिक। और प्लास्टिक को लेके मैं अगर अपने गोंडा शहर की बात करूँ तो बहुत सारे विद्यालयों में, जैसे स्पेसिफिकली मैं सेंट जेवियर स्कूल की बात करूँगी, उस स्कूल में मैंने देखा कि बच्चे जो हैं इको ब्रिक्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, मतलब ऐसा नहीं खर्चा करके बनाते हैं, उन्हें जहाँ भी कहीं प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई मिल जाती है वो उससे इको ब्रिक्स बनाते हैं। बहुत बढ़िया, वहाँ के मतलब जो भी टीचर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, उन सभी ने एक अच्छी सोच को जागृत किया। और मैंने सोचा आप लोगों को भी बताती हूँ कि आपके भी घर में अगर बोतलें आ रही हैं तो उसको इधर उधर ना फेंके। और इसी के साथ अब ब्रिक्स बनेंगी कैसे? आप सोचेंगे जब सीमेंट यूज़ ही कर लिया, मिट्टी यूज़ ही कर ली तो ब्रिक्स कैसे बनी? नहीं, बाद मजबूती की आ जाती है ना, तो ब्रिक मतलब मजबूत होनी चाहिए। तो उसे मजबूत करने के लिए देखिए प्लास्टिक को प्लास्टिक से ही मजबूत किया जा रहा है। आपके घर में चिप्स के रैपर, पैक्ड मटेरियल तो आता ही है, आजकल तो दालें वगैरह भी प्लास्टिक की पॉलीथीन में पैक होके आती हैं, मतलब एकदम एयर टाइट। तो उन प्लास्टिक की पन्नियों को आपको इकट्ठा करना है और उसको बारीक बारीक मतलब सीजर से काटना है। जैसे घर में आप फ्री बैठे हैं तो थोड़ा सा काटिए, अगर हम दिन में 15 मिनट भी निकालें अपनी मदर अर्थ के लिए तो बहुत होगा। उसको बारीक बारीक काटना है और काट के उस बोतल में भर देना है, और बोतल में तब तक भरना है जब तक बोतल एकदम टाइट ना हो जाए, एयर टाइट मतलब फुल, कि अब जगह नहीं है सांस लेने की, तो उसको फिर ढक्कन लगा के बंद कर देना है। ऐसे करके कई सारी आप बोतलें बना लेंगे। और जब भी कहीं घर बन रहा है या कुछ बन रहा है, मान लीजिए घर के बाहर आपको पायदान बनवाना है, तो ईंटों की जगह उनका यूज़ करके सीमेंट में उन्हें जमवा सकते हैं। ब्रिक तो ईंट तो टूट भी सकती है कुछ भारी चीज़ में, ये ना टूटेगी ना कुछ होगा, बल्कि मजबूती की मजबूती, और प्रदूषण से हम बचेंगे। और ऐसा तो है ही, जोड़ना बनाना बिगाड़ना तो लगा ही रहता है हमारे घर में। गार्डन में हम लोग देखिए ईंटों की वो बनाते हैं, क्यारी बनाते हैं, क्यारी को ईंटों की जगह बनाने के हम प्लास्टिक इन बोतलों से क्यारी बना सकते हैं। तो ये तो एक बात हो गई। अब देखिए, अब बात करेंगे कि जो हमारे हाल ही में हो रहे सर्वेक्षण हैं उनमें क्या बात हो रही है, तो आज बात करूंगी इसके बारे में भी। और बहुत सारे पहलू मैं आज आप लोग के साथ चर्चा करने के लिए लाई हूँ, मतलब बहुत सारी बातें। कहते हैं ना कि विज्ञानशाला में आके जो लर्निंग है वो क्यूरोसिटी को भी और बढ़ा देती, जितनी क्यूरोसिटी के साथ हम लोग आते हैं उस क्यूरोसिटी में भी इंटू 100 हम करके तब जाते हैं कि अगली बार ये चीज़ें बात होंगी। तो जैसा कि हमने मदर अर्थ डे 22 को सेलिब्रेट किया, आज बात भी हो रही है थोड़ी बहुत, और बात के साथ साथ हम लोग देखिए चर्चा कर रहे हैं आज स्पेसिफिकली मलेरिया डे भी था, वर्ल्ड मलेरिया डे अभी जल्दी गया है 25 तारीख को। और इसी के साथ मैं आज एक देश की खास चीज़ को लेके आई हूँ कि आयुष्मान दिवस क्या होता है, ये भी बताना है मुझे आप लोग को। तो बहुत सारी बातें होंगी, तो आज जुड़े रहिएगा इन सारी बातों को सुनने के लिए। और सबसे पहले हम लोग एक गाना सुनते हैं, और गाना सुनने के बाद आप लोगों से बात करते हैं आगे किस लेवल पे हमारी ग्लोबल वार्मिंग पहुंच रही है और पृथ्वी को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून्ड।

बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

तो वापस से आप सभी का स्वागत है विज्ञान शाला में, लर्निंग बियॉन्ड क्यूरोसिटी। और जब क्यूरोसिटी की बात होती है तो हम लोग की जो जिज्ञासा है ना, वो कहीं दूर पहुंच जाती है कि अब और क्या जानेंगे, अब और क्या सीखेंगे और क्या क्या हम इस दुनिया को बताएंगे। तो जब दुनिया को बताने की बात होती है तो जब पृथ्वी के लिए हम सोचते हैं तो दुनिया क्या, हर इंसान एक कश्मकश में आ जाता है कि आने वाले समय में पृथ्वी की उम्र कितनी बची है, क्या पृथ्वी हमारे आने वाले जनरेशन्स को अपना वही प्यार देगी जो उसने हमें दिया है। और देखिए, बढ़ती हीट वेव का भी कारण कहीं ना कहीं पृथ्वी को पहुंचता नुकसान है। देखिए हमारी माँ को अगर नुकसान पहुँचेगा, मतलब हमारी पृथ्वी माँ को नुकसान पहुँचेगा, तो इंसान तो परेशान होता ही जाएगा। और गर्मी के मौसम में बहुत सारी मौतें शरीर में पानी कमी होने की वजह से हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसके पीछे कई सारे कारण हैं और उन कारणों को मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। और सच्ची बताऊँ ना, मतलब दिल दहल जाता है सोच सोच के कि कैसे कैसे कैसे हम अपनी पृथ्वी को आने वाले समय में बचाएंगे। मन तो करता है पृथ्वी को एक चादर पहना दूं और आती धूप की किरणों से और आने वाले जितने भी मतलब परेशानियां, उन सब से बचा लूं। लेकिन क्या करें, हमारी जो विज्ञान है वो भी इसमें कुछ नहीं कर रही है। और हम तो इतना तक सोच रहे हैं कि धरती के साथ साथ और भी हम प्लैनेट्स पे अपने जीवन के लिए सोचें, क्योंकि धरती पे जब भार बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं समस्याएं भी बढ़ेगी ना। तो सारी चीज़ें सोचते हुए विज्ञान भी बहुत कोशिशें कर रहा है पृथ्वी को बचाने की, और हम भी इस कोशिश में लगातार योगदान दे रहे हैं। और इस योगदान में हम ही नहीं, और आने वाले समय में भी बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, चाहे वो जलवायु हो, मौसम हो, और पृथ्वी का बदलता मौसम है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी यहाँ के जलवायु की, कैसे पृथ्वी को जलवायु प्रभावित कर रही है। और सबसे खास बात यह है कि यमन का नाम तो आपने सुना ही होगा। यमन के लाल सागर के तट पर बसे कॉफी के व्यापार में एक मशहूर मोचा शहर नाम का जो है वो मई के आसपास बंगाल की खाड़ी में बह के चला गया। कहते हैं वहाँ मोचा नाम का जो चक्रवात आया था उसने सब कुछ बहा दिया था। और ये एक उदाहरण दे रही हूँ मैं। इसी के साथ हमारे यहाँ भी आए दिन कभी कोई बाढ़ का केस बिहार में सुनने को मिल जाता है, कभी हुदहुद नाम के तूफान आ जाते हैं और तहलका मचा देते हैं, तितली, ना जाने कितने तूफानों के बारे में हम लोग भी जानते हैं। और जब बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, तो उसमें जितने भी सदस्य हैं उन सभी ने 2020 में ही स्वीकार किया है कि पृथ्वी को आने वाले समय में समस्याएं बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ेंगी। और ये समस्याएं आगे बढ़ते तापमान की वजह से हो सकती हैं, बदलते जलवायु की वजह से हो सकती हैं। तो अब मैं बात करूंगी, संयुक्त राष्ट्र जो कि आपदा न्यूनीकरण एजेंसी चलाते हैं, उन्होंने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से चक्रवाती तूफान को लेके बहुत सारी चीज़ें पहले भी बता रखी हैं। लेकिन क्या सिर्फ बात चक्रवात पे रुकती है? नहीं, सूखा, बाढ़, ये सारे ड्रॉबैक्स हैं हमारे पृथ्वी के परेशान होने के बाद। तो आपको क्या लगता है कि पृथ्वी का बदलता ये रूप, इसके जिम्मेदार कौन है? हम सब, एवरीवन, जितने भी लोग हम सब सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, वो जो इस दुनिया में बहुत कुछ कर रहे हैं, सब रिस्पॉन्सिबल हैं सिवाय बेजुबान जानवरों के। उन्होंने कभी पृथ्वी को क्षति तो नहीं एटलीस्ट पहुंचाई। और आप सोच रहे होंगे कि क्यों, शेर तो जानवरों को खाता है? नहीं, वो एक फूड चेन को बैलेंस करने में मदद करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग का भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और ये ग्लोबल वार्मिंग हमारे आने वाले समय में जो ग्रीष्म ऋतु है उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगी। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण जो है उसका दर बढ़ चुका है। इससे वातावरण में नमी की मात्रा की वृद्धि हुई है और
भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा की जो है वो तीव्रता से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर मैं बात करूं, कई स्थानों पर चरम वर्षा की घटनाओं की वृद्धि हो सकती है और कहीं कहीं तो सूखा मालूम पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि कैसे हम बचा सकते हैं अपने ग्रह को। तो पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, प्लास्टिक से अपनी पृथ्वी को बचाएं, और आने वाले समय में जितने भी लोग हैं जिनसे कि उम्मीदें की जा रही हैं, उम्मीदें किनसे की जाती हैं, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज मतलब लैंड एरिया। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लैंड एरियाज हैं जहाँ पे हम पेड़ लगा के अपने देश को, अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं। और अगर मैं गर्मी के मौसम की बात करूं तो हीट वेव के लिए भाई सबसे बड़ा कारण जो है ये वायुमंडल में बदलती ऊष्मा की किरणें जो कि तेज़ी से पृथ्वी की तरफ आ रही हैं और पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ा रही हैं। और इसके पीछे कारण है हमारा बढ़ता हुआ प्रदूषण, पेड़ पौधों की कमी जो कि सूरज की किरणों को काफ़ी हद तक यूज़ कर लेती थी, यूटिलाइज़ कर लेती थी और धरती को गर्म नहीं होने देती थी। तो धरती की जो ऊष्मा है वो तो बढ़ेगी जब पेड़ नहीं होंगे इन वेव्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो पेड़ लगाइए, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करिए, प्रदूषण कम करिए। और देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट से भी मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि पृथ्वी को बचाना है ना कि सिर्फ चलाना है। आप लोग सिर्फ, मतलब मैं कहूँगी कि अपने बिजनेस को चलाने के लिए परेशान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस को चलाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पृथ्वी को बचाना। जिएंगे तभी तो इतने सारे इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, इतने सारे गैजेट्स यूज करेंगे, नहीं तो क्या ही करेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारे पृथ्वी की, लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगी मलेरिया की। जी हाँ, मलेरिया नामक बीमारी जो है उसने बहुत सालों में बहुत लोगों की जान ली है, लेकिन आप सभी को पता है ये होती कैसे है। तो मैं थोड़ा सा मलेरिया पे भी प्रभाव, मतलब आज की शाम जो भी है इसमें आज लर्निंग बियॉन्ड जो क्यूरियोसिटी की बात हो रही है, तो लर्निंग वही है जो जो भी करंट चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में हमें पूरा ज्ञान हो। तो मैं मलेरिया के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि भाई मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से तो होता है, ये बात तो सही है, लेकिन मच्छर के ही काटने से बस नहीं होता है। मलेरिया जो है वो एक छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। चलिए, जिसको जिसको पता है आप जल्दी से मुझे आंसर करें, मतलब जल्दी से चैट रूम में आंसर करें। मैं चाहूँगी कि आप सभी आज जानें कि मलेरिया के पीछे का असली कौन गुनहगार है, किसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो सबको पता चलेगा कि मलेरिया नामक बीमारी लाने वाला है कौन। तो मैं दोस्तों को बताना चाहती हूँ कि भाई मलेरिया जो है वो एक ख़तरनाक बीमारी है, ठीक है। ये सबसे पहले तो हमारे रक्त पे प्रभाव डालती है। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग को मैं जागरूक करती हूँ मलेरिया के बारे में कि मच्छर के काटने से फैलती है। मच्छर जो है यहाँ पे वेक्टर का काम करता है, यानी कि संक्रमण करता है, ये फैलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मच्छर को हमें रोकना है। क्या करना है? मच्छर को जन्म देने वाले जो एरिया है, यानी कि पानी जहाँ रुकता है, जहाँ पे मच्छर ब्रीडिंग कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है, उस जगह को साफ सुथरा रखना है। पानी नहीं जमा होना चाहिए, मच्छरदानी लगा के सोएं, ठीक है। फुल बाजू के छोटे बच्चे हैं तो घर में फुल बाजू के उन्हें कपड़े पहनाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें, ठीक है। तो सफाई अगर होगी तो कोई भी बीमारी हमारे पास वैसे ही नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, और ध्यान रखते हुए थोड़ा सा खुद ही नहीं एक्टिव होना है, आसपास के लोग जिनको इसकी जानकारी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको जागरूक करना है आप सभी को। तो अगर साफ सफाई होगी तो निश्चित तौर पे मलेरिया क्या कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हमारे आसपास नहीं दिखाई देगी। तो सबसे पहले तो आप लोग को बता दूँ कि मलेरिया जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि मलेरिया जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम। ये दो ऐसे, मतलब कह सकते हैं, प्रोटोजोआ हैं जिनसे ये बीमारी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो प्रोटोजोआ है इसको ऐसे समझते हैं ना कि ये वो दोस्त है जो दो लोगों के घर रह के गुजारा करता है। मतलब इसने रेंट पे रूम नहीं लेना है, अपना रूम नहीं लेना है, दो लोगों के घर रह के अपनी ज़िंदगी चलानी है। मतलब कि ये आधी ज़िंदगी अपनी मच्छर के मुंह में बिताता है, ठीक है, उसकी गट में जाता है थोड़े दिनों के लिए, फिर बाकी आके हमारी लीवर की सेल में रहता है और वहाँ जाके हमारी RBC को नुकसान पहुँचाता है, जिसकी वजह से हमारी प्लेटलेट का काउंट बढ़ जाता है, हमें
बहुत ठंड लगती है, चिलिंग फीलिंग आती है और साथ में फीवर बहुत ज़्यादा आता है, सर में दर्द भी हो सकता है, ठीक है। तो कई सारे लक्षण हैं और ये जो है ये मच्छर के मुंह में अपना रिप्रोडक्शन पूरा करता है और हमारे अंदर भी रिप्रोडक्शन करता है, मतलब ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह से करता है, यानी कि बड़ा खतरनाक जीव है, दो लोगों की ज़िंदगी को ख़राब कर डालता है। फिलहाल हम इसको कुछ ही नहीं बोल सकते भाई, ये तो भी अपना जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। तो इनको भी जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात करनी मच्छर से और एक इंसान से, तो इनको मुलाकात करने ही नहीं देंगे हम, पानी रुकने ही नहीं देंगे, हमारे पास इनको आने ही नहीं देंगे। और सबसे खास बात कि हर मच्छर से नहीं होता है, लेकिन अब आप सोचेंगे हर मच्छर से नहीं होता तो और जमीना क्या गारंटी वो मच्छर मेरे घर आए नहीं आएगा वो? नहीं भाई, मच्छर का कोई पहचान तो आप कर नहीं पाएंगे, लेके बैठे तो है नहीं कि आप टेस्ट करें कौन सा मच्छर कहाँ है कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको मच्छर को ही पैदा होने से रोकना है, ठीक है। तो मैं एनोफिलीज नाम का मच्छर है और ये एक मादा मच्छर है, यानी कि फीमेल मॉस्किटो है। अब फिर कहेंगे कि लड़कियाँ जो है ना परेशानी करती हैं, तो ये बात हो गई, ठीक है। तो इस बात के बाद मैं आगे बात करना चाहूँगी आप लोगों से एक और ख़ास चीज़ की, जिसके बारे में आप सभी जानने के लिए हैं बिल्कुल परेशान। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन गर्ल्स सिटी 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और आप सुन रहे हैं शो विज्ञानशाला, लर्निंग बियॉन्ड क्यूरियोसिटी। और अभी थोड़ी देर में बात करेंगे आपसे बहुत सारी।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: अरे सुना?
0: क्या?
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
0: वाओ!
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945 583 5346।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: सो वापस से आप सभी का स्वागत है भाई। और जैसे कहते ना कि आज मैं नॉलेज का भंडार लेके आया हूँ आपके लिए। बिल्कुल। तो देखिए, जानेंगे नहीं तो क्यूरोसिटी कैसे नहीं मतलब आप लोग को परेशान करेगी। तो जानकारी रहेगी तभी और क्यूरोसिटी आएगी और हम पहचान पाएंगे और खोज करेंगे कि भाई एनोफिलीज मच्छर कौन है, क्यूलेक्स कौन है, और दोनों को पकड़ के उससे पूछेंगे क्यों, आखिर क्यों क्यों हमें तुम काटते हो। क्यों नहीं तुम वेजिटेरियन हो जाते हो। वेल, आगे बात करेंगे भाई, उसका टेस्ट, उसको खून अच्छा लगता है। तो विज्ञानशाला में आज बात हुई मलेरिया की और हमने बात की हमारी प्यारी मदर अर्थ की, और अब मैं बात करने वाली हूँ आयुष्मान भारत दिवस की। मतलब आप कहेंगे ना आज आरजे बिना एकदम पैकेज, यस आज बहुत कुछ बताना है मुझे आपको। जैसे कहते ना कि अब बहुत सारे लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होंगे, हो सकता है इसमें से कोई सवाल आके आपका दिमाग पंचर करने का सोचे, लेकिन आपको पहले से जानकारी है और आपका दिमाग पंचर हो ही नहीं पाएगा। तो चलिए, 30 अप्रैल को मनाते हैं हम सभी ये दिवस, और ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट डे है। क्यों इम्पॉर्टेंट है चलिए जानते हैं। तो पहले बताऊँ, पूरे देश में 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस, और आप लोगों ने आयुष्मान कार्ड वार्ड भी बनाया होगा ना, तो आज जानकारी पूरी दूंगी। तो एक ऐसा दिन जिसका मुख्य उद्देश्य है समाज में जो वंचित मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभता से पहुँचाने की और गुणवत्ता पूर्ण सुविधा, मतलब देखिए सुविधा एक होती है गुणवत्तापूर्ण सुविधा, वो पहुंचाने को बढ़ावा देने के लिए मतलब और मोटिवेट करने के लिए ये दिन बनाया गया। और ये दिन सबसे पहले 2018 में शुरू किया गया, ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, ठीक है। तो ये दिवस मनाया जा रहा है और इस दिवस का जो उद्देश्य है वो समझिए कि 12 करोड़ से अधिक जो गरीब और संवेदनशील परिवार हैं, सेकेंडरी या कह सकते हैं कि माध्यमिक वर्ग के जो लोग हैं, या तृतीयक यानी कि टर्शरी वर्ग के लोग जो लोग हैं, जिनको देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने के लिए कभी भी कोई मतलब आर्थिक आवश्यकता हो तो वो परेशान ना हो, तो उन्हें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है, ठीक है। और स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र इसके लिए बनाए जाते हैं, और इसकी योजना के तहत जो है ये केंद्र बनते हैं जिसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, गैर संक्रमक गैर संक्रमक रोग जो हैं उनको घरों के पास लोगों की जो कहते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट जानकारी उपलब्ध कराना, और पूरे देश में स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना, सबसे खास इम्पॉर्टेंट यही इनका उद्देश्य है कि सिर्फ इलाज ना हो, जब तक कि आप स्वस्थ ना हो जाओ, वेलनेस ना आपको आ जाए, तब तक आपको वो मतलब आश्वासन के साथ आपका इलाज होता रहे, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूँगी वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं, ठीक है। कैसी घोषणाएं? 2024 से 2026 के बीच में ये घोषणाएं की गई हैं। 70 वर्ष की आयु तक के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी आय की परवाह किए बिना योजना के तहत 5 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। क्योंकि देखिए 70 साल का इंसान जो है वो स्वास्थ्य तो उसका इतना साथ नहीं देगा कि वो कुछ कर सके। हाँ, बहुत सारे लोग काम करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं, तो उनके लिए है ये, ठीक है। अगला है आयुष्मान वय वंदना कार्ड, ये भी बनता है इसी के अंतर्गत। 70 से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिकों का जो कहते हैं ना डेटा है उनको आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाया जाता है, जो कि लोगों के एज के अकॉर्डिंग लागू किया जाता है, और उनके परिवार में जितने भी 70 वर्ष से कम आयु के सदस्य हैं उन सभी को एक कवरेज के लिए साझा नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी 70 के अबव हैं वही ऐड किए जाएंगे। अब मैं बात करना चाहूँगी कि इसमें इम्पॉर्टेंट किन लोगों को, मतलब किनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इस योजना या इस दिवस के, जो कहते हैं ना कि पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए किसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। खास तौर पे इस योजना का फ़ायदा मिलता है कैंसर, हृदय रोग, न्यूरोसर्जरी और ऐसे कई गंभीर जो बीमारियाँ हैं उन सबको मिला के लगभग 70,000 से अधिक एम्पल, जो कहते हैं ना सूचीबद्ध अस्पताल हैं, जिनमें इन सबको कैशलेस और पेपरलेस इलाज करने की सुविधा दी जाएगी। मतलब आपको कोई पेपर नहीं करना है, अगर आपको बीमारी है आप सीधे जाइए, आप जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन है उसको कराइए और शुरू कर दीजिए अपना इलाज। तो इतनी ज़्यादा सुविधाएं अगर मिल रही हैं आपको एक ही छत के नीचे और एक ही सुविधा से, तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है। और हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी अगर हो तो कई बार हमें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने जो बताया आपको कि फिर से आप लोग जान लीजिए कि आपको अगर इसमें आयुष्मान कार्ड बनवाना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, कोई मान्य सरकारी या सरकार का दिया हुआ कोई भी कार्ड, आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो या कोई ऐसी आईडी जो, इसके अलावा आपका जो होता है क्या कहते हैं, वोटर आईडी के साथ साथ आपके बहुत सारे ऐसे पर्सनल कार्ड्स होती हैं जो आपके आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसके साथ आपका आ जाता है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र में जैसे आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यूटिलिटी बिल, वोटर आईडी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, आपका निवास का प्रमाण पत्र आपको प्रमाणित करने वाला कुछ होना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक जाति गणना यानी कि SECC प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। हालिया पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। राज्य अथवा केंद्र द्वारा निर्देशित अन्य दस्तावेज भी जो आपके साथ लागू होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। अच्छा, अब आपके पास ये होगा कि क्या BPL वाले भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, BPL वाले लोगों के लिए ही है ये, बिलो पावर्टी लाइन वाले। ठीक है, प्रतिवर्ष आपको 5,00,000 रुपए का जो कवरेज मिलेगा, अगर आपके घर में कोई बीमार होता है 5,00,000 तक का खर्चा सरकार उठाएगी। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी मौजूदा बीमारियां हैं उन सब का इलाज इसके अंतर्गत किया जा सकता है। और आपको क्या करना है, आवेदन जो है वो पोर्टल पे जाके आपको करना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको सारी चीज़ें सबमिट करनी पड़ेंगी, अपना जितना भी डेटा है वो सारा सबमिट करना पड़ेगा। और जो इसका कहते हैं ना कि डेडलाइन है जो भी चीज़ों की, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें अगर ऐसे मिल जाएं, और सुविधाएं बहुत सारी हैं, हमें जानकारी का अभाव होने की वजह से पता ही नहीं होता। तो इस दिन को मोटिवेट करते हुए 10 करोड़ परिवारों को 5,00,000 का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा कवरेज अगर मिल रहा है तो क्यों ना उन 5,00,000 लोगों में वो सारे लोग भी हों जो मुझे सुन रहे हैं, जिनकी मतलब जो क्रेडिबिलिटी है, जो चाहते हैं कि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और उन्हें ये सुविधा मिल जाए। भाई देखिए, बीमारी और कह सकते हैं परेशानी कभी भी इन्फॉर्मेशन देके पहले से नहीं आती, तो हम अगर पहले से तैयार रहेंगे लड़ने के लिए तो हो सकता है कि हमारा हौसला कहीं भी ना डगमगाए। ठीक है, कई बार क्या होता है हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और घुटने टेक देते हैं बीमारियों के आगे, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना ABY समाज के जो जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं उन सब के लिए है। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं है, अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, साल 2008 में UPA सरकार द्वारा लॉन्च किए स्वास्थ्य बीमा यानी कि NHBY को भी आयुष्मान भारत योजना में मिला दिया गया। एक ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप सभी को चीज़ों की और डीप जानकारी चाहिए तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा वितरण के क्षेत्रीय और संकुचित दृष्टिकोण से हटाकर एक व्यापक और अपेक्षित स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ाने का एक छोटा सा पहलू है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। इसका उद्देश्य जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट हो और जितना भी मतलब जितना हो सके वो सरकार की तरफ से, आप ये ना सोचें कि हमारा कौन साथ देगा, आपका साथ आपका कार्ड देगा। ठीक है, इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में कच्चा मकान में रहने वाले परिवार हैं, परिवार में किसी वयस्क जो 16 से 69 साल के उम्र के नहीं हैं। परिवार की मुख्य एक महिला का होना जरूरी है। परिवार में कोई दिव्यांग का होना, अनुसूचित जाति, जनजाति, भूमिहीन व्यक्ति, दिहाड़ी मजदूर, वो सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के बेघर व्यक्ति, निराश्रित, दान या भीख मांगने वाले, आदिवासी, कानूनी रूप से मुक्त, बंधुआ आदि स्वतः आयुष्मान योजना का जो है वो लाभ उठा सकते हैं। और वो स्वतः ही मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली उनका नाम, कहते हैं ना कि इनका नाम आ गया, तो उनका अगर इसमें आ रहा है नाम, कैटेगरी में जा रहे हैं वो, तो वो ऑटोमेटिकली कर दिए जाएंगे। तो ऐसी सुविधाएं जब मिलती हैं तो हमें भी लाभ उठाना चाहिए। और देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डिस्कशन भी करने बैठ जाए ना तो पूरा दिन पूरी रात कम पड़ जाएगी। ऐसी ऐसी समस्याएं लोगों के पास होती हैं, बहुत पुरानी बीमारियों से लोग झेल रहे होते हैं क्योंकि उन्हें सही इलाज सही समय पे नहीं मिलता। बहुत सारे लोग मतलब मैं एक बीमारी की बात करूंगी कि एक बीमारी है जिसका नाम है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। पहले इंडिया में बहुत फैला था लेकिन इसका इलाज जब शुरू किया गया तो जड़ से ये बीमारी ख़त्म हो गई। और अब आपको पता है कि बहुत सारे लोग टीबी का इलाज जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराते हैं और लाखों रुपए देते हैं। मैं बताऊं, कुछ 1,000 या 500 रुपए का खर्चा लगता है दवाइयों का, वो भी मुझे लगता है कि बहुत बहुत रेयर वाली जो दवा होगी वो बाहर मिलेगी, बाकी आपके आने जाने का जो खर्च है हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जाने का, वो बस जोड़िए। इसके अलावा टीबी का मुफ्त इलाज होता है सरकारी अस्पतालों में। तो बिल्कुल आप जानकारी के अभाव में हैं अगर आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही, तो प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़िए, हम लोग को सुनिए। और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चैट रूम में हमें या हमारी मेल आईडी पे या हमारे इंस्टा अकाउंट पे आप मैसेज कर सकते हैं एंड डेफिनेटली हम आपकी मतलब उन बातों पे चर्चा करेंगे और आपकी जानकारी जो है ना संपूर्ण रूप से आपको दी जाएगी। तो अब आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, आप सुन रहे थे शोबे ज्ञानशाला आरजे बीना के साथ अपने अंदाज में, यानी कि लर्निंग बियॉन्ड क्यूरियोसिटी।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
4: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
5: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
4: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें, तथा संतुलित, हल्का व नियमित भोजन करें।
5: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
4: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन न करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबराहट हटाने पर डॉक्टर को दिखाएं।
5: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
4: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे बीना के साथ।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
7: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
6: और जेंट्स के लिए,
7: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
7: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री

0: जी हाँ, जब कोई प्यार करता है तो वो कभी भी ना मौसम देखता है, ना बाहर देखता है, ना दिन देखता है, ना रात देखता है। वो बस ये सोचता है कि कैसे सामने वाले को अपना साथ दूँ। साथ उसका देना, साथ उसका पाना एक खास समय की शुरुआत होती है। ऐसा लगता है कि अभी तक जो हम जी रहे थे वो एक अलग ही दुनिया थी, पर जब कोई हमारी ज़िंदगी में अपना आता है, खास आता है, तो हमारी ज़िंदगी का जो कहते हैं ना कि दौर है, वो बदल सा जाता है। तो उस दौर को बदलते हुए हम सभी ने कभी ना कभी तो महसूस किया ही होगा। आप लोग बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि प्यार ने दस्तक दी और उसके बाद से हमारा रूटीन ही चेंज हो गया, हमारा मतलब जीना मरना किसी के लिए एकदम कमिटेड हो गया, और ऐसा लगने लगा कि यार लाइफ इज नाउ बिगिन, मतलब अभी शुरू हुई है ज़िंदगी, और उसके साथ बिताया हर पल ऐसा लगता है कि दुनिया का बेस्ट टाइम था और है, और हम उसे दोबारा जीने, दोबारा तिबारा बार बार जीना चाहते हैं। सो वन एंड ऑल एवरीवन, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं यहाँ पे और इस शाम की जो कहते हैं ना विटनेस बनने जा रहे हैं, आप सभी का स्वागत करती है आरजू बीना। आपका शो यानी कि गोंडा मैसेज मसाला अब शुरू हो चुका है, एंड यस अभी बज चुके हैं 6:11, और देखिए देखते ही देखते मुझे लगता है कि हम सभी को एक चीज़ की तो आदत है ही, यानी कि लव स्टोरीज सुनने की और लव स्टोरीज़ को विटनेस करने की, और ख़ास तौर पे अगर वो लव स्टोरी रियल हो, हमारे आसपास के किसी इंसान की हो, तो यार मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि इस मज़े को हम लोग और फील करेंगे आज। आज हम लोग समझेंगे कि प्यार क्या है, इश्क बुलावा कैसे आता है, कैसे सदियों तक एक दूसरे के साथ जीने मरने की हम कस्में खा लेते हैं, कैसे आहिस्ता आहिस्ता किसी के साथ होने का एहसास हमेशा से परमानेंट लगने लगता है, मन करता है कि ये एहसास कभी ना ख़त्म होने वाला एहसास बन जाए। और आई थिंक हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो इस एहसास को जीना नहीं चाहता, या कोई ऐसा हो जो इस एहसास के लिए हर कुछ वो ज़रूरी है जो उस एहसास को पाने के लिए कर गुजरना नहीं चाहता। तो चलिए हम भी चलते हैं इस एहसास में आप लोगों को कुछ घंटों के लिए ले चलने, आप लोग को प्यार की इवनिंग की कहते हैं ना विटनेस कराने। आपने फ्लायर देख लिया होगा कि आज की लव स्टोरी एक रियल इंसान, मतलब एक ऐसे इंसान की है जिसने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी तो पहचान बनाई ही बनाई, लेकिन प्यार का जो कहते हैं ना कि परीक्षा थी वो UPSC से कम नहीं थी उनकी, उसमें भी अपना मतलब कहते हैं ना 100% दिया, चाहे वो हमारे मेल कैरेक्टर हो चाहे वो फीमेल कैरेक्टर हो। तो जी हाँ, आप लोगों ने जैसे कि फ्लायर में देखा, वैसे मैं आप लोग की थोड़ा सा IQ चेक करना चाहती हूँ, किसने फ्लायर में देख लिया कि आज स्टोरी किसकी सुनाऊंगी मैं। और गुड इवनिंग मनी, गुड इवनिंग कमल नयन जी, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आगे भी विटनेस करते हैं और पहले ये म्यूजिकल ब्रेक एंजॉय करते हैं, चाहते हैं कि सारे लोग आ जाएं और फिर शुरुआत हो आपके मतलब हमारे प्यार की कहानी की। और आप जानते हैं कि आपके साथ मैं नहीं हूँ, आपकी अपनी फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहां योग ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है, वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और वहां एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा

अगेन आप सभी का स्वागत है एंड यस वेरी वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। और प्यार का पैगाम लेके आज मैं एक प्यारी सी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। और सच्ची बताऊँ ना तो ना सिर्फ ये कहानी है, ये है आप लोग के लिए एक छोटा सा मैसेज कि सिचुएशन कोई सी भी हो, कहते हैं सिचुएशन कोई सी भी हो, अगर हमारा हाथ थामने वाला हाथ मजबूती से पकड़े तो वी कैन रीच माइल्स एंड माइल्स विदाउट थर्स्ट, विदाउट फूड, बिना प्यास बिना भूख के हम मीलों चल सकते हैं। तो आज लव स्टोरी स्पेशल डे है, ट्यूसडे है और देखिए ज्येष्ठ माह भी शुरू हो गया है और गोंडा शहर में आज भी जगह जगह लोग भंडारे करवा रहे हैं बहुत अच्छी थॉट के साथ, लोगों को ठंडाई पिला रहे हैं। सबसे अच्छा तो मुझे ये अच्छा लगता है ना कि पानी पिलाना लोगों को, एंड इस गर्मी में इस बढ़ती धूप में अभी भी मौसम बिल्कुल बदलने को तैयार नहीं है। जेठ है जैसा कि पता है आपको कि हमारे यूपी बिहार में कहते हैं जेठ के सामने पल्लू करके चलना चाहिए औरतों को, तो फिलहाल जेठ सच में धूप एकदम इतनी टाइट है कि किसी के सर से ना कोई कपड़ा हट रहा है ना मतलब मौसम बदल रहा है। तो बात फिर से वापस से आते हैं प्यार के पास। और प्यार एक ऐसा एहसास है जो बिना आवाज़ के किसी भी दिल की धड़कन को बढ़ा सकता है, या बिना किसी इंस्ट्रूमेंट में मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ के हम किसी की धड़कनों को महसूस कर सकते हैं। कभी मुस्कान बन के आता है तो कभी यादों की बारिश बनकर आंखों में उतर जाता है। और आज की शाम मेरे प्यारे लिसनर्स, आप लोगों को बताऊँ, ये प्यार के नाम की शाम है। जिन्होंने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो उन लोगों के नाम ये शाम होने वाली है। आज किसी की याद में हम मुस्कुरा लेते हैं, चलो चलो अपने पहले इश्क को फिर जी लेते हैं। कहते हैं मोहब्बत की राह पे चलना आसान नहीं होता, इसमें खुशियाँ भी होती हैं, इंतज़ार भी होता है और कभी कभी जुदाई भी होती है। तो आज की कहानी आपके दिल को छू लेगी, इसमें आपको विश्वास, संघर्ष और साथ ही मैं बताऊँ ना सच्चे प्यार की ताकत भी मिलेगी कि मतलब कैसे प्यार में अगर सच्ची ताकत हो तो आप क्या क्या कुछ नहीं कर सकते। तो आज इस कहानी की शुरुआत

वैसे आप लोग को बता दूं, आज की कहानी है शारिब हाशमी और नसरीन की, जो कि अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं शारिब। शारिब की अगर बात करूं, द फैमिली मैन में इनका रोल इतना ख़ास था कि पूरी की पूरी फिल्म को इन्होंने ख़ास बना दिया था। तो अगर आपने मूवी फैमिली मैन देखी है तो आपको ये इंसान यानी कि शारिब हाशमी तो बिल्कुल भी नहीं भूला होगा। तो आज उन्हीं की लव स्टोरी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ। और मैं ये बताना चाहती हूँ यार, अगर आपके मन में आपके प्यार को लेके ज़रा सा भी भरोसा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अलग नहीं कर सकती। और कोई भी सिचुएशन आ जाए और अगर आपको सच्चा प्यार मिला है तो प्यार आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो चलिए इस गाने को सुन के शुरू करते हैं कहानी। लेकिन उससे पहले आप लोग चैट रूम में अपनी हेलो हाय दिखा दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि सारे लोग आ गए और कहानी की शुरुआत आराम से, प्यार से, तसल्ली से और मोहब्बत के साथ की जाए।

जी हाँ, फैमिली मैन मूवी अगर आपने देखी है तो आपको जेके तो बिल्कुल याद होंगे और उनकी एक्टिंग दमदार जो पूरी की पूरी फैमिली मैन को क्या बना देती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि शारिब हाशमी का जो करियर था वो स्टार्टिंग से बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ, फैमिली मैन ने उन्हें एक बड़ी पहचान दी। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि इनके प्यार की कहानी भी हर प्यार करने वाले की तरह कॉलेज से शुरू हुई। यानी कि शारिब जिनसे मोहब्बत करते थे वो कोई और नहीं, वो उनकी कॉलेज मेट ही थी। कहते हैं ना कि प्यार को अगर दो बार अगर आपको लगे, मौका लगे कि मतलब आपके प्यार को आपने किसी बातें सुन के या गलत फहमियों में आपने प्यार को इग्नोर कर दिया, पर अगर आपको दूसरा मौका मिल रहा है कि एक बार फिर से अपने प्यार को जांच परख लें, तो बिल्कुल उस दूसरे मौके को ज़ाया मत होने दें, क्योंकि दूसरे मौके को मौका देना आई थिंक ज़रूरी है, ना कि आने वाले समय में रिग्रेट करना या पछतावा करना, अरे यार काश मैं एक बार फिर से उससे बात कर लेता या काश मैं एक बार उससे फिर से मिल लेती, शायद बैठ के बातें सही हो जाती, ये रिग्रेट नहीं करना पड़ता। और हर कोई कहता है कि सच्चा प्यार आसानी से नहीं मिलता, पर अगर मुश्किलों से इम्तिहान के बाद वो प्यार मिल जाता है ना, सच बता रही हूँ, दुनिया साथ छोड़ देगी, वो प्यार आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो आज की कहानी, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, द फैमिली मैन के मशहूर अभिनेता शारिब हाशमी की है और उन्हीं की पत्नी नसरीन की है, जिनसे उन्होंने बहुत प्यार किया। और उनके प्यार को महसूस करके मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर प्यार हो ज़िंदगी में तो ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो फिर ना हो। बात पहले प्यार की भी है और ये बात सही है यार, पहला प्यार हमेशा पहला प्यार होता है, पहले प्यार की जगह कोई ले नहीं सकता। तो कॉलेज का समय था, नहीं नहीं मतलब जब भी हम कॉलेज में जाते हैं तो समझ लीजिए एक दौर गुजार के, मतलब स्कूल टाइम का टाइम निकाल के फिर हम कॉलेज में पहुँचते हैं, और कॉलेज में चाहे वो सीट पे बैठने वाला हमारा दोस्त हो, चाहे कैंटीन में चाय पीने वाला फ्रेंड हो, सब अलग अलग होते हैं और सबके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने में टाइम लगता है। नई नई दोस्तियाँ बहुत होती हैं, नए नए सपने होते हैं और इन्हीं सपनों में कुछ खास सपने भी सजाए जाते हैं, और वैसे ही शारिब ने नासरीन से मिलने के बाद अपने सपने सजाने शुरू कर दिए। इनकी पहली मुलाकात कॉलेज में हुई, दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। लगभग एक साल तक दोनों इस रिश्ते को खूबसूरती से निभा रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि कॉलेज भी शुरू शुरू में ही शुरू हुआ था। पर कहते हैं ना कि वो प्यार की राह ही कौन सी जिसमें कांटे नसीब ना हो। तो इन्होंने अपनी मतलब एक साल कंप्लीट करके अपने प्यार की पहली एनिवर्सरी जैसा मतलब कुछ सेलिब्रेट करना चाहा, और ये बात नसरीन के फैमिली वालों को पता चल गई कि नसरीन किसी लड़के से प्यार करती है। फिर ख़ास तौर पे नसरीन के भाई ने आके हमारे हीरो स्टोरी के हीरो यानी कि शारिब को आके बहुत धमकाया। शारिब के साथ प्रॉब्लम ये थी ना कि शारिब की हाइट बहुत लंबी है, शारिब की लंबी हाइट को देखते हुए इसके नसरीन के भाई ने आके धमकाया कि मेरी बहन से दूर रहो, और अभी तुम्हारी क्या ही मतलब क्या कर रहे हो, तुम्हारा ना कोई करियर है ना कुछ। और ऐसे में उन्होंने सीधे मतलब शारिब को धमकी दे दी, और धमकी दे के ये कहा कि भाई दूर रहना, मतलब डिस्टेंस बनाने के लिए अक्सर फैमिली वाले बोल देते हैं, और इतनी दूरी बना के रखना कि हाँ इसके कॉलेज के 6 महीने ख़त्म होने के पहले ही हम इसकी शादी तय कर देंगे, कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही हम इसकी शादी करवा देंगे, और अभी तुमने कुछ हासिल नहीं किया है, और काफ़ी डराया वगैरह। और इसी के साथ इनका रिश्ता यहीं ख़त्म होने की दादत पे था, और लग रहा था कि अब सब कुछ ओवर हो चुका है, ओवर एंड आउट वाला सीन। तो आगे ओवर एंड आउट होगा, फिर इसके बाद मिलेंगे कैसे, इन सबको समझने के लिए इस गाने को सुनते हैं, चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गाना।

जी हाँ, तो ये था प्यार का सिलसिला। और आगे आपको क्या लग रहा होगा कि क्या प्यार वहीं छूट गया, क्या प्यार में गांठ पड़ गई थी? लेकिन एक चीज थी, नासरीन के लिए ये जो दौर था काफी ज्यादा कठिन था। उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, उन्हें लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। शायद ही वो दिन आए कि शारिब इनके पास वापस आएंगे। और देखते देखते उन्होंने मैं उम्मीदें छोड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि शारिब पूरी तरह से डर चुके थे। ऐसा उन्होंने अपने किसी पॉडकास्ट में बताया कि शारिब इस सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा डर से गए थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से नासरीन को उसके परिवार वाले टॉर्चर करें। और नासरीन ने इस ब्रेकअप को एक्सेप्ट कर लिया था, वो बहुत ज़्यादा भावुक थी। और शारिब ने भी इनसे बिना पूछे रिश्ता ख़त्म कर लिया। इन्होंने बहुत सारी मन्नतें मांगी, वो हमेशा सोचती थी कि काश वो दिन वापस आ जाए और इनका इंतज़ार कभी ख़त्म हो जाए। समय बीतता गया, शारिब तो अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ने लगे थे और उन्होंने आगे किसी और से सगाई भी कर ली थी। शारिब ने कहा कि इनकी जो सगाई हुई उसको 1.5 साल हो चुका था और उसके बाद वो नासरीन के पास वापस गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई है जो दुनिया में उनकी के इमोशन को सिर्फ समझता है। उन्हें ये हमेशा से लगता था कि उनके इमोशंस को कोई नहीं समझता सिवाय नासरीन के। उन्हें यही लगता था कि मेरे आंसुओं को या मेरे सर को कंधा सिर्फ एक इंसान का मिलना चाहिए, वो नासरीन का है। खास जो वजह थी उनके रिश्ते को टूटने की, वो थी सामाजिक और पारिवारिक आपत्तियां। उन्हें लगता था कि दोनों के बीच में सामाजिक समानताएं नहीं है, दोनों का मतलब कास्ट अलग अलग है। तो इस रिश्ते में उम्मीदें जब खत्म हो गई थी, कहते हैं ना जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं वो वक्त की धूल से मिटते नहीं, फासले चाहे कितने भी बढ़ जाएं, सच्चे एहसास कभी बिछड़ते नहीं। और अब वही समय आ चुका था जब शारिब ने अपनी सगाई तोड़ने का डिसाइड कर लिया था। 1.5 साल बीत चुका था उनकी सगाई को और इस समय उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली कि वो किसी के साथ खुश नहीं रह सकते सिवाय नासरीन के। और उन्होंने अपनी सगाई तोड़ दी और वापस उसी कंधे को ढूंढ लिया। और प्यार का दूसरा अध्याय, यानी कि प्यार को अपने दूसरा मौका दिया। मतलब एक लड़का जो सगाई तक कर ले रहा है, वो सगाई तोड़ के वापस अपने प्यार के पास जा रहा है। इसका मतलब ये है कि प्यार कुछ ज़्यादा ही सच्चा है। गुड इवनिंग सविता जी, कैसी हैं? शायद ही कोई ऐसा लड़का होगा जो मतलब समाज को सोच के या कुछ भी सोच के इंसान वापस नहीं जाएगा कि यार मेरी तो सगाई हो गई, अब मैं क्या करूँ। 1.5 साल बीत भी चुका है, हो सकता है नासरीन मुझे भूल गई हो, बहुत सारे विचार आते हैं। पर कहते हैं ना कि अगर हौसले पक्के हो तो हम मतलब रुकते नहीं हैं। और यही था दूसरा मौका। शारिब ने अपने पुराने दोस्तों की मदद ली और नासरीन तक फिर से पहुंचने की कोशिश की। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपने रिश्ता तोड़ा और अगले दिन फिर घर पहुंच गए, हेलो हाय हंजी मेरे को वापस से आपसे प्यार करना है, ऐसा तो है नहीं। प्यार वापस पाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। दोनों में बात नहीं हो रही थी, इनके दोस्तों ने मदद की और वापस से इन दोनों के बीच में बात हुई। नासरीन ने साफ शब्दों में कहा कि अगर वापस आना तो सिर्फ शादी के लिए। अब ये कोई कॉलेज वाला प्यार नहीं था, ये जिम्मेदारी, भरोसे और भविष्य का फैसला था। मतलब नासरीन इस समय थोड़ा सा ये सोच चुकी थी कि या तो आर या तो पार, मैं ऐसे डेलमा वाले रिलेशन में नहीं रहूँगी कि हम एक दूसरे के बारे में बस एक दूसरे के लिए सपने देखते रहो और कोई आए और हमारे रिश्ते को तोड़ के चला जाए। परिवार को भी फिर से मनाना आसान नहीं था, आर्थिक अस्थिरता अभी भी बनी हुई थी। और दोनों ने हार नहीं मानी, आखिरकार परिवार राजी हो गया, दोनों एक दूसरे को जीवन साथी बनाने जा रहे थे। और फाइनली उन्हें ये लगने लगा था कि हमारे प्यार ने एक जंग जीत ली है, हम लोगों ने सच में बहुत बड़ा काम किया है। इस शुरुआत से दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे।
जब नासरीन से वापस दोबारा प्यार पाने की कोशिश की गई। नासरीन उस समय 24 साल की थी और उनके घर में 24 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी, तो उन्होंने ये चीज़ बहुत क्लियर शारिब से कही कि अब सीधे या तो शादी होगी या फिर हम अलग हो जाएंगे। आर्थिक स्थिति जब किसी की मजबूत नहीं होती तो बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। शारिब कहते हैं जब वो नासरीन के पास वापस गए थे तब उनकी सैलरी मात्र 15,000 रुपए थी। शारिब ने नासरीन से पूछा कि अगर तुम हमारे रिश्ते के साथ जीना चाहती हो तो ये 15,000 भी काफी है। काफी उतार चढ़ाव आए, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे शारिब की हाइट हो। शारिब की हाइट काफी ज्यादा अलग थी अगर बात करें नासरीन से, तो फिर भी दोनों लोग काफी एक दूसरे को मनाते हैं और दोनों एक दूसरे के परिवार वालों को ये कहते हैं कि रहना हम दोनों को एक दूसरे के साथ है, आप हम दोनों के बीच में मतलब वो मत बनिए, दीवार मत बनिए। नासरीन कहती थी कि उनकी सास की एक करीबी दोस्त ने उनके रिश्ते को बहुत सपोर्ट किया था और परिवार को शादी के विरोध ना करने के लिए मनाया भी था कि भाई विरोध मत करो। दुर्भाग्य से ठीक एक हफ्ते पहले वो महिला कोमा में चली गई और उनका निधन हो गया। नासरीन ने बताया कि वो मेरी सास की सबसे अच्छी दोस्त थी। उस घटना के बाद उन्हें बेहद भावुक कर दिया और आखिरकार उनकी सास उनसे खुशी खुशी उन्होंने मतलब उनको अपना बना लिया। दोनों की सगाई हुई। सगाई के बाद शारिब की जो प्रोफेशनल लाइफ थी उसमें बदलाव आने लगे। उन्हें एमटीवी पे 25,000 रुपए प्रति महीने की सैलरी से नौकरी मिल गई। साल 2003 में दोनों ने शादी कर ली। कई साल की मेहनत के बाद जब शारिब ने द फैमिली मैन में बड़ी सफलता हासिल की तब जीवन में उनके सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी कर दी, और वो ऐसी चुनौती थी कि उस चुनौती के आगे दुनिया हार जाती। मैं और आप क्या चीज है, न कोई इंसान टिक नहीं सकता था उस चुनौती के आगे। चुनौती क्या थी जानेंगे इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

जी हाँ, जब उम्र की बात आती है ना तो कई बार हमें परेशान करने वाले मौके हमारी जिंदगी हमें दे देती है, और कुछ ऐसा ही हमारी नसरीन की लाइफ में होने वाला था। नसरीन की शादी 2003 में हो गई और ये लोग काफ़ी खुश थे। धीरे धीरे शारिब का भी करियर अच्छा हो रहा था और सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कहते हैं ना कि ज़्यादा दिन तक ज़्यादा चीज़ें ठीक नहीं चल पाती, कोई ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न भगवान ने भी प्लान करके रखा होता है। साल 2018 में नसरीन के मुंह में ओरल कैंसर हो जाता है, जिस वजह से पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है। आज नसरीन और शारिब की शादी को 23 साल हो चुके हैं, और 23 साल में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2018 में उनको ओरल कैंसर हुआ और अब तक वो 5 बार सर्जरी करवा चुके हैं। परिवार हौसला बन के सामने खड़ा है और परिवार से भी बढ़ के शारिब नसरीन का हाथ थामे उनके साथ साथ चल रहे हैं, उन्हें हर रूप में स्वीकार करके बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छा जीवन साथी ही कर सकता है। बात करें शारिब की, तो शारिब ने भी अपना जो वर्क फ्रंट है उसे अच्छा बना के रखा है। फिल्मिस्तान, बदमाशियां, तरला, हैप्पी पटेल, द फिल्मी मैन, द फैमिली मैन, सॉरी, इन सब में उन्होंने अपना काम किया और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। और हर दिन आप सभी से, हम सभी से दुआएं करने को कह रहे हैं, क्योंकि फिर से नसरीन के मुंह का जो कैंसर है वो एक्टिव हो गया। यानी कि अगर आपको सब कुछ मिल जाए, यानी कि आपको सोसाइटी में सबसे सपोर्ट मिल जाए, आपको जो कहते हैं ना इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी सही हो जाए, स्थिर हो जाए, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन कुछ है जो आपको तोड़ने के लिए बैठा है, वो है आपकी हेल्थ। तो इसलिए अपनी हेल्थ के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए और अपना बिल्कुल ध्यान रखिए। फिलहाल तो मैं ये कहूँगी हम सभी को मिलके नसरीन के लिए दुआएं करनी चाहिए। मैं चाहूँगी कि शारिब, जो कि हौसला बन के, उनकी ढाल बन के उनके साथ चल रहे हैं, वो उनके साथ हमेशा रहें और उनका साथ होना उनके इस कैंसर की जंग को जीतने में मदद करे। फिलहाल अगर बात करें तो दोनों के 2 बच्चे हैं और बहुत खुश फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है। तो प्यार ऐसा भी होता है, अगर आप चाहें तो दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे प्यार को जीता नहीं जा सकता या प्यार की जंग में आप जीत नहीं सकते। आप लोग बताइए, आपको नसरीन और शोएब की, यानी कि शारिब की कहानी कैसी लगी? मुझे तो इन दोनों की कहानी से ये इंस्पिरेशन मिली कि अगर आपको सच्चा प्यार मिल जाए ना, तो आगे कोई भी सिचुएशन हो आप उसका सामना कर सकते हो। और अगर आपके सच्चा प्यार है और आपको लगता है कि मौका मिलना चाहिए, सामने वाले को आप जानते हो या नहीं भी जानते हो, तो आपको अपने प्यार को दूसरा मौका, तीसरा मौका, चौथा मौका, अगर मौका दे सकते हैं तो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। लेट्स एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग। और आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ, जल्दी से चैट रूम में लिख के भेजिए कि आप लोगों ने इन लोग के लिए दुआएं की या नहीं। मैं चाहती हूँ मेरे सारे के सारे लिसनर्स नसरीन के लिए ढेर सारी दुआएं करें कि वो कैंसर की जंग में जीत के अपनी फैमिली के साथ अपनी प्यार की कहानी ऐसे ही लोगों को सुनाती रहें।

गाने को एंजॉय करते हुए मुझे आप लोग ये भी बताइए कि क्या आपके आसपास भी कभी आपने ऐसी लव स्टोरी सुनी या देखी है, तो आप कॉल करके अभी सुना सकते हैं मुझे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लाइव स्टोरीज से हमें जो इंस्पिरेशन मिलती है वो कहीं से नहीं मिलती। तो मैं चाहती हूँ अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप बिल्कुल शेयर करें। और अभी हमारे एक लिसनर ने मैसेज किया और उन्होंने कहा कि इन्हें बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी। तो चलिए आप लोगों से जानते हैं कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। सुरीना जी लिखती हैं कि इन्हें नासरीन की कहानी बहुत अच्छी लगी और आपकी दुआएं नासरीन के साथ हैं।

0: तो आप लोग की दुआएं हैं नासरीन के साथ, ये मुझे तो बिल्कुल दिख रहा है। और ऑफ कोर्स गुड इवनिंग डियर जाने मन, ओ माय गॉड, इतना रोमांटिक नाम देने के लिए शुक्रिया सविता जी, थैंक यू सो मच, आपकी भी दुआएं हैं। और इसी के साथ एक गाना मैं प्ले करना चाहती हूँ जो मेरी एक लिसनर है जो कि हमें सुनती है उत्तराखंड से, बहुत दिनों से डिमांड करी। और ये गाना मुझे हमारी नासरीन और इन दोनों की लव स्टोरी पे फिट होता भी दिख रहा है। तो चलिए, दुनिया दुश्मन बन जाए पर अगर आपको किसी का दुल्हन या दुल्हा बनना है ना, तो कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए सुनते हैं ये पुराना सा गाना जिसको सुन के पुरानी वाली वाइब्स एकदम जाग जाएगी जो कि सो रही थी। और आप कुछ अगर बेहतर सुन रहे हैं तो डेफिनेटली ज्ञान सिटी 9.6 एफएम के साथ आरजे पीना वाला शो यानी कि गुंडा मैजिक मसाला सुन रहे हैं।
1: बने तो बन जाए जमाना दुश्मन, बने तो बन जाए जमाना दुश्मन।
0: चलिए आप लोगों से सवाल कर लेती हूँ कि ये आवाज किस किस किस किस सिंगर की है।

वैसे आप लोग एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखिए नहीं, महसूस करिए। मैं महसूस कर रही हूँ कि सब लोग ज़्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं, और सच बताऊँ ना, मुस्कुराने से बेहतर कोई काम हो ही नहीं सकता है। मैंने कल भी बताया था कि यार कितनी भी टेंशन में बैठे हो और खुल के मुस्कुरा दो, उस समय के लिए वो टेंशन पता नहीं कहाँ चली जाती है, पेंशन लेने आई थिंक सो। तो फिलहाल ये बताइए, सारे लोग चाय पी रहे हैं और मेरे लिए चाय भी आ चुकी है, और मैं सोच रही हूँ एक कप चाय पी ही लेती हूँ। फिलहाल आप लोगों ने बताया नहीं कि आपके आस पास भी कोई ऐसी लव स्टोरी है जो पनप रही है या पनप चुकी है, या आपकी ज़िंदगी में भी प्यार ने दस्तक दी थी लेकिन आपने सुनी नहीं या दरवाज़ा लॉक कर दिया। आप लोग कुछ जानना चाहते हो, और ये गाना भी मेरा फेवरेट रहा है हमेशा से, आप लोग बताइए। आप लोग अपने हार्ट्स भेजिए जिससे मुझे पता चले कौन सा गाना कितना अच्छा आप लोग को लगा। तो इस गाने को आपके 10 में से कितने हार्ट्स मिलते हैं, चलिए सुनते हैं। राज कपूर श्रद्धा जी ने गाया है ये सॉन्ग, बिल्कुल सही सही जवाब।

भाई किसी का रूप सुनारा आपको दीवाना करे या ना करे, फिलहाल शाम को हम सभी को ये म्यूजिक कहीं ना कहीं सुकून जरूर दे देता है, दीवाना करे या ना करे। फिलहाल आप लोगों से मैंने एक सवाल किया था, आप लोगों ने जवाब अभी तक नहीं दिया। मतलब सवाल मेरा ये था कि आप लोग ये बताइए कि लॉक कर दिया, क्या लॉक किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पूरे 11 हार्ट्स की जगह हाथ दे दिया आपने। क्या बात है ना, सॉन्ग आप पर सूट कर रहा है ये वाला सॉन्ग। ओके, किस पे सूट कर रहा है, जैसे सूट करता है ना लोगों पे। गुड इवनिंग अनिल जी, गुड इवनिंग इम्तियाज, कैसे हैं आप, स्वागत है आपका आज की शाम है खास। तो शाम खास होने के साथ साथ मुझे आज ये भी याद आ रहा है कि यार भाई प्यार की बात हुई, और फिलहाल आप लोग बताइए कि आप लोगों ने भी कभी प्यार किया था। अच्छा ये बताइए किसको कब प्यार हुआ था ये तो बता दो एक बार, मतलब कॉलेज में, स्कूल में, बहुत आजकल तो ज़माना आ गया स्कूल में हो जाता है, नर्सरी में हो जाता है, जब पीजी में हो जाता है, तो प्ले ग्रुप में भी आजकल प्यार हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब प्यार करने की उम्र का जो कहते हैं ना कि वो जो दौर नहीं कह सकते, क्राइटेरिया या कह सकते हैं कि क्लास या एज सब बदल चुकी है, किसी भी उम्र में कभी भी प्यार हो सकता है, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी। तो यह लगाना ना सुने अगर हम लोग तो क्या बात है। तो जिसको भी लग रहा है कि यार अभी तो उम्र हो गई है प्यार नहीं करना चाहिए, तो मैं उन लोगों के लिए गाना बजा देती हूँ, उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि प्यार करना नहीं है, क्योंकि प्यार तो किसी भी उम्र में कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई गुनाह नहीं है जिसे करने के बाद आपके ऊपर क्राइम वाला वो लग जाएगा। ना ना ना ना, नेवर नेवर नेवर नेवर। और आज की कहानी तो मुझे सच्ची बता रही हूँ, सच्ची बहुत अच्छी लगी, और रियलिस्टिक चीज़ें ये थी कि कैंसर 5 बार और मतलब सर्जरी करवाने के बाद भी शारिफ का प्यार नहीं बदला। यहाँ देखती हूँ कि आज शादी हुई, 2 साल बाद वो डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स होने के बाद फिर दूसरी शादी हो गई, फिर वो भी मतलब बॉलीवुड प्यार की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ इधर उधर की प्यार की नहीं, बॉलीवुड में तो प्यार ऐसे ही हो रहा है। आज शादी, 2 साल बाद डाइवोर्स, वो क्रिकेटर थे उनका भी मतलब ऐसा ही मामला था, इसके बाद बहुत सारे, मतलब एक दो एग्जांपल नहीं, एग्जांपल लंबे चौड़े हैं। अभी हमारे आमिर खान जी भी तीसरी शादी करने जा रहे हैं, और मतलब क्या है, कैसे कैसी आप लोग की बॉन्डिंग है, या तो प्यार नहीं था या तो शादी में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ थी। आप लोग बताइए क्या आपको लगता है कि प्यार 2-4 बार कर लेना चाहिए, या एक बार जो किया उसको सच्चे मन से निभाना चाहिए। ओह वाह क्या बात है, बिल्कुल ठीक है, हमने भी बहुत बार प्यार किया था। ओहो क्या बात है, प्यार करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्यार को मौका कितनी बार आपने दिया। कभी आपके लाइफ में सिचुएशन ऐसी आई कि लगा कि हमारा प्यार हमसे दूर हो गया है कुछ गलतफहमियों की वजह से, क्या आपने दोबारा प्यार को मौका दिया या नहीं? होता ही नहीं है मैडम, तो एक बार दीपांशी आ जाओ, मैं थोड़ा सा प्यार करने के नुस्खे सिखा देती हूँ, और तब तक के लिए चलिए हम लोग इश्क को थोड़ा सा और समझते हैं। कहते हैं इश्क वो नहीं जो हर रोज़ जताया जाए, गौर फरमाइएगा जिन लोग को अपने इश्क से या अपने मोहब्बत करने वाले से शिकायतें रहती हैं। इश्क वो नहीं जो हर रोज़ जताया जाए, इश्क वो है जो हर हाल में निभाया जाए, चाहे कितनी भी दूरियां आ जाए दरमियां, फिर भी दिल से दिल का रिश्ता बचाया जाए। क्या बात है, तो चलिए इंजॉय करते हैं ये वाला गाना हर एज ग्रुप के लिए।

ये गाना सुन के ना बड़ा अच्छा सा फील होता है। फिलहाल मैं इस गाने के साथ साथ कुछ और चीजें भी आप लोग को एज अ नुस्खा बताना चाहती हूँ। हाँ, कुछ दिनों के लिए इम्तियाज जी, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को शॉक किया जाए। हाँ नहीं, मैंने कल ही बताया ना, मैं हाइबरनेशन पे गई थी, मतलब समर स्लीप पे गई थी। मतलब जब इंसान सोचता है ना कि कुछ दिनों के लिए गायब हो जाया जाए, और फिर वो गायब हो जाता है, फिर अचानक से आता है ना, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वही मैं करने के लिए गई थी कि देखूँ किस कौन मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, वो मुझे पता चल जाए। तो वो जानने के लिए मैं थोड़े दिन के लिए गायब हो गई थी। ऐसा कहता नहीं, मैं नहीं रहूँगी ना, तब मेरी वैल्यू पता चलेगी, लाइक दैट। सो गुड इवनिंग मुकेश, कैसे हैं आप? काफ़ी दिनों बाद दिख रहे हैं, काफ़ी व्यस्त रहने का। ऐसा तो नहीं आपने भी कहीं अपनी दाल गला ली? सो दाल गलाने से मुझे ये याद आया यार, प्यार के साथ ना, प्यार जब होता है ना, तो दो तीन चीज़ें तो सबके साथ सामान्य होती हैं, सामान्य रूप से एक जैसी। पहला, अरिजीत सिंह का हर गाना सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये गाना तो मेरे पे ही फिट हो रहा है, और ऐसा लगता है ना कि कहीं अरिजीत ने ऐसा तो नहीं मेरे प्यार पर रिसर्च करके ये सारे गाने बना दिए। सच्ची बता रही हूँ, तुम ही हो चाहे सुन लो, चाहे वो वाला बेदर्दिया सुन लो, कोई भी गाना सुन लो अरिजीत का,

0: आई अप्रिशिएट इट। और नींद थोड़ी कम आती है पढ़ाई के नाम पे, या कुछ ऐसा घर का काम करना हो तो भवानी माता 10 ही बजे हमें घेर लेती हैं। लेकिन प्यार में अगर किसी को चैट का रिप्लाई करना हो, फ़ोन पे घंटों बात करनी हो, कब 3-4 बज जाते हैं सुबह के पता ही नहीं चलता हो जाता है ना। कहते हैं ना, इश्क में हमने भी क्या क्या मुकाम देखे, वाबा कौन करेगा। इश्क में हमने भी क्या क्या मुकाम देखे, रात भर चैट की और सुबह काले आंखों के पास घेरे देखे। माँ बोली बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, हमने कहा ऑनलाइन क्लास के साइड इफेक्ट हैं ये। तो ऑनलाइन क्लास का ही बहाना करेंगे और क्या ही करेंगे। गुड इवनिंग अनिल जी, कैसे हैं आप। हम लोग के टाइम पे ना, जब हम लोग छोटे थे तो पढ़ाई वढ़ाई करते थे ना, मम्मी पापा लोग ऐसे लेके किताब बैठ जाते थे, सुनाओ क्या याद किया। जो कॉपी किताब लेके बैठे हो, पहले टीचर लोग बोलते भी थे क्वेश्चन आंसर याद करो, अब तो टीचर बोलते नहीं है, क्वेश्चन आंसर सुनाओ जरा, ये बताओ बैटल ऑफ पलासी किसके किसके बीच हुआ था। लो भाई तुरंत केबीसी शुरू हो जाता था। गलती से अगर आपने कह दिया 2 घंटा मैं पढ़ लिया हूँ, तो घर वाले ये पूछने जरूर आ जाते थे, क्या पढ़े, कैसा सवाल लगाए। पापा लोग तो तुरंत यही पूछ रहे, कैसा सवाल लगाए, कौन सी एक्सरसाइज पूरी हुई, 6 वाली पूरी हुई, 2.5 कर ली, 6 तक करके तब उठना। लो तो ये हाल था हम लोग के टाइम में। लेकिन अभी तो चलो ऑनलाइन क्लास का बहाना है, क्या बात है क्या बात है। मतलब इतना ज्योतिष भी आपको सुबह दिन का या मौसम का या समय का हाल नहीं बताएगा जितना अगल बगल, मतलब फ़ोन करने वाला, आज सुबह मौसम ऐसा था, ये था, वो था, ये था, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप पता चल जाती बिना टीवी ऑन के। तो ये सारी तो अच्छी चीज़ें। फ़िलहाल चलते चलते मैं ये कहना चाहूँगी, अगर प्यार में आप हैं तो प्यार में साइड इफ़ेक्ट कम देखिए, इसके इफ़ेक्ट देख के इसको एंजॉय करिए। और अगर प्यार नहीं हुआ है तो प्लीज़ एक बार मेरे कहने से करिए, और करने के बाद मुझे एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा, हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। हाँ बिल्कुल, और सच्ची बता रही हूँ, मैं तो सच्ची कह रही हूँ, जिसके पास अपनी कहानी है ना, मुझे लिख के फटाफट से, मतलब चैटरूम पे, या चैटरूम पे तो मत ही भेजो नहीं तो पब्लिक हो जाएगी, आप मुझे ना इंस्टा पे भेज दो, नाम बदल के भेज दो, ऐसे ही भेज दो, अपनी अपनी अपनी वाले का नाम बदल दो, मुझे भेज दो, जिससे मैं अगले ट्यूसडे आप लोगों की स्टोरी कवर करूँ। मुझे अच्छा लगता है किसी की प्यार की कहानी, मतलब मैंने अपने दोस्त की कहानी आप लोगों से शेयर की थी एक बार, तो एक और मेरे फ्रेंड ने कहा कि यार मेरी कहानी भी शेयर कर दे, तो हो सकता है अगले ट्यूसडे मैं लेके आऊँ। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 96.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार में हर सरहदें पार करेंगे, क्योंकि तेरे संग जीना है, तेरे संग ही मरेंगे। क्या बात है, नई शायरी मैंने तुरंत ही बना डाली। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल फिर इसी एनर्जी के साथ। और अगर आपने कुछ अच्छा नहीं सुना तो फटाफट से ट्यून करिए, कुछ और नहीं।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है।

0: सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
1: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में? क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है, और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं।

0: स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरह फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए। उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही बेहतरीन सा नगमा टटोल लीजिए। उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका, जज्बात आपके, गीत आपके, और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ना दोस्तों। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। राजू सलमानी जी आवाज विकास गोंडा से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, प्रबल मिश्रा गोंडा से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, मालवीय नगर से राजेश सिंह जी, जुगल किशोर वर्मा जी जग्गू दादा जी एमपी से, अनिल वर्मा जी सैदापुर से, दीपांशी तिवारी शायद गोंडा से, और रितिन सिंह स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो, सुरेश कुमार जी चौक से, निभर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, राकेश वर्मा, निशा पटेल नगर गोंडा से, चांदनी गोंडा से, नव्या गोंडा से, और इसी के साथ में सबीहा भी गोंडा से आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। सो एंजॉय करते हैं बिना बिना बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आज तो है मंगलवार, मंगल कर देने वाला मंगलवार, और मंगल कर देने वाले मंगलवार में तो हम आजकल तो बहुत भंडारे खा रहे हैं। सो क्या आप लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया, और कौन से भंडारे का, कहां के भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया है, मुझे चैट बॉक्स में आज जरूर बताना। लेकिन फिलहाल एंजॉय करते हैं हमारा आज का पहला गाना। हमारे पास में पहली फरमाइश है राजू सलमानी जी की आवाज विकास गोंडा से, और आवाज विकास गोंडा से राजू सलमानी जी को सुनना है गाना बता दो क्या लाना तुम लौट के। सो एंजॉय करते हैं लता जी की आवाज में ये ओल्ड इज गोल्ड वाला बहुत ही रोमानी सा नगमा राजू सलमानी जी की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो ममता का सौदन, स्टे ट्यून्ड।
1: बता दो क्या लाना,
0: ओह आई लव दिस,
1: तुम लौट के आ जाना,
0: पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे।

0: या याद रखोगे कि भूल जाओगे। हमने एंजॉय किया है लता जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड स्कूल वाला रूमानी नगमा हमारे राजू सलमानी जी की फरमाइश पर। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है प्रबल मिश्रा की। प्रबल मिश्रा को सुनना है सोनू निगम और अलका याग्निक जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हसीना मान जाएगी मूवी का। तो एंजॉय करते हैं। व्हाट इज योर रॉयल नंबर, व्हाट इज मोबाइल नंबर। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना प्रबल मिश्रा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: अरे 9820026235 मैक्स टच।

एंजॉय किया है प्रबल मिश्रा की फरमाइश पर। ये वाला नंगमा बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में फिर से ओल्ड इज गोल्ड वाले नंगमे की। जी हाँ दोस्तों, पर्वत के उस पार। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नंगमा हमारी आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर, जो की है लखनऊ से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

छेड़ दिए हैं सरस्वती देवी ने तार सितार, पर्वत के इस पार और पर्वत के उस पार। सो पर्वत के इस पार पर्वत के उस पार कुछ हो चाहे हो ना दोस्तों, लेकिन जब हमारी फरमाइशी की महफिल एकत्रित होती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ रोमानियत ही छा जाती है पर्वत के इस पार भी और पर्वत के उस पार भी। सो हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, सुपर डुपर हिट ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारी आशु मिश्रा जी की फरमाइश पे, जो की है लखनऊ से। नाउ नाउ नाउ नाउ नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और क्या आप सभी तैयार हैं अगले डिमांड को एंजॉय करने के लिए? सो अगर तैयार हैं तो ऐसे तैयारी नहीं बननी है दोस्तों, जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी को खोल लीजिए और फिर चैट बॉक्स के डांस फ्लोर पे आ जाइए, क्योंकि अगला गाना है बीटों से भरपूर वाला नगमा। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में अगली फरमाइश है दीपांशी तिवारी की, और दीपांशी तिवारी को सुनना है गाना दिल तेरा आशिक। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा एनर्जी से भरपूर वाला नगमा दिल तेरा आशिक से, सिर्फ दीपांशी तिवारी की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मुकेश यादव फ्रॉम गोंडा, इट्स कुमार फ्रॉम MP रीवा। स्टे ट्यून्ड।

है ये बहुत ही खूबसूरत सा तड़कता भड़कता सनम्मा दीपांशी तिवारी की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ चलेंगे अगली फरमाइश की तरफ। थमो जरा दोस्तों, हमारे एक लिसनर है जिनका नाम है अनिल वर्मा और वो है सैदापुर से। उन्होंने क्या खूब कहा है कि सुकून मुझे किसी जन्नत या परियों की चाहत नहीं, सुकून मुझे किसी जन्नत या परियों की चाहत नहीं, मेरे लिए तुम्हारी बातों का घेरा ही जन्नत है। आहा, अच्छा जी, सो हमारी बातों का घेरा जन्नत है या फिर किसी और की बातों का घेरा जन्नत है, मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना। अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की, और मालवीय नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है किशोर कुमार और मोहम्मद अजीज की आवाज में ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। सो एंजॉय करते हैं मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। अच्छा, कभी कभी जैसे मेरा मूड होता है ना एकदम पार्टी शार्टी करने का, आप लोग का ऐसे मूड नहीं करता कि एकदम पार्टी शार्टी वाले एकदम रॉकिंग गाने फरमाइश करें और ताबड़तोड़ एकदम जमकर पार्टी करें, पूरी दुनिया को भुला के पार्टी करें? हाँ, अगर ऐसा मन करता है तो क्यों ना कल पार्टी करें। हाँ। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमने एंजॉय किया है ये दर्द भरा नगमा, एकदम रियलिटी चेक कराने वाला नगमा, किशोर कुमार और मोहम्मद अजीज की आवाज में। हमारे मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। एंड दोस्तों, अगली फरमाइश है हाउ रोमांटिक गाने की। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है अनिल वर्मा जी की सैदापुर से। अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना, आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, और एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। सो एंजॉय करते हैं ये क्रिश का गाना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की बहुत ही प्यारी सी हाउ रोमांटिक और सुरीली आवाज में, सिर्फ और सिर्फ अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर, जो कि है सैदापुर से। एंजॉय करेंगे ये वाला गाना, लेकिन उसके पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी कि बदला ना अपने आप को जो थे वही रहे, बदलाना अपने आप को जो थे वही रहे, मिलते रहे सभी से मगर अजनबी रहे। सो एंजॉय करते हैं ये हाउ रोमांटिक वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

और एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। हमने एंजॉय किया है कृष का ये गाना श्रेया जी की और सोनू निगम की बहुत ही प्यारी सी रोमांटिक सी आवाज में। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से और हमारे जग्गू दादा को एमपी से सुनना है गाना आजा मेरी जान। ये है जून का महीना। सो जून का महीना है तो लेकिन ये जून का महीना आधा निकल चुका है और फिर उसके बाद में जुलाई का महीना आएगा। सो इस भरी गर्मी वाले जून के महीने वाले गाने को हम एंजॉय करते हैं हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर जो की है एमपी से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

जा मेरी जान जग्गू दादाजी, और क्यों है जून का महीना, आखिर क्यों मिला था ये वाला गाना। फिलहाल हमने एंजॉय किया ये सदा बहार नगमा हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर, जो कि हैं जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। और अगली फरमाइश हमारे पास में है सुपर डुपर डुपर हिट नगमे की। जी हाँ दोस्तों, सो कुर्सी की पेटी को खोल लीजिए और चैट बॉक्स के डांस फ्लोर पे आ जाइए, और डांस फ्लोर पे हम एंजॉय करेंगे आलिया भट्ट का सुपर डुपर डुपर हिट नगमा। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास में अगली फरमाइश है सबीहा की, और सबीहा को सुनना है गाना किलर की ब्यूटीफुल कर गई चुल। सो एंजॉय करते हैं ये हाई बीट वाला नगमा, मेरा फेवरेट वाला नगमा, सबीहा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

0: गई चुल।
1: सो लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, हमने एंजॉय किया, ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा एंजॉय करते हैं। हमारी आज की अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश हमारे पास में है चांदनी की गोंडा से, और चांदनी को गोंडा से सुनना है यार राजकुमार का गाना, सारी के फालसा कभी मैच किया रे और कभी छोड़ दिया दिल कभी कैश किया रे। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट नगमा एक बार फिर से, लेकिन इस बार चांदनी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

किया रे और कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। हमने एंजॉय किया ये सुपर डुपर हिट नगमा आर राजकुमार का। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है रितिन सिंह की, और रितिन सिंह को सुनना है गाना प्यार किया तो डरना क्या। और वैसे भी सच में जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, सो फिर छुप छुप के आहें भरना क्या, और जब प्यार किया तो डरना क्या। कहते हैं ना कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा रितिन सिंह की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

एंजॉय करने जा रहे हैं, प्यार किया तो डरना क्या मूवी का गाना, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट नगमा। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, स्टे ट्यून्ड एवरीवन। इतना कंफ्यूजन के साथ में फरमाइशें भेजते हो, जानते हो कि आधा भेजा नहीं है आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के पास में, फिर भी हाँ।

वहीं पे मरते हैं। लेकिन ये बात कहाँ किसी को समझ में आती है। जो हम किसी को समझाना चाहते हैं ना, वो कोई समझना ही नहीं चाहता। जो समझना चाहता है वो वही समझता है और वही समझना चाहता है। इसीलिए कभी किसी को कुछ समझाना ही नहीं चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं आई ना, इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी को कोई बात समझानी ही नहीं चाहिए। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना उदालक शर्मा की फरमाइश पर, जो कि है मन कपूर से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

एंजॉय किया है। पंकज उदास और अलका याग्निक की आवाज में ये वाला नगमा आदमी खिलौना है मूवी का। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों विजय पाल यादव जी की ललहुआ लखीमपुर खीरी से। उनको सुनना है सौदागर मूवी का गाना सजना है मुझे सजना के लिए। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना और इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल के साथ में, हु इज नॉट सो सिंपल। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से। स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम, एंजॉय करते हैं।

विजयपाल यादव जी की फरमाइश। मिलते हैं सीधे 9 बजे। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है और उनको खुद से खाना पका के फिर पेट पूजा करना है, उनसे मेरा विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप जाके आपके घर के आसपास कहीं आज भंडारा जरूर लगा होगा, जाके भंडारे का प्रसाद ग्रहण करिए। फालतू में इतनी मेहनत मत करिए, है ना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, प्रसाद ग्रहण करके आइएगा, पेट पूजा करके आइएगा, 9 बजे मिलेंगे और फिर सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट करेंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: सिन्हा के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमरीका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियां में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियां में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
3: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
4: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
5: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
4: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
3: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
6: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
3: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

फिर मुलाकात कभी होगी कि नहीं होगी ये तो रब जाने, लेकिन आज मुलाकात होनी थी ये तो आपकी आज सिंपल नॉट से सिंपल जानती ही थी। सो एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके अपनी आज सिंपल हु इज नॉट से सिंपल आपके अपने फरमाइशी के महफिल में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुकेश यादव की गोंडा से, और मुकेश यादव को गोंडा से सुनना है गाना तेरे नाम। सो एंजॉय करते हैं अलका याग्निक की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा तेरे नाम मुकेश यादव की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आर जे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो एंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश, एंड इट्स कुमार फ्रॉम MP रीवा। आप अपने गाने की लिंक चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हजारा सनम। हमने एंजॉय किया ये गाना मुकेश यादव की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है इट्स कुमार की एमपी रीवा से, और इट्स कुमार को एमपी रीवा से सुनना है एक्शन जैक्शन का गाना। सो एंजॉय करते हैं ये हाई बीट हाई एनर्जी वाला गाना इट्स कुमार की फरमाइश पर, जो कि है एमपी रीवा से। स्टे ट्यून्ड।

ये फरमाइश थी इट्स कुमार की एमपी रीवा से। हमने एंजॉय किया है कीड़ा गाना एक्शन जैक्शन का इट्स कुमार की फरमाइश पर। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, जानते हैं किसकी अगली फरमाइश हमारे पास में है? नव्या की, माधोपुर गोंडा से। और नव्या को माधोपुर गोंडा से सुनना है गाना बातों को तेरी हम भुला ना सके। एंजॉय करते हैं फिर से बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, लेकिन इस बार नव्या की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड, आई लव दिस सॉन्ग। वैसे जिस गाने में दिल की बातों को बयां किया जाता है ना, वो गाने मुझे अच्छे लगते हैं, फिर वो चाहे मेरी दिल की बातें हो या फिर किसी और की दिल की बातें हो। है तो दिल की बातें ना। वैसे दिल की बातें सुनने वाला समझने वाला जल्दी कोई किसी को मिलता नहीं है, क्यों? सही कहा ना मैंने? इसलिए मैं हूँ आप सभी के पास में। आपके जज्बातों की गठरी से ही मुझे अंदाजा हो जाता है कि दिल में कितना दर्द है। शर्त

गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ दोस्तों। और अगली फरमाइश हमारे पास में है फिर से सुपर डुपर डुपर हिट गाने की, सो एंजॉय करते हैं इस बार अरिजीत सिंह की आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गाना। आई लव दिस सॉन्ग, कौन सा गाना है म्यूजिक सुन के गेस करना जरूर। और किस किस को आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरह ये गाना पसंद है मुझे जरूर चैट बॉक्स में बताना। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना मोहित की फरमाइश पर जो कि है मालवीय नगर गोंडा से।

काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बांट लेंगे हम, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, ओरे प्यारी। तो सिटी लाइट्स का ये गाना हमने इंजॉय किया है मोहित की फरमाइश पर, जो कि है मालवे नगर गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। एंड दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है, जानते हैं किसकी? अगली फरमाइश हमारे पास में है मुस्तफा जी की सऊदी से, और मुस्तफा जी को सऊदी से सुनना है गाना। एक तरफ है घर वाली और एक तरफ बाहर वाली। यहाँ लोगों से एक नहीं संभल रही, मुस्तफा जी आप दो दो मैनेज कर रहे हैं। हाउ हाउ हाउ स्टेज ही उन्हें एंजॉय करते हैं।

फरमाइश थी मुस्तफा जी की, बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है केतकी शुक्ला की, और उनको सुनना है गाना मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। सो एंजॉय करते हैं अरिजीत सिंह का ये।

भी तुमको चाहूंगा। सो दोस्तों, बढ़ते हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ दोस्तों। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है निबर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। उनको सुनना है गाना जा सजना तुझको भुला दिया। इंजॉय करते हैं ये वाला गाना और इसी के साथ में आपकी अपनी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से अलविदा। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा हमेशा हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज, हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर, वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि कल मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल। एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। मिलते हैं कल। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी तुरालो रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
11: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
12: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
13: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
12: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बाहर ए गज़ल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल आज दिन है मंगलवार का। कल हम बात कर रहे थे अंजुम रहबर जी पर और बात पूरी नहीं हो पाई थी, मतलब मसले कहीं के कहीं चले गए और हम अंजुम रहबर जी पर बात नहीं कर पाए। आज उन पर बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ अनिल शास्त्री जी हैं भाई, गुड इवनिंग चरणस्पर्श दादा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मुस्तफ़ा जी सऊदी से हमारे साथ, गुड इवनिंग सर, आपको भी शाम का सलाम कबूल हो। और मुकेश यादव जी भाई, बहुत दिन से आप लापता चल रहे हैं, कहाँ लापता है भाई? गुड इवनिंग सर, लव यू, आई टू लव यू मुकेश यादव जी, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे मस्त होंगे। बात कर रहे थे अंजुम रहबर साहिबा की, कि उन्होंने लिखा कि मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था, वो उतनी दूर हो गया जितना करीब था। मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई, मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई, जिस शख्स की हथेली पे मेरा नसीब था। बस्ती के सारे लोग ही आतिश परस्त थे, मतलब आग लगाने वाले। बस्ती के सारे लोग ही आतिश परस्त थे, घर जल रहा था और समंदर करीब था। दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में। ये पंक्तियां लाजवाब आती हैं कि दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। और लगता है कि गरीबों के पास तो जैसे दिल ही नहीं होता है, होते जी। एक पंक्ति है किसी की कि एक नौकरी पे बिक गई जागीर इश्क की, तो दिल भी अमीरों के ही पास होता है, गरीबों के दिल को दिल ये दुनिया समझती ही नहीं है। जी हाँ, सविता शास्त्री मेरे साथ उपस्थित है, चरण स्पर्श और शुभ संध्या आपको भी। तो दिल तो लगता है जैसे गरीबों के ही पास है, उनके पास अधिकार ही नहीं है दुखी होने का। अगर आपको याद होगा, आपने प्राइमरी में एक कहानी पढ़ी होगी।

उसका शीर्षक था दुख का अधिकार। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आए तो हमको बताइएगा। तो उसमें एक महिला है जो लेखक जाता है, तो एक महिला होती है जो कुछ सब्जियां बेच रही होती है, कोई उसके पास नहीं जाता। लोग कहते हैं बताओ कितनी कठोर हृदय की माँ है, इस स्थिति में भी सब्जी बेचने आ गई। इस स्थिति में अब ये जो फ्रेश था, इस स्थिति में इसने लेखक के मन में उत्सुकता पैदा की। उसने कहा इस स्थिति में इसका क्या तात्पर्य। वो उस बूढ़ी औरत के पास गया

0: पूछा कि आप सब्जियां बेच रही हैं? तो उसने कहा हाँ बेटा सब्जी बेच रही हूं। कहा कुछ हो गया है क्या? उसने कहा हाँ मेरा जवान बेटा मर गया है और उसके कफन के लिए पैसे नहीं है। अब ये सब्जी अगर बिक जाए तो शायद उसके कफन का इंतजाम कर सकूं, इसलिए चुपचाप यहां बैठी हूं और रो भी नहीं सकती। समाज में राइटर ने जब ऐसे लोगों को देखा तो उसने लिखा दुख का अधिकार, और अंतिम पंक्ति थी कि मुझे लगता है कि इस दुनिया में गरीबों को अपने दुख व्यक्त कर पाने का भी अधिकार नहीं है। ये समाज है, और ऐसी सोसाइटी को, ऐसे समाज को हम लोग बहुत तवज्जो देते हैं, बड़ा महत्व देते हैं। अच्छी बात है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और महत्व देना भी चाहिए, लेकिन लगता है कि कहीं कहीं हम जिनको, जिनके लिए, जिस समाज के लिए हमेशा अपने कुछ उसूलों के साथ समझौता करते रहते हैं, वो समाज हमको रोने की परमिशन, हमको रोने की इजाज़त तक नहीं देता। जी हाँ, न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा। जी हाँ, क्या बात है, क्या पंक्ति निकली मेरे मुँह से, और शायद ये एक प्यारा सा नगमा भी है, न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा। जी हाँ, आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत ही कर देते हैं। और क्या बात है भाई, बहुत ही प्यारी शख्सियत मैसाचुसेट्स कुमार जी जुड़ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत शुभ संध्या इट्स कुमार जी आपको। और आइए अब न जाने क्यों हमारे दिल को तुमने दिल नहीं समझा सुनते रहिए रेडियो गन असली 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। लेकिन फिलहाल ये प्यारा सा नगमा आप सभी के लिए।
1: मुझे मिल गया।

जी हाँ, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम। जी हाँ, क्या खूबसूरती से अपनी बात कही है। आते हैं अंजुम राइबर साहिबा की तरफ। उन्होंने कहा कि कुछ दिन से जिंदगी मुझे पहचानती नहीं, कुछ दिन से जिंदगी मुझे पहचानती नहीं, यूं देखती है जैसे मुझे जानती नहीं। कुछ दिन से जिंदगी मुझे पहचानती नहीं, यूं देखती है जैसे मुझे जानती नहीं। वो बेवफा जो राह में टकरा गया कहीं, वो बेवफा जो राह में टकरा गया कहीं, कह दूंगी मैं भी साफ कि पहचानती नहीं। अगर वो टकराए तो हम भी ये कह देंगे कि नहीं, आई डोंट नो हु यू आर, मैं नहीं जानती कि आप कौन है। वो बेवफा जो राह में टकरा गया कहीं, कह दूंगी मैं भी साफ की पहचानती नहीं। समझाया 12 बार बच्चों प्यार व्यार से, 12 बार मतलब कई बार समझाया, लेकिन कोई सहेली कहा मानती नहीं। मतलब वो कहती हैं कि मैंने अपनी सहेलियों को बहुत समझाया कि प्यार व्यार से बचो, लेकिन नहीं मानती हैं। मैंने तुझे मुआफ किया, जा कहीं भी जा, ये अच्छा तरीका है। ये मतलब किसी को माफ कर देना अगर वो आपकी जिंदगी में है और आपको कष्ट दे रहा है, तो माफ करके उसे आप भूल जाइए, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करेंगे आप भूल नहीं पाएंगे। भूलने के लिए माफ करना जरूरी है। और मैंने तुझे मुआफ किया, जा कहीं भी जा, मैं बुजदिलों पे अपनी कमा तानती नहीं। उसने कहा बुजदिल लोग हैं, ऐसे लोगों पर क्या आवाज करें। अंजुम पे हंस पड़ा है तो हंसता रहे जहां। उन्होंने कहा कि मुझे छोड़कर चला गया, और मैंने कहा ठीक है जाओ भाई, इट्स योर विश, ये आपकी इच्छा है। अंजुम पे हंस रहा है तो हंसता रहे जहां, मैं बेवकूफियों का बुरा मानती नहीं। हम नहीं मानते बेवकूफियों का बुरा, वो ठीक है, वो उनका अपना परसेप्शन है, उनकी अपनी समझ है, ये मेरी अपनी समझ है, और हर इंसान अपनी समझ से दुनिया को देखता है। एक बार एक अध्यापिका ने एक छोटे से क्लास के बच्चे को, LKG के बच्चे को एक एप्पल दिया, फिर एक एप्पल दिया, फिर एक एप्पल दिया, एक फिर एक फिर एक, बच्चों को जोड़ना सिखा रही थी। और उस बच्चा वो बैग, एक एप्पल दिया उसको बैग में डाला, फिर एक एप्पल दिया फिर डाला, फिर एक एप्पल दिया फिर डाला। टीचर ने कहा कुल कितने एप्पल हो गए बैग में, तो बच्चे ने कहा मैम 4। टीचर को हो सकता है बच्चे के समझ में ना आया हो। दोबारा फिर उसने कहा अच्छा जो एप्पल हमने दिए उसको दो हमको, उसने निकाल के दे दिए बैग से। टीचर ने कहा एक दिया, फिर एक दिया, फिर एक दिया, कहा बताओ अब तुम्हारे बैग में कितने सेब हैं, कितने एप्पल हैं। बच्चे ने कहा 4। अब टीचर झुंझला गई, उसने कहा 1 + 1 + 1 कितना होता है। बच्चे ने कहा 3। तब टीचर ने कहा जब मैंने तुमको 1 एप्पल दिया, फिर 1 एप्पल दिया, फिर 1 एप्पल दिया, तो कितने एप्पल हुए। बच्चे ने कहा 4। अब तो गुस्सा लगेगा ही, तो टीचर ने कहा मारूंगी झापड़, दिमाग ठीक हो जाएगा, 4 कैसे हो सकता है। उसने कहा मैम आपने पूछा कि तुम्हारे बैग में कितने एप्पल हैं, तो मेरी मम्मी ने भी मेरे ब्रेकफास्ट के लिए मुझको 1 एप्पल दिया है, आपने 3 दिया, 1 बैग में मेरे पहले रखा हुआ है, तो आप जब पूछा आपने कि अब तुम्हारे बैग में कितने एप्पल हो गए, तो मैंने 4 कहा। अगर आप ये पूछते कि मैंने आपको कितने एप्पल दिए, तो मैं 3 कहता, लेकिन आपने पूछा अब तुम्हारे बैग में कितने एप्पल,
तो अब तो मेरे बैग में 4 एप्पल थे, मैं झूठ कैसे बोलता। तब टीचर को एहसास हुआ कि कभी कभी हमको सामने वाले के नजरिए को भी महत्व देना चाहिए। हो सकता है हम समझ ना पा रहे हो सामने वाले को, वो भी सही हो। और कभी कभी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है, गलत फहमियाँ रिश्ते ख़त्म कर देती हैं और हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, क्योंकि ना हम उनकी जगह पर जाकर खड़े हो पाते हैं और ना वो हमारी जगह आना चाहते हैं। ज़िंदगी में जब कभी भी ऐसा मौका हम लोगों के साथ है तो अपने को सामने वाले की जगह पर खड़ा करके देख लेना चाहिए। हो सकता है शायद वो भी वही करता जो हम कर रहे हैं, या हम भी वही करते जो उसने किया। समझ की बात। आइए अब आपको ले चलते हैं मखमली आवाज़ की तरफ। और जब मैं मखमली आवाज़ बोलूँ, इसका मतलब ये आवाज़ जगजीत सिंह साहब की है, जिन्होंने वास्तव में जग को जीत लिया। आइए सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल जगजीत साहब की, और मिलते हैं आपसे संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गाना स्लेट 9.6 FM है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप

0: जीने का राज मैंने मोहब्बत में पा लिया, जो गम मिला उसे अपना बना लिया। देखिए साहब, गम की भी अपनी एक कहानी है, गम की भी अपनी एक अदा है, वो भी सहने वालों पे फिदा है। अब देखिए, तकलीफें उनके जीवन में कम आती हैं जो उनको झेल नहीं पाते। और कभी महसूस करके देखिएगा कि कोई एक ऐसा इंसान होगा उसके ऊपर तकलीफों पर तकलीफ, ऊपर वाला देता ही जाता है, एक समस्या समाप्त नहीं हुई कि दूसरी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई। राजेश रेड्डी साहब की एक गजल है कि जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी है, जितनी बटनी थी बट चुकी है जमीन, अब तो बस आसमान बाकी है। और पंक्ति ये थी उनकी कि इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, इम्तिहान से गुजर के क्या देखा, एक नया इम्तिहान बाकी है। जी हाँ, तो कभी कभी जिंदगी इम्तिहान ही लेती रहती है, लगता है अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, और वो वक्त नहीं आ पाता शायद कि सब कुछ ठीक हो जाए। और इंसान सोचता है कि काश बचपन के खिलौनों की तरह छुपा लूँ तुमको, काश बचपन के खिलौनों की तरह छुपा लूँ तुमको, आंसू बहाऊँ, पाँव पटकूँ और पालूँ तुमको। बचपन में यही तो होता है ना, कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आंसू बहाया, पाँव पटके, और उसके पश्चात कुछ देर के पश्चात मिल जाता है। तो साहब ये जिंदगी होती है, और हम इसी चीज़ के आदि भी होते हैं कि हाँ हम छटपटाएंगे तो चीज़ें मिल जाती हैं। आह क्या बात है भाई, हमारे साथ कायनात जी। हेलो सर, हाउ डू यू डू। जी हाँ एकदम, हाउ डू यू डू। जहाँ तक मैं अंग्रेजी जानता हूँ इसका जवाब यही होता है। बहरहाल आप बताइए कि आप कैसी हैं। सांग जा सजना तुझको भुला दिया, वादा किया हमेशा का मुझको रुला दिया। मुझे ये गज़ल सुनकर ये सांग याद आ गया। क्या मतलब, क्या कनेक्शन दोनों के बीच में, वाह भाई वाह। और बहुत ही हमारे प्यारे श्रोता भाई प्रबल मिश्रा जी आ चुके हैं, प्रणाम करते हैं आपको। जी शुभ संध्या आपको भी। मुकेश जी को गीत पसंद आया, गज़ल पसंद आई। और आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आपकी बीवी ने बोल दिया कि आप नहीं समझोगे, मतलब नहीं समझोगे। अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन गोंडा में एक IAS रैंक के अफसर आए थे, मैं उनके यहाँ होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था, तो इसमें वो नहीं है, तबादला हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो ऐसे एक दिन पढ़ा रहा था मैं, तो रविवार का दिन था, सोमवार का बच्चे को टेस्ट था, तो उनकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि अगर आप किसी कदम लायक होते तो क्या पूछना था। भारतवर्ष की सबसे कठिन परीक्षाओं में एक मुझे लगता है UPSC होती होगी। 9 पेपर, इंटरव्यू, प्री प्रीलिम्स, मेंस, और जो क्रीम होता है भारत का, वो मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी है हमारे देश में, नौकरशाही है, तो ब्यूरोक्रेट्स जो होते होंगे वो सबसे ज़्यादा अकलमंद होते होंगे। तो प्रबल जी, अगर पत्नी कह दे नहीं समझोगे तो आप विवेकानंद दुनिया के सामने हो सकते हैं, लेकिन इस दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी के लिए समझदार नहीं हो सकता, ये मैंने अपने जीवन में उस दिन सीख लिया। आपने बिल्कुल सही कहा। सर आज मेरा मन बहुत उदास है। भाई क्यों उदास है, पंकज उदास को प्ले कर दीजिए। ये किस मोड़ पर तुम्हें बिछड़ने की सूझी, मुद्दतों बाद तो समझने लगे थे हम। क्या बात है, बिल्कुल भाई हमको भी ये गज़ल पहली लगती है। फिलहाल आपको एक सुनाते हैं, एक नगमा, और इस नगमे के पश्चात आते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं पंकज उदास की इस प्यारी सी गज़ल के बाद। सुनते रहिए और रेडियो गणेशली 89.6 FM, ये है गुना शहर की धड़कन। फिलहाल जब जिंदगी ऐसी आ जाती है तो मन में आता है कि न तो हम किसी के लिए खास नहीं हैं। और देखिए जब एहसास ऐसा होता है कि हम किसी के लिए खास नहीं हैं तो कलमकार कुछ यूं लिखता है। क्या लिखता है सुनाते हैं आपको।
1: सुर में गाना सीखिए

0: एक मोहब्बत के सिवा और न कुछ मांगा था, एक मोहब्बत के सिवा और न कुछ मांगा था, क्या करें ये भी जमाने को गवारा न हुआ। और वास्तव में कहा जाता है कि मोहब्बत से बढ़कर नहीं कोई नेमत, नेमत मतलब उपहार, गिफ्ट। इस दुनिया में जो सबसे बड़ी नेमत हमें आसमान वाले ने दी वो मोहब्बत दी, तो मोहब्बत से बढ़कर नहीं कोई नेमत, मगर शर्त ये है कि दुनिया न जाने, लोग जान जाएंगे तो फिर वो मोहब्बत को मोहब्बत की नज़र से नहीं देखेंगे। वसीम बद्री साहब का एक शेर है कि जवां आँखों पे कब उंगली उठाना भूल जाते हैं, पुराने लोग हैं अपना ज़माना भूल जाते हैं। वो भी इस दौर में वही करते थे, लेकिन यहाँ पर तो कवि कहता है सिर्फ एक चीज़ मांगी थी मैंने, एक मोहब्बत के सिवा और न कुछ मांगा था। क्या पंक्ति है साहब, आसमां कितने सितारे हैं तेरी महफिल में, अपनी तकदीर का ही कोई सितारा न हुआ। इतनी बड़ी कायनात में मैंने सिर्फ एक शख्स को चाहा और वही मेरा न हुआ। और अक्सर लोग कहते हैं कि हम जो पाना चाहते हैं वो कठिन होता है, मैं इस बात से इत्तेफाक थोड़ा सा कम रखता हूँ। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि जो कठिन होता है हम वही पाना चाहते हैं। आसान चीज़ों को कौन पाना चाहता है साहब? आप में से इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, कौन चाहता है कि वो चपरासी बन जाए किसी बैंक का? चाहते हैं? आपका बेटा, आप अगर परिवार के साथ हैं तो क्या सोचते हैं आपके बच्चे कहीं स्वीपर हो जाए? नहीं, क्या हो जाए, इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, प्रोफेसर हो जाए, लेक्चरर हो जाए, यूपीएससी क्रैक कर लें, नीट क्रैक कर लें, आईआईटी क्रैक करें, आपका भी तो सपना वही है। तो जरा सोच कर देखिए, जो हम पाना चाहते हैं वो कठिन है, या जो कठिन है वो हम पाना चाहते हैं? आपको फर्क नजर आएगा। इस जमाने की सच्चाई यही है कि हम पाना ही वही चाहते हैं जो कठिन होता है, सरल चीज़ों को पाना कोई नहीं चाहता। अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने विलियम शेक्सपियर का एक प्ले पढ़ा, विलियम शेक्सपियर का द टेम्पेस्ट। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, लाइट विनिंग्स मेक्स द प्राइज लाइट, आसान रूप से प्राप्त चीज़ें अपना महत्व तो आसानी से खो देती हैं। जो चीज़, जो व्यक्ति, जो वस्तु जितनी कठिनाई के बाद मिलती है उसका एहसास आपको उतना ही ज़्यादा होता है। एक छोटी सी कहानी याद आगे सुनाते हैं आप। किसी नगर में एक सेठ जी थे, तो उनका एक इकलौता बेटा था, संपत्ति उनके पास बहुत थी, लेकिन वो बेटा जरा केयरलेस था, मतलब लापरवाह था। अक्सर होता है कि माता पिता के पास पैसे ज़्यादा होते हैं तो कुछ स्थिति में बच्चे थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं कि इतना तो पापा के पास सही है। पिताजी को चिंता सता रही थी कि रखा हुआ धन कोई बहुत दिन तक खा नहीं पाता, बेटा सिंसियर नहीं है, क्या करें क्या करें क्या करें। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, कहा यहाँ आओ बेटा। बेटे ने कहा जी। अच्छा, वो उनके धन को उड़ाता था, मतलब दोस्तों के साथ खाना पीना, पार्टी करना, पिता के पास धन है ही है, इकलौता बेटा है, और कभी रोके तो माँ टोक दे, किसके लिए कमाते हो? बेटे के लिए। तो एक दिन की बात है कि सेठ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा एक काम करो, आज 5 रुपए कमा के ले आओ। तो बेटे ने कहा ठीक है। तो बेटा गया, मम्मी से मांगा, कहा 5 रुपए दे दो, मम्मी ने दे दिया। पापा के पास गया, शाम को पापा कहा ये लीजिए 5 रुपए, अपने कातल ले आना, कमा के हम ले आए। तो उस सेठ ने उस 5 रुपए को कुएं में फेंक दिया, सामने कुआं था, फेंक दिया तो फेंक दिया। लड़का कुछ नहीं बोला, कहा ठीक है। पिता ने कहा बेटा ये कमा लेकर नहीं आओ, कमा लेकर आओ, मम्मी से मांग कर मत लाओ, कमा लेकर आओ। बेटा दोबारा गया रिश्तेदारों के यहाँ, वहाँ से मिल गया, फिर लाया शाम को, पापा को 5 रुपए दिया, फिर पापा ने कुएं में फेंक दिया, बेटा कुछ नहीं बोला। पापा ने कहा बेटा कमा के नहीं लाए हो, कमा के लाओ। कहाँ से लाए थे? कहा रिश्तेदारों से। कहा आपके कमा लेकर आना। फिर गया दोस्तों के पास, वहाँ मिल गया, फिर आया 5 रुपया दिया, पिता ने फेंक दिया, बेटा कुछ नहीं बोला। पिता ने कहा बेटे कमा के नहीं लाए हो, कमा के लाओ, तुमको मेरी कसम है, अब की बार अगर तुम कमा के नहीं लाए तो तुम मेरा मरा मुंह देखो। अब बेटे ने सोच लिया कि जब पापा ने इतनी बड़ी बात बोल दी है तो कमाना पड़ेगा, निकला कमाने के लिए। और जब गया बाहर निकला तो ये एहसास हुआ कि क्या करें, तो एक जगह पर यह था कि ठेलियाँ चलती थी, तो उसने कहा कि 5 चक्कर अगर यहाँ से वहाँ का लगाओगे एक एक ट्राली मोरंग भर के तो आपको एक ट्राल एक बार का 1 रुपया दे देंगे, तो 5 बार का 5 रुपये। तो उसने करीब 1 किलोमीटर मोरंग भरी, फिर पटका, फिर दोबारा ठेली लेकर आया, फिर गया, और 5 बार उसने किया, मतलब सर का पसीना उसके पैर पर, इतनी मेहनत। गया अपने पिताजी को पैसा दिया, कहा पिताजी लीजिए। पिता ने वो पैसा उठाया और फेंक दिया कुएं में। बेटा नाराज, क्या किया आपने? जानते हैं आप कितनी मेहनत से कमाया था मैंने? पिता ने कहा बेटी इस बार तुम कमा लेकर आए हो, इसी प्रकार से अगर आप मेरे धन को उड़ाते हैं तो आपको अपने मेहनत की कमाई पर अगर इतना अफसोस हुआ, कष्ट हुआ, तो जरा मेरे कष्ट का अंदाज़ा लगाओ। अब बेटे के समझ में बात आ चुकी थी, आपके समझाने का तरीका सही हो तो इंसान समझता है। क्या बात है, घड़ी की सुइयां बता रही है कि आपसे मिलने का वक्त आ चुका है, क्या बात है भाई। हाँ, इसी बीच हमारे पास व्यक्ति नहीं जी, व्यक्तित्व चरण पर श्री अशोक त्रिपाठी जी डाक अधीक्षक प्रयागपुर उपस्थित हैं, शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं आप कि मुझे थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मुझे थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। जी हाँ, मेरे साथ प्रबल मिश्रा जी हैं, हज़ारों से बात नहीं करनी सिर्फ तुमसे करनी है। जी हाँ, इम्तियाज अहमद जी हैं, उद्दालक शर्मा जी हैं, दिल नाराज था मेरा पर तुमने मुँह फेर लिया हमें देखकर, शर्म को चलेगा चपरासी भी, क्या बात है क्या बात है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। जुल्फों में तेरी है जन्नत बस्ती, हर गम को छुपा लेती है तेरी दिलकश हंसी। जी हाँ, और अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है, कल है बुधवार और कल आप होंगे वक्ता और हम बन जाएंगे श्रोता। जी हाँ, अपने खजाने को तैयार रखिएगा, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी को।
1: मेरा नाम पीयूष है और ये है मेरी पत्नी शालिनी। अच्छा, और मैं प्रकाश। तो फिर शाम की कॉफी डेट पक्की? प्रकाश जी ने अपनी बात पर इंसिस्ट करते हुए कहा। इस अपार्टमेंट में आए हुए पीयूष और शालिनी को 4 महीने हो गए थे। इससे पहले उनका किसी दूसरे पड़ोसी से ठीक से परिचय भी नहीं हो पाया था। जान पहचान बढ़ाने के लिए दोनों ने ये आमंत्रण स्वीकार कर लिया।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है खामोशी की धुन। अब तक आपने सुना

रहा हूं। अंदर से प्रकाश जी की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर में वो खुद आ गए थे, हाथों में कॉफी की ट्रे लिए हुए। गुड इवनिंग पीयूष, गुड इवनिंग शालिनी, गुड इवनिंग प्रकाश जी, पीयूष और शालिनी का सम्मिलित स्वर आया। भाई मीनू जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो आराम कर रही हैं। उठते ही आप दोनों से परिचय करा दूंगा। पीयूष और शालिनी दोनों को ये बात अटपटी लगी कि मेहमान को घर बुलाकर गृह स्वामिनी स्वयं गायब थी। अभी दोनों कॉफी पी ही रहे थे कि हंसी की एक तेज आवाज ने दोनों का ध्यान सामने वाले कमरे की तरफ कर दिया। ये कैसी आवाज है? शालिनी अपना कौतूहल दबा नहीं पाई। मीनू की आवाज है, मीनू ने अपनी आवाज रिकॉर्ड करके उसे ही अलार्म बना रखा है। पहली बार तो मैं भी यह सुनकर चौंक पड़ा था, प्रकाश जी बोले। ओह काफी हसमुख है मीनू जी शायद, पीयूष बोला। प्रकाश जी बोले, मीनू जैसा कोई हो ही नहीं सकता। उसकी हंसी बहुत तेज थी, वो जब हंसती तो आस पड़ोस वाले भी जान जाते। मैं अक्सर सोचा करता, जरा भी तमीज नहीं है इस औरत को। कहने को तो डबल एमए है, कॉलेज में लेक्चरर है, पर बुद्धि ढेले भर के बराबर नहीं। बातूनी तो इतनी कि मैं भी कभी कभी खींच उठता था। हमारी शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन इन 12 सालों में मैंने कभी भी उसे दुखी या उदास नहीं देखा था। बच्चे ना हो पाने का मुझे कोई खास दुख नहीं था, परंतु माँ बन पाने की चाह अधूरी रह जाने के बाद भी मीनू की आंखों में दर्द की एक रेखा भी मैंने कभी नहीं देखी थी। जैसे दुखी होना उसे आता ही नहीं था। हर रात उसके पास बातों का पिटारा होता था। प्रकाश बातें करते हैं ना, सो गए क्या? वो कहती थी, नहीं सुन रहा हूं, तुम बोलो। अपना चेहरा तो मेरी तरफ करो, वो कहती। जाने कितनी बातें थीं उसके पास जो खत्म ही नहीं होती थीं। वो बोलती रहती और मैं न जाने कब सो जाता। कभी ठीक से सुना ही नहीं कि आखिर वो कहती क्या थी। आपकी शादी अरेंज थी? शालिनी ने पूछ ही लिया। जी नहीं, बकायदा प्रेम किया था हमने, वो भी फिल्मी वाला। छुप छुप कर मिलना, रोमांस फरमाना, माता पिता के तुगलकी फरमान का सामना करना, फिर अंत में जैसे हिंदी फिल्मों में सब ठीक हो जाता है ना, उसी तरह हमारे माता पिता भी मान गए।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है खामोशी की धुन। अब तक आपने सुना आसपास से बेपरवाह पीयूष और शालिनी एक दूसरे से तेज आवाज में कुछ बहस कर रहे थे। तभी उनके पड़ोसी ने आकर टोका और शाम को उनको अपने घर कॉफी पर आमंत्रित किया। शाम को जब वो दोनों उनके घर पहुंचे तो उनकी पत्नी की तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए वो बाहर उन लोगों से मिलने नहीं आई। उनके पड़ोसी प्रकाश जी उन्हें अपनी पत्नी के बातूनी रवैये और चंचल व्यवहार के बारे में बता रहे थे। अब आगे वो शादी के पहले की बातों का जिक्र करते हुए बोले, लेकिन उन दिनों मुझे मीनू का इतना बोलना कभी नहीं खला। उसकी इन्हीं अदाओं पर तो प्यार आता था। वो कहते हैं ना कि प्यार से अपना दिल जिसे कहते थे वो तेरा दिल अब दाग नजर आता है। शादी के 10 सालों बाद तो अपना महबूब भी सयाद नजर आता है। लेकिन मीनू की तरफ से कभी कोई बदलाव मैंने महसूस किया ही नहीं। जितनी अच्छी तरह से वो मुझे समझती थी उस तरह तो मैं खुद को कभी नहीं समझ सका। कब मुझे चाय चाहिए होगी, कब मेरा पकौड़े खाने का दिल कर रहा होगा, कब मैं बॉस से झगड़ के आया हूँ, कब मैं उदास हूँ, ये सब वो मेरे बिना कहे समझ जाती थी। क्योंकि शायद हर स्त्री के अंदर कहीं ना कहीं एक माँ छुपी होती है। हर पार्टी की जान हुआ करती थी मीनू। कोई भी मुझे आमंत्रित करता तो उसके पहले उसका अनुरोध होता, भाई अकेले मत आना, भाभी को जरूर लेकर आना। मीनू का कहीं भी जाकर उसी परिवार का हो जाना मुझे बहुत परेशान करता था। मैं उसे अक्सर कहता था, तुम गेस्ट से कब होस्ट बन जाती हो पता ही नहीं चलता। सबसे इतना घुल मिल जाती थी। खाना अच्छा बनाती हैं वो, शालिनी के इस सवाल पर मुस्कुरा दिए थे प्रकाश जी। जी नहीं, मीनू को तो खाना बनाना आता ही नहीं था। हाँ, मगर उसे खाना खिलाना आता था। इतने प्यार और इतने सलीके से वो खाना सर्व करती थी कि 2 रोटी खाने वाला 5 खा जाता। मेरे दोस्त अक्सर कहते थे कि भाभी जी को दिल जीतना आता है। मेरा जवाब होता, तेरी भाभी को बातें बनाना जो आता है। कभी कभी तो मुझे लगता कि मैंने एक औरत से नहीं टेप रिकॉर्डर से शादी कर ली हो, प्रकाश जी कह रहे थे। पर प्रकाश जी, आप बार बार था का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? मीनू जी तो, शालिनी ने पूछा। इससे पहले कि प्रकाश जी कुछ कहते माया आ गई थी। साहब मैं चलती हूँ, खाना बना दिया है और मैडम के कपड़े भी बदल दिए हैं। माया जी एक मिनट रुकिए, आपकी तनख्वाह निकाल कर रखी है, अभी लेकर आता हूँ। प्रकाश जी के अंदर जाते ही पीयूष ने माया से पूछ लिया था, ये मीनू जी का क्या चक्कर है, बार बार था बोल रहे थे, जबकि उनकी पत्नी तो अभी जिंदा है। माया बोली, मैडम होकर भी नहीं है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है खामोशी की धुन। अब तक आपने सुना पीयूष और शालिनी कॉरिडोर में तेज आवाज में बातें कर रहे थे, तभी उनके पड़ोसी उनके पास आ गए और शाम को उन्हें अपने घर पे कॉफी के लिए इनवाइट किया। शाम को जब वो दोनों उनके घर पहुंचे तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी की तबीयत कुछ नासाज है, इसलिए वो उनसे बाहर तक मिलने नहीं आ सकती, कमरे में ही आराम कर रही हैं। जब वो किसी काम से अंदर गए तो पीयूष और शालिनी ने उस घर में काम करने वाली माया जी से उनके बारे में पूछना चाहा। माया ने बताया कि साहब की मैडम तो होकर भी नहीं है। अब आगे माया बता रही थी, आज से करीब 4 साल पहले मैडम को पैरालिसिस का अटैक हुआ था। मैडम कोमा में चली गई थीं। 2-2.5 साल तक तो साहब ने अकेले ही मैडम को संभाला, फिर दोस्तों के समझाने पर 1.5 साल पहले मुझे काम पर रखा। पर कमाल की बात तो ये है कि पता नहीं कैसे साहब को बिना मैडम के बोले ही पता चल जाता है कि कब उन्हें बाथरूम जाना है, कब टीवी देखना है, कब भूख लगी है, कब कहानी सुननी है। साहब तो मैडम को तैयार भी खुद ही करते हैं। वो तो आज आप लोग आ गए थे इसलिए मैंने कर दिया। टीवी, बाथरूम, इसका मतलब काफी सुधार आ गया है उनकी हालत में, पीयूष ने बोला। माया बोली, तब से अब तक बस इतना सुधार आया है कि मैडम कोमा से तो बाहर आ गई हैं, लेकिन क्या, पीयूष बोला। लेकिन मेरे टेप रिकॉर्डर का म्यूट बटन दब गया है पीयूष जी, मेरी मीनू की आवाज चली गई और साथ ही पेट के नीचे का हिस्सा भी निर्जीव हो गया है। प्रकाश जी आ गए थे। कुछ देर तक सभी चुपचाप बैठे रहे। माया के जाने के बाद शालिनी ने बात की शुरुआत की, माफ कीजिएगा प्रकाश जी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, पीयूष बोला, पर अचानक ये हुआ कैसे? प्रकाश जी बताने लगे, उस रात मैं ऑफिस से लेट घर पहुंचा था। मीनू के छात्र छात्राओं की भीड़ घर पर ही थी। वो उनके साथ बैठी हुई रसायन शास्त्र के किसी अध्याय पर चर्चा कर रही थी। जब तक मैं हाथ मुंह धोकर आया घर खाली हो चुका था। मुझे देखकर हंसते हुए बोली, डिनर करोगे या करके आए हो? जला भुना तो मैं था ही, उसके इतना कहते ही चिल्ला पड़ा, मेरे पास तुम्हारी तरह इतने चाहने वाले तो हैं नहीं जो साथ में डिनर ऑफर करें। मुझे लगा था अब तो पक्का लड़ेगी मुझसे, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की एक लकीर तक नहीं उभरी और वो वैसे ही हंसते हुए बोली, हाँ भाई तुम्हारी ये बात भी सही है, कड़वा करेला ऊपर से नीम चढ़ा, खाने की हिम्मत तो सिर्फ मुझ में ही है। अच्छा तुम्हें करेला हूं, मैंने कहा था। हाँ और तुम्हें तो पता ही होगा कि मुझे करेला कितना पसंद है, ना चाहते हुए भी हम दोनों साथ में हंस पड़े थे। फिर मैंने कहा, चलो मैडम डिनर कर लेते हैं, तो वो बोली, तुम कर लो मैं तो कर चुकी। मैंने कहा, कैसी बीवी हो तुम, दुनिया भर की औरतें अपने पति का खाने पर इंतजार करती हैं, उनके आने पर साथ में खाना खाती हैं, और तुम? तो वो बोली, करती होंगी पर मीनू उनके जैसी नहीं है। वैसे भी एक पुण्य आत्मा ने कहा है कि खाने के लिए भूख का इंतजार करना चाहिए, पति का नहीं, वो बोली। मैंने कहा, अच्छा कौन सी पुण्य आत्मा, जरा मैं भी तो सुनूं। तो उसने जवाब दिया, वही
जिनके पति होने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। फिर हम दोनों एक साथ बहुत देर तक हंसते रहे थे।

दिन आया बुढ़ापा, ये 60 बरस की बुढ़िया, ये 60 बरस की बुढ़िया लेकिन फिल्मी गाने गाती है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है खामोशी की धुन। अब तक आपने सुना पीयूष और शालिनी अपने अपार्टमेंट के कॉरिडोर में खड़े होकर तेज आवाज में बात कर रहे थे। तभी उनके पड़ोसी प्रकाश जी वहां आ गए और उन्होंने उन दोनों को शाम को अपने घर कॉफी पे इनवाइट किया। शाम को जब वो दोनों उनके घर गए तो पता चला कि उनके पत्नी 4 साल से बीमार हैं। पहले कोमा में थीं और अब उनकी आवाज चली गई है। प्रकाश जी उन दोनों को बता रहे थे कि ये सब कैसे हुआ। अब आगे। उस रात बिस्तर पर लेटकर जब मैं मोबाइल चला रहा था, वो मेरे पास आई और कहने लगी, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बातें अपने दोस्तों के साथ। तो वो बोली, दूर बैठे दोस्तों से बातें कर सकते हो, पास बैठी पत्नी से नहीं। मैंने कहा, क्या बात करूं तुमसे, कौन सी बात बची है करने को? दिन भर तो बोल बोल कर दिमाग खराब कर देती हो। इसने ये कहा, उसने ये किया, कितना स्टॉक है तुम्हारे पास बातों का जो कभी खत्म ही नहीं होता। वो बोली, हाँ करती हूं मैं, पर तुम ही बताओ कितनी बार अपना फोन साइड में रखकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी बातें सुनते हो। उसकी इन्हीं बातों पर प्यार आ जाता था मुझे। फिर मैंने उसको अपने पास बुलाकर कहा, तो बताओ फिर कौन कौन सी बात करनी है। वो बोली, कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ। मैंने उसको चिढ़ाते हुए कहा, कमाल है, तुम किसी और की सुन भी सकती हो। वो बोली, प्रकाश अच्छा बताओ। उसके बाद पता नहीं मीनू मुझे क्या क्या बताती रही। आज याद करता हूं तो कुछ भी याद नहीं आता, क्योंकि मैंने कुछ सुना ही नहीं था। मैं तो मोबाइल पर कुछ देखने में व्यस्त हो गया था। पता नहीं कब तक बोलती रही थी वो। अचानक एक चीख से मेरा ध्यान मीनू की तरफ गया। अरविंद, क्या हुआ मीनू, ऐसे क्यों चीखी तुम? कब सीखोगी तमीज? हड़बड़ाहट में मेरे हाथों से मोबाइल छूट गया था। एक ही घर में अजनबी बन गए हैं हम दोनों। तुम कहते हो मैं इतना बोलती हूं, क्या तुम सुन पाते हो मुझे? क्या तुम तक पहुंचती है मेरी आवाज? उसने थोड़ा नाराज होते हुए कहा था। मुझे बहुत तेज गुस्सा लगा था, क्या सुनूं? अपने घर में शांति के लिए तरस गया हूं, तुम्हारे दिन भर की फालतू बकवास से थक गया हूं मैं, थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं हो सकती तुम? उसने कहा, पर जिंदगी उतनी भी बड़ी नहीं है जितनी तुम्हें लगती है प्रकाश। आज तुम्हें मेरी आवाज बुरी लग रही है, कल कहीं खामोशी न चुभने लगे। इसके बाद मीनू सो गई। नींद में ही स्ट्रोक आया था उसे और मेरी जिंदगी में खामोशी भर गया। कमरे में एक चुप्पी पसर गई थी। प्रकाश जी, डॉक्टर क्या कहते हैं? शालिनी ने पूछा। प्रकाश जी बोले, इलाज कर रहे हैं, अगले महीने मीनू को अमेरिका लेके जा रहा हूं, देखिएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पीयूष ने दिलासा देने की कोशिश की। प्रकाश जी ने एक लंबी सांस ली और बोले, एक बात कहूं आप दोनों से, चंद लम्हे तुम्हारी जिंदगी के तुम्हारे पास ऐसे मुट्ठी में कैद हों रेत जैसे, इससे पहले कि वक्त फिसल जाए मुट्ठी से तुम्हारी, जी लो हर लम्हा आखिरी वक्त हो जैसे।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी खामोशी की धुन। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस गायिका की जिसके गाए गानों की बदौलत एआर रहमान जैसे दिग्गज संगीतकारों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में झंडे गाड़ दिए, जिसका गाया गाना 90s में नेशनल क्रेज बन गया था, जिसके गाने ने बीबीसी वर्ल्ड टॉप 10 म्यूजिक ओल्ड में जगह पाई। एक जमाने में कल्ट क्लासिक मानी जाने वाली फिल्म में नौसाद के अमर संगीत में 4 दशक बीत जाने के बाद दोबारा एक नई पहचान इसी गायिका की आवाज से पाई गई, जिसने न सिर्फ 14 साल की उम्र में एक मैच्योर माँ की ममता भरी आवाज में गीत गाकर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया, बल्कि 15 वर्ष की आयु में अपनी मादक आवाज में कैबरे गाकर बड़े बड़े गायकों को बंगले झांकने पर भी मजबूर कर दिया। इन वर्सेटाइल सिंगर का नाम है स्वर्णता, जिन्होंने बेशक हिंदी में बहुत कम गाने गाए, पर जो भी गाए वो यूनिक आवाज स्टाइल के साथ गाए और जो शायद ही कोई दोबारा गा सके। स्टाइल के साथ जो अपनी शहद की सी आवाज के चलते भारत की हमिंग क्वीन कहलाई। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनोखी, जो लेके आई है आपका वो वाला शो जो आपको रात में उस जोन में लेके जाता है जहाँ आप बहुत सुकून पाते हैं, यानी कि उन सदाबहार नगमों की हम बात करते हैं शो में, जो कि हम कहीं भूल गए हैं या फिर कहीं पीछे छोड़ाए हैं आज के दौर के चलते। चलिए फिलहाल बता देते हैं कि क्या शो चल रहा है। शो है भूले बिसरे गीत, जी हाँ, और आप सुनने वाले हैं आज जिस कलाकार को, वो हैं स्वर्णलता, जिनको हम लेके आए हैं कहीं किसी गर्दिश में जो गुम थी वहीं से। चलिए फिलहाल इनकी आवाज में सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा, फिर आते हैं और इनके बारे में बहुत कुछ है।

जी हाँ श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट शो यानी के रात के सफर के भूले बिसरे गीत में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आर्जनो की। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं स्वर्णलता जी की। जी हाँ, एक मशहूर सिंगर जिनको सबसे ज्यादा पसंद करते थे AR रहमान साहब। जी हाँ, ये भी कई दफा सुनने में आया है। फिलहाल चलते हैं इनकी जीवनी की ओर, और जीवनी से पहले कुछ और बातें। स्वर्णलता जी ने जिस भी भाषा में गीत गाया उसे यादगार बनाकर छोड़ा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गाने के शब्द नहीं दोहराए बल्कि उस गीत की आत्मा को पहचान कर उसमें दिल भी जोड़ दिया। लेकिन क्योंकि इस गायिका की आवाज पिछले कई सालों से चुप है, किस डर के कारण वो सामाजिक मंच पर गाने से कतराती थी। कुछ खबरें तो ऐसी हैं जिन्होंने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर तक बताया, क्योंकि वो किसी से बात करने से घबराती थी। लोगों से भरी इस दुनिया में उनका कोई दोस्त क्यों नहीं बन सका? आखिर इनके साथ कौन सी ऐसी ट्रेजेडी हुई कि कुदरती वो हसीन आवाज हमें फिर कभी सुनने को ही नहीं मिली? ये सब जानेंगे, पर उससे पहले एक सॉन्ग। चलिए पर सुन लेते हैं इस प्यारे से गीत को।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं स्वर्णलता जी की। स्वर्णलता जी का जन्म 29 अप्रैल 1973 में हुआ और इनकी मृत्यु भी हाल फिलहाल में कुछ ही वर्षों बाद हो गई, 12 सितंबर 2010 में। ये एक भारतीय पार्श्व गायिका थी। लगभग 22 वर्षों के अपने करियर यानी कि 1987 से उनकी मृत्यु तक में उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, उर्दू, बंगाली, उड़िया, पंजाबी और बड़ागा सहित कई भारतीय भाषाओं में 6000 से भी अधिक गाने रिकॉर्ड किए। फिल्म करुथमा के गीत पुराले पुनुथाई के गायन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इस गीत का संगीत AR रहमान ने तैयार किया था, जिनके संगीत निर्देशन में उन्होंने कई यादगार गाने रिकॉर्ड किए। वे AR रहमान के संगीत में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला पार्श्व गायिका भी थी। चलिए पर चलते हैं एक और प्यारे सनगमे की ओर। भाई, इतने यादगार गीतों को इन्होंने दिया है और आज का सफर तो वाकई आपको उसी दौर तक लेके जाने वाला है। फिलहाल हम बढ़ेंगे इस नगमे के साथ में आपके अपने शो भूले बिसरे गीत में।

अब हम बात करेंगे श्रोताओं स्वर्णलता जी की निजी जीवन के बारे में। स्वर्णलता का जन्म केसी चेरुकुट्टी और उनकी माता कल्याणी के घर हुआ था। स्वर्णलता ने हारमोनियम और कीबोर्ड बजाना सीखा अपने पिताजी से ही। इनके पिताजी भी एक संगीतज्ञ थे और संगीत से इनकी माता का भी ताल्लुक था। इनके चाचा भी कहीं ना कहीं म्यूजिक से ताल्लुक रखते थे, तो हम मान सकते हैं कि इनका बैकग्राउंड काफी हद तक म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। बाद में स्वर्णलता का परिवार कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के भद्रावती में बस गया, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 3 वर्ष की आयु से ही गाना शुरू कर दिया था। संगीतकारों और संगीत प्रेमियों से घिरे परिवारों में पली बड़ी स्वर्णलता ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत का प्रशिक्षण लिया। उनकी बहन सरोजा उनकी पहली संगीत शिक्षिका थी। चलिए पर इनकी आवाज में कुछ और सुनते हैं।

स्वर्णलता का परिवार उनकी गायन प्रतिभा के लिए फिल्म उद्योग में अवसर तलाशने के लिए चेन्नई चला गया। पहला अवसर उन्हें 1987 में MS विश्वनाथन के साथ मिला, जब इन्होंने फिल्म निथिक्कु थंदनई में KJ येसुदास के साथ युगल गीत चिन्ना चिरु के लिए रिकॉर्ड किया। इसके बाद उन्होंने कई अन्य संगीत निर्देशकों के लिए गाने रिकॉर्ड किए। उन्हें निर्देशक पी वेणु के साथ काम करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने इलैया राजा और AR रहमान जैसे संगीतकारों के साथ अक्सर सहयोग किया। उन्होंने कुछ हिंदी गाने भी रिकॉर्ड किए, जिनमें सबसे उल्लेखनीय फिल्म रंगीला का

कैसे रहे, मतलब ये गाना जब भी आपके जहन में आएगा आप बिना गुनगुनाए रह ही नहीं पाएंगे। तो जिसे इन्होंने गायक हरिहरन जी के साथ में रिकॉर्ड किया। ये गाना बहुत ही फेमस था तब भी और आज भी, और इनके ऐसे ही कई सारे गाने हैं जैसे कि मुकाबला, और हाँ मुकाला मुकाबला होगा सुना ही होगा आपने। तो ऐसे ही बहुत सारे नगमे हैं। चलिए फिर इन्हीं में से एक नगमा हम आपको और सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और आपको बता देते हैं कि तेलुगु में इन्होंने मणि शर्मा, रमना गोगुला, राजकोटी और वंदे मातरम श्रीनिवास के संगीत निर्देशन में कई गाने रिकॉर्ड किए। इनमें रम्मा चिलकम्मा, ओसे रामू लम्मा और निजाम बाबलू जैसे शीर्ष श्रेणी के गाने शामिल हैं। एआर रहमान ने अपने कई गानों के लिए स्वर्णलता को नियुक्त किया। वे अपने समय की सबसे बहुमुखी गायिकाओं में से एक थीं, क्योंकि वे सत्रियान से मलाइल यारो, मनथोडू पेसा या करुथमा से पुराले पोनुथाई जैसी धुनें गाने में सक्षम थी। साथ ही रहमान के प्रयोगात्मक गाने जैसे काधलान से मुकाबला या फिर पवित्रा से मोटू विटाधा भी गा सकती थी। कन्नड़ में उनका पहला गाना सारदाराबा बालिना 1989 में फिल्म परशुराम के लिए अभिनेता गायक डॉक्टर राजकुमार के साथ युगल गीत था। स्वर्णलता एआर रहमान के संगीत निर्देशन में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली पहली महिला पार्श्व गायिका थी। उन्हें ये पुरस्कार पुराले पोनुथाई गाने के लिए मिला था। उन्होंने संगीत निर्देशक देव, विद्यासागर, हैरिस जयराज, अनु मल्लिक, शंकर एहसान लाय, राजकोटी, युवान शंकर राजा, मणि शर्मा, हमस लेखा और कई अन्य लोगों के साथ कई गाने रिकॉर्ड किए। उन्होंने तमिल फिल्म अनारकली, हिंदी फिल्म जो कि मुगले आजम का डब संस्करण है के लिए लता मंगेशकर और शमशाद बेगम द्वारा गाए गए सभी गाने रिकॉर्ड किए, और बॉलीवुड संगीत निर्देशक नौशाद अली से प्रशंसा प्राप्त की, जिसे उन्होंने अपने करियर का सबसे बेहतरीन पल भी माना। चलिए फिर चलते हैं इन्हीं के एक और खूबसूरत से नगमे की ओर, और फिर आते हैं आपसे और सारी जानकारी पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी आवाज़ में यानी कि स्वर्णलता की आवाज़ में एक और खूबसूरत सा नगमा।

जी हाँ श्रोताओं, शो चल रहा है आपका भूले बिसरे गीत और मैं हूँ आपकी होस्ट चंदू तारजी। अनोखी और अनोखी अनोखी बातों के साथ में अनोखे अनोखे नगमे लेके आई हूँ आपके लिए आपके अपने शो में। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और अब चलते हैं उस ओर जिस ओर हम चर्चा कर रहे थे स्वर्णलता जी की। स्वर्णलता जी ने कई टेलीविजन गायन प्रतियोगिताओं में जज के रूप में भाग लिया, जिनमें 2001 में विजय टीवी का रियलिटी शो और 2004 में जया टीवी का राग मालिका शामिल है। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो स्वर्णलता का निधन 12 सितंबर 2010 को 37 वर्ष की बहुत ही अल्पायु में मलार हॉस्पिटल लिमिटेड अडयार चेन्नई में हुआ। इन्हें इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस था जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं एक वर्सेटाइल सिंगर और साथ ही साथ में जिसको कहा जाता है हमिंग क्वीन, हाँ इंडिया की हमिंग क्वीन की। तो इनके नाम कई सारे पुरस्कार भी हैं, चलिए उससे भी आपको रूबरू कराते हैं। अगर पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया हमारी स्वर्णलता जी ने, साथ ही साथ में तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार इनको 3 बार मिले, सिनेमा एक्सप्रेस पुरस्कार इनको 5 बार प्राप्त हुए, कलाइमा मणि और कुल मिला के 10 पुरस्कार अतिरिक्त इन्हें और प्राप्त हुए। राष्ट्रीय पुरस्कार सिल्वर लोटस पुरस्कार रजत कमल भी इन्हें प्राप्त हुए हैं और साथ ही साथ में 1994 में करुथमा फिल्म के पुराले पुनुथाई गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार इनको, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 बार प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा 1991 में चिन्ना थंबी फिल्म के पुवोम्मा गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का तमिलनाडु राज्य पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। 1994 में करुथमा फिल्म के गीत के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का तमिलनाडु राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ और एक नेशनल अवार्ड भी इनके नाम है। 2000 में अलाई पायुथे फिल्म के येवानु गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का तमिलनाडु राज्य पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त है। सिनेमा एक्सप्रेस पुरस्कार, इसके अलावा और भी कई सारे पुरस्कार इनके नाम है। इंडियन फिल्म के अकडनू के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार भी इनके नाम है और इसी तरह ना जाने और कई सारे कितने पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। 2002 में थलपति, जो कि 1991 की फिल्म थी, उसके गीत रकम्मा कया के लिए इन्हें BBC वर्ल्ड टॉप 10 संगीत सर्वेक्षण में शामिल किया गया था। इसे SP बाला सुब्रमण्यम और स्वर्णलता जी ने मिलकर गाया था।

जी हाँ श्रोताओ, अब हम बात करेंगे स्वर्णलता जी ने किन मशहूर संगीतकारों के साथ में अपने गानों को सजाया। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम इलैया राजा की। स्वर्णलता जी ने इलैया राजा के लिए 200 से अधिक गाने गाए और 90 के दशक के प्रसिद्ध संयोजनों में से एक के रूप में पहचाने जाते हैं। फिल्म चिनाथम्बी के पुवामो और नी एनगा एन अनबे ये दो बहुत ही मशहूर हिट फिल्म रहे। तमिलनाडु सरकार ने उन्हें पुवामो गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार भी दिया। इन्होंने इलैया राजा के लिए कई प्रयोगात्मक गीत गाए जैसे सोली वीडू, कन्ने इंद्रो और इलाई थुट्टू। अब बात करेंगे एआर रहमान की। एआर रहमान और स्वर्णलता की साझेदारी 1993 से शुरू हुई। इनकी जोड़ी मुकाबला और हाय रामा ये क्या हुआ जैसे जादुई गीतों के लिए जानी जाती है, जो 90 के दशक के हिट गाने हैं और हिट होने के साथ में कहीं ना कहीं ये कल्ट क्लासिक और कई वैरायटी के गाने होने की वजह से नेशनल क्रेज तक बन गई। जी हाँ, और इनको एक प्यारा सा नाम तो आपने दिया ही था, यानी हम सभी ने मिलकर दिया था, हमिंग क्वीन का, जो इनकी मधु भरी वाणी पे एकदम सुटेबल है। ये रहमान के संगीत में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला गायिका थी। इन्हें 1994 में रिलीज हुई फिल्म करुथमा के गीत पुराले के लिए ये पुरस्कार मिला था। इन्होंने रहमान के लिए लगभग 80 गाने गाए हैं। रहमान के साथ रिकॉर्ड किया गया उनका आखिरी गीत फिल्म सिलुनु ओरु कधल, जो कि 2006 में आई थी, का गाना था कुम्मी आदि, जो आज भी याद किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वर्णलता जी ने देवा जी के साथ में काम किया। जी हाँ, स्वर्णलता ने 1990 से देवा के साथ कार्य किया। गीत कन्ने वैगासी ने उनकी पहली संगति को चिन्हित किया। उनके द्वारा गाए गए अन्य गीत जैसे कि सेंथुरा पार्टी जो कि आई थी 1993 में, रसीगन 1994 में, बाशा जो कि आई थी 1995 में, विष्णु 1995 की ही एक संगीत रचना है, मुगावरी 2000 में जो आई थी, और फिल्म में गाए गए कई सारे अतिरिक्त गाने, चुक्का थंगम 2003 की सबसे लोकप्रिय फिल्म और उसके गीत बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय रहे। तो ये सभी थे हमारे स्वर्णलता जी के साथ में कार्य करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स। अभी चलेंगे हम इनके एक और नगमे की ओर और फिर आएंगे आपसे अलविदा करने। बने रहें।

तो दोस्तों आज हमने बात किया स्वर्णलता जी के बारे में। साल 2000 आते आते स्वर्णलता का सिंगिंग करियर धीमा हो गया। ये भी एक सच है कि कहीं ना कहीं वो इस सुनहरी दुनिया की राजनीति से प्रभावित हुई। इतनी अधिक टैलेंटेड होने के बाद भी कई सारे ऐसे गीत जो इनके लिए लिखे गए थे वो ऐसे सिंगर्स के पास चले गए जो इनके सामने कहीं भी टिकते नहीं थे। अपने हद से ज्यादा कैमरा शाई नेचर के चलते वो टीवी पर भी बहुत कम दिखाई देती थी, वहीं इनके कंटेम्प्रेरी सिंगर्स ने इसका भरपूर फायदा उठाया। ऐसा सुनने में भी आया कि कई बार इन्होंने स्टेज शो को भी कैंसिल इसीलिए किया क्योंकि वे लोग को फेस करने में कतराती थी। स्वर्णलता हमेशा से इंट्रोवर्ट थी जिन्हें हर किसी से बात करना पसंद नहीं था। यहाँ तक कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी किसी से इनकी कोई खास बातचीत नहीं होती थी। वे सिर्फ बंद स्टूडियो में गाना गाकर सहज महसूस करती थी। कुछ लोगों का मानना ये भी था कि उनको अपने लुक्स के चलते लोगों से दूर रहने की आदत है। उन्हें करीब से देखने वाले ये भी कहते हैं कि वे किसी न किसी मानसिक पीड़ा के साथ जी रही थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कहना काफी मुश्किल है। काफी कम उम्र में ही इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था और 37 की उम्र तक इन्होंने शादी भी नहीं की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत ही कम उम्र में कई सारी बीमारियों ने इन्हें घेर लिया था। एक्यूट एयर सिकनेस के कारण अक्सर वो हवाई सफर नहीं कर पाती थी, जिसके चलते दूसरे राज्यों या विदेशों में ये परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाती थी। ये स्वर्णलता के करियर का सबसे टेरिफिक पॉइंट साबित हुआ। दरअसल वो इडियोपैथिक फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त थी, जिसमें फेफड़े तक ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत होती है। और आपको तो अच्छे से पता है कि एक संगीतकार के लिए, एक गायक के लिए ऑक्सीजन, वैसे तो ऑक्सीजन हर किसी के लिए ज़रूरी है, पर जो सिंगर्स होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है फेफड़ों तक पहुंचना, क्योंकि सारा काम तो फेफड़ों का ही होता है, जहां से आवाज़ आती जाती है या सांस आती जाती है, और सांस से ही तो सरगम और धुनें बनती हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और बताते हैं और फिर आपसे बाय बाय करेंगे। तो स्वर्णलता की बीमारी ऐसी बीमारी थी जिसमें सीढ़ियां चढ़ने और छोटे मोटे काम करने पर भी सांस फूलती है। स्वर्णलता का इलाज कई बड़े डॉक्टरों ने किया, पर यह बीमारी किसी के भी हाथ में ना आ सकी, जिसके चलते हमिंग बर्ड ऑफ इंडियन सिंगिंग इंडस्ट्री का 12 सितंबर 2010 को निधन हो गया। इतनी कम उम्र में स्वर्णलता का यूं जाना न केवल फिल्म जगत का एक बड़ा लॉस था, बल्कि हम असमय एक जादुई और अद्भुत आवाज को खो बैठे। भारत के इस हमिंग क्वीन को हम सभी की ओर से श्रद्धांजलि। सुरों की मल्लिका स्वर्णलता अपने चाहने वालों के दिल में हमेशा जिंदा थी, हैं और रहेंगी। फिलहाल अब आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है, तो चलिए चलते हैं और इस वादे के साथ फिर हम आपसे रूबरू होंगे कि हम फिर से किसी और जिंदगी को आपके दरमियान लाएंगे और उसकी जिंदगी के उस पल को आपसे साझा करेंगे जो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी रिलेटेबल होता है। और गीत तो हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ वो अभिन्न अंग है जो हम कभी अपने से दूर ही नहीं कर सकते। फिलहाल भूले बिसरे नगमे में मैं थी आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनोखी, और शो आपने सुना और आपने ट्यून करके रखा हुआ था रेडियो ज्ञानस्ले 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, किसी अन्य गायक के साथ या फिर किसी ऐसे लाइफ के पार्ट के साथ जो बेहद ज़रूरी होगा हमारे लिए, आपके लिए, और उसके बीच में होंगे वो नगमे जो हम कहीं गर्दिश में भूल आए हैं। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक अ वंडरफुल केयर ऑफ योर्स। टाटा, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड

पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही

0: लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
1: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
0: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
1: और फोटोग्राफी वगैरह?
0: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
1: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
0: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है। और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
7: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।